0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक निरंतर जारी है। आज शक संवत 1948 के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तदनुसार 5 जून 2026, आज दिन शुक्रवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कुछ दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा धैर्य से सारी बात सुन रहे थे और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वानों भी मूर्खों की संगत में रहें तो उनके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए।
1: जीवन सौरभ।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी सतीश चंद्र मुखर्जी के जीवन पर। आज उनकी जयंती है। सुबह 8:30 पर आमने सामने कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे रंगकर्मी अभय से, और इसके साथ ही नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश का प्रसारण होगा। सुबह 9 बजे वागर्थ कार्यक्रम में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ सुनेंगे। सुबह 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। सुबह 10 बजे देशभक्ति गीतों के साथ विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी होगी। 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस को समर्पित है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, आज का कार्यक्रम शिव कुमार शर्मा पर केंद्रित है। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं वायु और छंद है अत्यष्टि और अष्टि।
1: आत्वा जुवो रारहाणा अभिप्रयो वायो वहन्त्विहि पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वा ते अनुसूनृता मनस्तिष्ठतु जानति नियुक्त्वत्वा रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने। हे वायुदेव, आपको शीघ्रगामी अश्व पहले के समान ही पुरोडाश हविष्यान्न के लिए इस सोमयाग में पहुंचाएं। हे वायो, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा अभिव्यक्त प्रिय वाणी आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारें। मदन्तु त्वा मंदिनो वायविन्दवोऽस्मत्क्राणासः सुकृता अभिद्यवो गोभिहि क्राणा अभिद्यवः यद्ध क्राणा इरद्ध्यै दक्षं सचन्त ऊतयः सद्रीचीना नियुतो दावने धिय उपब्रुवत ईं धियः। हे वायो, आप हमारे द्वारा भली प्रकार से निष्पन्न हुए उत्साहवर्धक तेजस्विता युक्त तथा गोदुग्ध से मिश्रित सोमरस का आनंद पूर्वक पान करें। पुरुषार्थी मनुष्य संरक्षण की कामना से शक्ति संचय के लिए भ्रमरत रहते हैं। सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक सम्मत दान के लिए आपकी ही प्रार्थना करते हैं। वायुर्युङ्क्ते रोहिता वायुररुणा वायुरथे अजिरा धुरी वोढहवे वहिष्ठा धुरी वोढहवे प्रबोधया पुरिंधिम जार आ ससतीमिव प्रचक्षय रोदसी वास योषसः श्रवसे वास योषसः। वायुदेव गमन करने के लिए भार वहन में सक्षम लाल तथा अरुण रंग के दो बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ में धुरे में जोतते हैं। हे वायुदेव, जैसे प्रेमी पुरुष सोई हुई स्त्री को उठाते हैं, वैसे ही आप मनुष्यों को जगाएं। द्यावा पृथ्वी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवी उषा को आलोकित करें। तुभ्य मुषासः शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः सबर दुघा विश्वा वसूनि दोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः। हे वायुदेव, पवित्र उषाएं आपके लिए दूर स्थित नवीन दर्शन योग्य रश्मियों से अद्भुत कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती हैं। अमृत रूपी दूध देने वाली गौएं आपके लिए समस्त धनों को प्रदान करती हैं। इन्हीं अजन्मा हवाओं से नदियों का जल ऊपर आकाश में जाता है, जाने के बाद बरसकर नदियों में पुनः आता है। अतएव जल वृष्टि के कारण में मूल रूप से हे वायुदेव आप ही हैं। तुभ्यं शुक्रासः शुचयस्तु रण्यवो मदे शुग्रा इषणन्त भूर्वण्य पामिषन्त भूर्वणि त्वां तत्सारि दसमानो भगमीट्टे तक्ववीये त्वं विश्वस्माद्वनात् पासि धर्मणा सूर्यात् पासि धर्मणा। हे वायुदेव उज्ज्वल पवित्र अति गतिशील तीक्ष्णता युक्त यह सोमरस ऐश्वर्य प्रद यज्ञादि के अवसर पर आपके सहयोग का इच्छुक है। जलों की स्थापना तथा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका ही विशेष सहयोग रहता है। हे वायुदेव निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारण हेतु आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही निरंतर प्राण वायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। त्वं नो वायवेशा मपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमर्हसि सुतानां पीतिमर्हसि उतो व्युहुतमतीनां विषां ववर्जुषीणां विश्वा इत्ते धेनवो दुर्हृ आशिरं घृतं दुर्हृत आशिरं। हे अतिश्रेष्ठ वायुदेव आप हमारे द्वारा अभिषुत सोमरस के सर्वप्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं। समस्त गौएं जिस प्रकार दूध और घी आपके निमित्त प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आप भी प्राण वायु प्रदान करें। आप निष्पाप तथा यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर उपासना के साथ, भक्ति संगीत के साथ।

सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।

यदि हम यही सोचते रहेंगे कि जब दुख दूर होंगे तब हम प्रसन्न होंगे, तो ये एक गलतफहमी है। मन प्रसन्न रखने से ही दुख दूर होते हैं।

यदि हम अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने काम पर फोकस करें और लोगों की बातें ना सुने। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए।

कठिन समय में कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी तरह विपत्ति अवसर में बदल जाती है।

बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। असफलता का समय सफलता के बीज बोने का बेहतरीन मौसम होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं महापुरुषों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी सतीश चंद्र मुखर्जी को समर्पित है।

0: इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान देशभक्त और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले अग्रणी नेता सतीश चंद्र मुखर्जी का।
1: ये वतन का
0: शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी देश का चरित्र निर्माण करती है। उसके नागरिकों के भीतर देश, समाज और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करती है, और नागरिकों का दृष्टिकोण ही वो बीज तत्व है जो किसी देश की दिशा तय करता है, उस देश का भाग्य बनाता या बिगाड़ देता है। अंग्रेजों ने भारत पर केवल शासन ही नहीं किया, बल्कि कई रणनीतियां बनाई, अनेक कुटिल चालें चली और भारत की जड़ों पर प्रहार किया। मैकाले की शिक्षा नीति भी उनकी ऐसी ही एक चाल थी। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित और महत्वहीन बताया और पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए उसे थोपने की कोशिश की। उसने भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना बोने का भरपूर प्रयास किया। उसने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी अर्थात अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया और कहा कि भारत में प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिसके अंतर्गत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के छोटे हिस्से को विशेष रूप से शिक्षित किया जाए, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता में ब्रिटिश हो। इन्हीं मंशाओं के साथ अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ, लेकिन तत्कालीन भारत का प्रबुद्ध वर्ग अंग्रेजों की इस साजिश को बखूबी समझता था और भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला को जीवित रखने में जुटा हुआ था। देश की व्यवस्था को यथासंभव भारतीय मूल्यों और आदर्शों के अनुसार संचालित करवाना इस वर्ग की चिंता का विषय था। पराधीन भारत में इस विचारधारा से प्रेरित प्रखर विद्वानों की एक अद्वितीय श्रृंखला थी। इन्हीं विभूतियों में से एक थे सतीश चंद्र मुखर्जी, एक विद्वान, चिंतक और समाजसेवी। राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद थे। सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म 5 जून 1865 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बानीपुर में हुआ था। उन्होंने दक्षिण उपनगरीय स्कूल भवानीपुर कोलकाता में अपनी शिक्षा शुरू की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1884 में बीए और 1886 में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्यापन का कार्य शुरू किया। सन 1887 में उन्होंने बहरामपुर कॉलेज में प्रवेश लिया और 1890 में बीएल की डिग्री प्राप्त की तथा कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। सन 1895-96 के आसपास उन्होंने भगवत चतुष्पति नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ये मुख्य रूप से भारतीय धर्म और दर्शन के अध्ययन और समग्र रूप से भारत के अध्ययन के लिए समर्पित एक संस्थान था।

सतीश चंद्र मुखर्जी आरंभ से ही विद्वत जनों के सानिध्य में रहे। सर आशुतोष मुखोपाध्याय उनके सहपाठी थे। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवनाथ शास्त्री, ब्रजेंद्रनाथ शील, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्ता तथा स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों से अत्यंत प्रभावित थे। आरंभ से ही वो शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रयासरत थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सन 1902 में कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। ये भारत के विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के विरोध में गठित एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन था। इसका उद्देश्य छात्रों को आदर्श शिक्षा देना, उनमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना, मानसिक मजबूती और चरित्र निर्माण करना था। इसके अलावा लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना का विकास करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। साथ ही स्वदेशी उद्योगों के समग्र विकास की दिशा में भी ये संस्था सक्रिय थी। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाने की दिशा में डॉन सोसाइटी का योगदान अतुलनीय है। इस तरह ये संस्था राष्ट्रीय पहचान की खोज के लिए समर्पित थी। 5 नवंबर सन 1905 को डॉन सोसाइटी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय शिक्षा के उद्घाटन के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय और हिरेन्द्रनाथ दत्ता ने बड़ी सभा को संबोधित किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने छात्रों से कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ने और वहां की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। वो डॉन पत्रिका के संपादक भी रहे। पत्रिका ने 1902 तक भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला पर कई लेख प्रकाशित किए। डॉन उस समय का मुख्य पत्र बन गया। छात्रों को डॉन पत्रिका में प्रकाशन के लिए लेख प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। सतीश चंद्र मुखर्जी समकालीन युवा पीढ़ी के एक अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। कुछ ही समय में विनय कुमार सरकार, राधा कुमुद मुखोपाध्याय, हरण चंद्र चकलादार, रवीन्द्र नारायण घोष, किशोरी मोहन गुप्ता और कई अन्य लोग उनके साथ जुड़ गए और वे डॉन सोसाइटी के मुख्य आधार बन गए। डॉन सोसाइटी मानव संसाधन विकास और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी। इसीलिए उनके पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी शुरू किया गया, जहां नील रतन सरकार, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी भी व्याख्यान दिया करते थे। यहां रमाकांत राय और कुंज बिहारी सेन टेक्नोलॉजी पर लेक्चर दिया करते थे। इसके प्रौद्योगिकी अनुभाग में कार्यशाला गतिविधियों की सहायता से आयोजित एक मुख्य पाठ्यक्रम शामिल था। इन कार्यशालाओं में साबुन और तेल बनाने की प्रणाली जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं सहित कई प्रकार के यांत्रिक कार्य सिखाए जाते थे। इसके अलावा बुनाई की आधुनिक तकनीक भी सिखाई जाती थी। छात्रों द्वारा निर्मित उत्पादों को बड़े बाजार स्वदेशी की दुकानों में बेचा जाता था। इस तरह युवा पीढ़ी स्वदेशी के मंत्र से परिचित हो रही थी।

समाज के मुख्य पत्र के रूप में डॉन पत्रिका ने राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया था। इसका उद्देश्य भारत की विरासत को संरक्षित करना और इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान सुझाना था। उन दिनों इंडियाना पत्रिका का एक विशेष खंड था जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना और राष्ट्रवाद का विकास करना था। इसके लिए भी सतीश चंद्र मुखर्जी और उनके कुछ साथियों ने भारत से संबंधित सभी विषयों पर अनेक लेख लिखे। इस तरह अपने समय में डॉन पत्रिका भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गई। जब भारतीय युवाओं ने बंगाल के विभाजन के समय पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना शुरू किया, तब बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव कार्लाइल ने 22 अक्टूबर 1905 को एक सर्कुलर घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कॉलेज सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है और छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो उस संस्थान को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। इसे गुलामी की घोषणा करार दिया गया था। सतीश चंद्र मुखर्जी ने कार्लाइल के इस सर्कुलर का जमकर विरोध किया। अरविंद घोष से उनकी गहन आत्मीयता थी। वे दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम से भी जुड़े हुए थे। महर्षि अरविंद के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों में सतीश चंद्र मुखर्जी का अग्रणी स्थान है। इसी समय नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर हुई थी और इसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष थे और सतीश चंद्र मुखर्जी कार्यवाहक प्राचार्य बने। उन्होंने सन 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बंगाल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1907 में जब श्री अरविंदो ने नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल के प्राचार्य पद से इस्तीफा दिया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी को इसका प्राचार्य नियुक्त किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अगले वर्ष इस्तीफा दे दिया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और सफलता में सतीश चंद्र मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय है। डॉन सोसाइटी ने स्वदेशी औद्योगीकरण की जागृति के लिए विभिन्न तर्क दिए तथा सराहनीय कार्य किए। हालांकि सन 1906 में डॉन सोसाइटी का राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में विलय हो गया, लेकिन डॉन पत्रिका 1913 तक जारी रही। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था। जब इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी साबरमती गए और कुछ समय के लिए यंग इंडिया पत्रिका को प्रकाशित करने में मदद की। सन 1930 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बिहार विद्यापीठ का दौरा किया और कुछ समय के लिए वहां रहे। सतीश चंद्र मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त और धर्मपरायण संत थे, लेकिन वे धार्मिक कट्टरता, जाति व्यवस्था और प्रांतवाद के विरोधी थे। वो भारतीय राष्ट्रवाद और शिक्षा के विकास को समर्पित विभूति थे। आजीवन मातृभूमि की सेवा करते हुए 18 अप्रैल सन 1948 को वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी सतीश चंद्र मुखर्जी को समर्पित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था, जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजीतियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं, बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है आमने सामने। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं रंगकर्मी अभय सिन्हा से। इनसे बातचीत करेंगे फराज फयाज। इसके साथ ही हम आपको नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश भी सुनवाएंगे।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम आमने सामने का। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा को।
3: उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ। हाँ, बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया।
2: वो जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में शिरकत करने भोपाल आए और जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मंचन हुआ नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह का।

0: इस मौके पर हमने अभय सिन्हा से बात की। कार्यक्रम के पहले हिस्से में आप सुनेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से बातचीत, और उसके बाद नाटक वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अब आपसे मुखातिब हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा।
1: मेरा नाम अभय सिन्हा है और मैं पटना से आया हूँ। हमारी संस्था है प्रांगण, राष्ट्रीय नाटक उत्सव में हमारा नाटक है बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के योद्धा थे, जो बिहार में सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के अलावा ये देश के लिए बहुत किया इन्होंने।
0: सर, थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे, आपका रंगकर्म की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और क्या थिएटर की दुनिया में आप खुद ब खुद चले आए या किस्मत आपको ले आई?
1: देखिए, बचपन से ही शौक था। हम तो जब क्लास 5th-6th में पढ़ते थे उस समय से, मतलब हमारा ये है कि 1974-5 से हम रंगमंच पे हैं, 1974-75 से हम रंगमंच पे हैं। काले बाल से वाइट बाल हो गया हमारा, और हम लगातार रंगमंच कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई नौकरी आज तक नहीं किया, और रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। और अचानक आना ही कहेंगे, और शौक तो था ही, अचानक आना हुआ कि हमारे गुरु थे, हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, वो हमारे परिचित के भी थे, मेरे बड़े भैया के मित्र थे, वो एक संस्था से जुड़े हुए थे, तो हम ऐनक के सामने कभी कभी ऐसे डायलॉग बोलते थे। और उसके पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें शिक्षक दिवस पे हम रंगमंच पे नाटक करते थे, छोटे छोटे नाटकों करते थे। तो उस समय मंच क्या, स्कूल के मंच पे होते थे, वो तो बहुत बड़ा मंच नहीं होता था, लेकिन वही जो भैया के मित्र थे, हमें जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने आकर कहा कि अभय नाटक करोगे? हम बोले हाँ एकदम करेंगे, तो बोले चलो करते हैं। तो एक संस्था थी उस समय पटना में अभियान करके, उससे हम जुड़ गए। तो एक हमें रोल तो मिला नहीं, प्रॉम्प्ट करते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे करेक्टर अचानक क्या हुआ कि वो आया नहीं, और वो क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ा सा आए, दो चार दिन आए नहीं आए, उसका प्रॉक्सी हम करने लगे। तो प्रॉक्सी करने लगे तो उसका संवाद याद आ गया, तो जो डायरेक्टर थे वो लगे भाई तुम करो अब इसको, हम किए तो बहुत बढ़िया कर गए, एक प्रॉम्प्टर भी थे, प्रॉक्सी भी करते थे। उसके बाद जब करने लगे तो करने लगे, और आज तक लगातार
0: दोनों ही चीज़ें हैं, किस्मत भी ले आई और आपको शौक भी था।
1: शौक भी था, और अब ये ऐसा हो गया कि अब रंगमंच पे अभिनय धीरे धीरे धीरे धीरे समाप्त हो गया, और रंग निर्देशक की ओर हम बड़े अग्रसर हो गए, और अब अभिनय बहुत ही कम करते हैं। अगर किसी और के निर्देशन में अगर काम होता है तब हम करते हैं, हम अपने निर्देशन में खुद अभिनय
0: नए लोगों को
1: प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
0: सर, एक चीज़, बचपन आपका कहाँ बीता ये ज़रूर पूछूंगा, और उन दिनों में कौन से वो रंगकर्मी थे जिनके आप लोग होते ना मुतासर होते हैं कि जैसे फिल्मी एक्टर्स, तो वो क्योंकि नाटक अब तो खैर बहुत होने लगे, पहले इतने होते तो होंगे लेकिन इतना आसान नहीं था, दूर दूर जाना आना आसान भी नहीं था, सफ़र करना भी, तो वो कौन से रंगकर्मी थे जिनको देखकर आप प्रभावित हुए और फिर आगे बढ़ते चले गए?
1: वो हमारे गुरु थे, हिंदुस्तान के बड़े ही चर्चित नामी रंग निर्देशक थे सतीश आनंद, जिसको जो भी रंगकर्म करते हैं वो हर लोग जानते हैं कि सतीश आनंद क्या चीज़ है। तो हम उनके ही सानिध्य में थे और वही हमारे गुरु हैं, और हमने छोटे छोटे जो नाटक किए उसके पहले एक अजय के सिन्हा हुआ करते थे, उनके निर्देशन में भी हमने एक दो नाटक किया था, लेकिन जो गुरु, जिनको गुरु माना जाता है, प्रथम हमारे तो अजय के सिन्हा ही थे, लेकिन ये जो गुरु थे हमारे, वो उनसे हमने बहुत कुछ गेन किया, और उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके ही सीखे हुए चीज़ों को अब हम कोशिश करते हैं कि मंच पे करें।
0: फिर एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा सुनने वालों के लिए कि नाटक लोग खेलते हैं, हर जगह होता है, भारत में भी होता है, बाहर भी होता है, जो जनता होती है वो किस तरह से समझे, क्योंकि कन्फ्यूज रहती है कि नाटक क्या है, फिल्में क्या हैं, डॉक्यूमेंट्रीज क्या हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और एक ये भी चीज़ हम सुनते हैं कि जो नाटक की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से जो एक्टर्स आते हैं उनको ये माना जाता है कि वो अच्छे एक्टर हैं।
1: देखिए, जब तक दर्शक जो होते हैं, जो फिल्म की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं रंगमंच को, अगर वो एक बार रंगमंच को देख लें, अगर अच्छे निर्देशक को देख लें, उनको रंगमंच के प्रति झुकाव होगा। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, और वही देश में नाम कमाएगा, और वही आगे बढ़ेगा, वही चलचित्र पे जाएगा, वही फिल्मों में काम करेगा, सीरियल में काम करेगा और आगे बढ़ेगा। दर्शक को, रंगकर्मियों को, रंगमंच को समझना चाहिए, और समझना होगा। धीरे धीरे झुकाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि झुकाव नहीं है, पहले बहुत झुकाव था, बीच में अलग हुआ, फिर वापस हो रहे हैं दर्शक। अच्छे अच्छे राइटर का नाटक आ रहा है, अच्छे अच्छे नाटककारों का नाटक आ रहा है, तो ये है हमारा।
0: सर एक दो सवाल, क्योंकि आपको समय की कमी है, जब आप रंगमंच करते थे शुरुआत की और अब क्या फ़र्क आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी में फ़र्क हुआ होगा, नए आर्टिस्ट आते हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? एक चीज़ उसमें और जोड़ देता हूँ कि कहा जाता है कोई भी काम करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अलावा और भी नाटक में तो सभी संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पढ़ना, क्योंकि पढ़कर जो आता है तो तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है। तो आप इतने साल हो गए आपको, 50 साल से ऊपर, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है?
1: देखिए जब हम नाटक की शुरुआत किए थे उस समय देश में टाइपराइटर था, टाइप लोग करते थे, अब टाइपराइटर कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ अब कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, अब कंप्यूटर पर लोग टाइप करने लगे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर भी गुम हो रहा है और मोबाइल आ गया, मोबाइल पे लोग बोल के हाँ टाइप कर ले रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उससे काम करते हैं। अंतर यही है कि पूरा टेक्निक चेंज हो गया, हाँ अब तो क्या LED आ गया, तो ये वो आ गया, लाइट वो लाइट आ गया, ये साउंड सिस्टम आ गया, वो साउंड सिस्टम आ गया, और पहले इतना नहीं था। पहले लोग अभी जैसे स्टार्टिंग लोग करते थे, पेट्रोमैक्स पे नाटक करते थे, लालटेन पे नाटक करते थे गांव गवई में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ, हाँ बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया। तो चेंज होता गया तो निश्चित तौर पर पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। तो ये है टेक्निकल, उस समय बहुत तो चेंजे तो आए, बहुत से चेंजे आए। पहले लोग क्या करते थे, मंच बनाते थे, और हमेशा नाटक नहीं होता था, पहले किसी पर्व त्यौहार रीति ये होता था, जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, दीपावली हो रहा है, उस समय होते थे। अभी क्या है, अब हॉल बन गया, बहुत सारे प्रेक्षागृह खुल गए नाटक के लिए, अब लोग उसमें लाइट है, साउंड है, सब है, अब जाते हैं लोग मंच पे करते हैं नाटक।
0: सर आखिरी सवाल, जो नए युवा रंगकर्मी आना चाहते हैं तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो किन बातों का ख्याल रखें, और दूसरा क्या, जैसे आपने कहा कि आपने पूरे जीवन नाटक ही किया, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई नौकरी करो, इससे क्या होगा, पहले तो ज़्यादा ही होता था अब शायद, कि तो क्या इसमें इनकम भी लोगों की हो जाती है, कोई बहुत से लोग चाहते हैं सिर्फ नाटक ही करें, तो किन बातों का युवा ख्याल रख कर आए?
1: देखिए क्या है, आज के युवा पीढ़ी भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार 10-10 सीढ़ी फान के 100वें तल्ले पे पहुंच जाए। नहीं, आप जब 100वें तल्ले तक आप पहुंचेगा तब तक टाएं टाएं फेस वहीं आप लुढ़क जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। आप एक एक सीढ़ी चढ़ें, और एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप निश्चित तौर पे आप 100 सीढ़ी पे आराम से पहुंच जाएंगे और नाम कमाएंगे। आज के युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं कि वो केवल भागने की कोशिश न करें, एक दो नाटक करें, निर्देशक बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप पढ़िए, किताब पढ़िए, कुछ समझिए, जितने भी चरित्र उसमें हैं उसके बारे में सोचिए, उसको पहले अपने आप में इम्प्रोवाइज कीजिए, आप खुद पहले उसको देखिए, आप खुद अपने ऊपर उसका इस्तेमाल करिए, तब आप उस करेक्टर को किसी को दीजिए और उनको उस तरह से कराइए। अच्छा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि एक दिन में एक घंटे में आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ के चल दिए नाटक को, नहीं, आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, फिर उसका बैकग्राउंड के बारे में सोचिए, उसके म्यूजिक के बारे में सोचिए, उसके लाइट के बारे में सोचिए, उसके ड्रेस के बारे में सोचिए, उस पर रिसर्च आपको करनी होगी।
0: सर भोपाल पहले आए हैं क्या? पहली
1: बहुत बार भोपाल आए।
0: अच्छा,
1: ये हमारा भोपाल चौथा या पाँचवा मंचन है हमारे नाटक का यहाँ पे, और यहाँ के जो भी सीनियर हैं रंगकर्मी हैं वो सबसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय है, व्यक्तिगत रिलेशन है सारे लोगों से, तो ये सारे लोग हैं, सब लोगों से मेरा बहुत अच्छा ये है।
0: बहुत धन्यवाद सर। और ये है नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश।
2: भोजपुर में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली।

0: ये सोचने का समय नहीं है महाराज, आप में क्या है संभव है आप नहीं जानते, पर हम सब जानते हैं। तभी तो सारी बाधाओं को अपने पैरों से कुचलते हुए, भयंकर नदियों को पार करते हुए, जंगली पशुओं से युद्ध करते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं महाराज। आज गोरों के विरुद्ध हर तरफ लड़ाई चल रही है, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सभी जगह बगावत हो रही है महाराज। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, कालपी के राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और तो और महाराज लोहे से बने महावीर तात्या टोपे इस जंग के नेता हैं। क्या हमारा बिहार इस आजादी की लड़ाई में पीछे रह जाएगा? क्या शेर कुंवर सिंह की गड़ी जगदीशपुर का नाम गुल हो जाएगा महाराज?
1: रजेश सिंह, बिहार भी इस आजादी की लड़ाई में आगे आएगा। और दादाजी, आपको यहाँ का सेनापति बनना पड़ेगा।
2: दादा, हम जानते हैं स्वतंत्रता देवी बलि चाहती है, मानव रक्त पीकर वो अवश्य प्रसन्न होगी।
1: हाँ दादा,
2: गोरे अवश्य यहाँ से भागेंगे और हमारा देश अवश्य आजाद होगा। रंजीत
0: महाराज,
2: कहाँ है हमारा राजमुकुट? शीघ्र ले आइए।
0: जो क्या महाराज?
2: महाराज,
0: महाराज,
2: हमारे आजाद जगदीशपुर का राज्य मुकुट है। आज से हमारे बाद आप यहाँ के राजा हुए।
1: दादा, दादा,
2: हमारे आप तो जानते हैं कि हम पुत्र पौत्र ही, लेकिन हमें उसका जरा भी अफसोस नहीं है। आप ही हो मेरे योग्य उत्तराधिकारी। आज के बाद आप दिलीपपुर के ही नहीं, जगदीशपुर के भी राजा हुए।
1: लेकिन आप दादाजी,
2: हमारी चिंता छोड़िए अमर। एक बात
1: दादा
2: और सुनो मेरे योग्य भाई।
1: हाँ दादा।
2: यही है ओ जननी जन्म भूमि, जिसे बचाने के लिए हमने अंग्रेजों से गहरी लड़ाई मोली, अपने शरीर के अंग को कुर्बान कर दिया। देख रहे हैं हमारा ये दायरा, इसे किसी दुश्मनों ने नहीं काटा है और ना ही किसी बीमारी ने इसे नष्ट किया है, इसे स्वयं हमने काटा है। माँ गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है अमर।
1: हाँ दादा,
2: इसे बचा कर रखना होगा मेरे भाई।
1: हाँ,
2: रखना होगा आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए।
1: दादा, दादा, मेरे प्राण के साथ यह धरोहर रहेगा। प्राण दूंगा पर आजादी नहीं।
2: बहुत बहुत नहीं, भगवान शंकर आज हमारा यज्ञ पूरा हुआ, हमें छुट्टी तो दे, हमें छुट्टी दो। भारत माता की।

0: शोर रखा है। जगदीशपुर के महल की एक एक ईंट, यहाँ के हरे भरे खेत, कल कल निनादनी गंगा की प्रखर धारा और भारत का शीतल पवन युग युग तक इस देश की संतान को इस वृद्ध की वीरता के गीत सुनाया करेंगे। आइए हम और आप इस महान वीर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
1: मगर किया जो जगदीशपुर के बूढ़े शेर ने गजब का काम, आज भी दुनिया करती इस दिन अमर कुंवर सिंह को सलाम। तो सुधीजन गुणजन ध्यान लगा के सुन ले कहानी थी।

0: और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपने सुने नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश, जिसका निर्देशन किया अभय सिन्हा ने। जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमने आपको मिलवाया रंगकर्मी अभय सिन्हा से। इनसे बातचीत की फराज फयाज ने। इसके साथ ही आपने नाटक बाबू वीर सिंह कुंवर के संपादित अंश सुने। इसके साथ ही हमारा आज का आमने सामने कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा। दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा है। हाँ,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है साहित्य पत्रिका वागर्थ। इस कार्यक्रम में आज हम आपको कहानी पाठ सुनवाएंगे। कहानीकार हैं रश्मि शर्मा।

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजीता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजीता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊँगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम, हर बात में हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता माँ माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है, मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए हैं। अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुआसी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएँ ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें, बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई हैं वो, अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं घुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ। ठीक है बाबा आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई, बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ। अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का। मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ। नए चेहरे जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे, पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे। एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी बाचकी होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे। आज से पहले न कभी एक दूसरे को देखा और न ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी। कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसे ही उठपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई। लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतर आया है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं, अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नई नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूं, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फपते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया, सपना और माँ। मैं कहीं खोया हूँ इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झिझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं, चाय खत्म कर तुम भी आओ। मैं अपने घर और कॉलेज के बीच उलझा सा चल पड़ा। उस रोज़ घर आकर भी उदासी छाई रही। मैं बेमन से खाना खाते हुए सोच रहा था कि जल्दी ही माँ के पास चला जाऊँ। अभी शुरुआत में उतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्लास मिस कर दिया तो भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। एक बार मिल रहा हूँ माँ से, तब आकर गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी लैंडलाइन पर पापा का फ़ोन आया। माँ के बारे में सभी बातें बताई उन्होंने। कहा, कीमो तो चल रहा है, वो बहुत तकलीफ होती है माँ को, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। 15 दिन के लिए तुम दिल्ली आ जाओ, मैं रांची आ रहा हूँ कुछ काम से। जी मैं कल ही करा लेता हूँ टिकट, माँ से मिल सकूँगा इसकी बेहद खुशी हो रही थी मुझे। बस अब कल कॉलेज चला जाऊँ और वहाँ मेहता जी के पास 15 दिनों छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूँ, फिर कल ही रेलवे स्टेशन जाकर टिकट करा लूँगा। सुबह कॉलेज गया, PR की पहली क्लास थी, मैम पढ़ाने आई। हल्की बैंगनी साड़ी और बड़ी सी कत्थई बिंदी में वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर ये महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया। माँ अब भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ। सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगाकर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं, इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है। ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए हैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया है। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा। हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझकर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं। मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ, घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है। मेरा मन भी लगा रहता मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी

मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह खूब प्यार से बातें की। माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा। जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे। हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा गोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता। सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है, और दो ना। कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना। अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है। आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना। तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा। माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ उस समय अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ, दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है। लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं चीख उठा। वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ, माँ होती तो कहती, देख प्रियमू रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है, इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। 1-2 साल की बड़ी थी रंजिता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई, देखा बुआ जोर जोर से रो रही, पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक, रंजिता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई। समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई। मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है, मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की। अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजिता की माँ को बुला ला, उनके लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो माँ, मुझे नहीं जाना रंजिता के घर, कॉलेज को देर हो रही। नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम, भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज। बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है, जाओ प्रियम माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ है, मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई। मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ, सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ खिराई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई, स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं।
मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तरकती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उस्मा से भर उठी। मुझे से धन्यवाद।

0: वागर्थ कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे कहानी पाठ का। कहानीकार थी रश्मि शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनौर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन सुना रहे हैं।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे संतूर वादन का।

कलाकार हैं सुविख्यात संतूर वादक पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा। संतूर वादन की ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित बादल राग समारोह में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।

मेरा मलाज ऐसा राग है कि उसके बाद में कोई धुन वगैरह जमती नहीं है, तो अगर यहीं समाप्त किया जाए तो कैसा रहेगा? कि आपको एक पहाड़ी सुनाता हूँ। हाँ जी, हम लोग शुरू करें, आप लोग तैयार हैं?

0: जिस सांस के तारों से संगीत झरने की तरह बह निकलता हो, जिस सांस के तारों से सुरों की गंगा धरती पर उतरती प्रतीत हो, और ऐसे वाद्य संतूर पर जब वादक महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का उत्तराधिकारी है,
1: तो संगीत सभा यादगार बन ही जाती है। हम बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा जी के, उनके साथ तबले पर संगत इस समय के सबसे ओजस्वी होनहार तबला वादक श्री ओजस अढ़िया जी ने की है। हम उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुविख्यात कलाकार पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभी आप संतूर वादन सुन रहे थे, कलाकार थे राहुल शिव कुमार शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर एप्को और यूनिसेफ मध्य प्रदेश की ओर से गुरुवार को यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में धार, देवास, इंदौर, बैतूल और भोपाल के युवा शामिल हुए। राजधानी में गुरुवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। काले घने बादल छाए और आंधी चली। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर पहुंच गई थी। शाम 6 से 7 बजे तक आंधी तूफान और बारिश का दौर चलता रहा। लगातार बढ़ रहे तापमान और लंबे हीटवेव दौर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं के मामले बढ़ सकते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे का कहना है कि बढ़ता वायु प्रदूषण अस्थमा, एलर्जी और अन्य श्वसन रोगों को बढ़ावा देते हैं। मौसम में अचानक बदलाव और धूल कणों की अधिकता भी सांस संबंधी मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। यह था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंदू, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। आज के कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को समर्पित है।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में रोज की तरह हम लेकर आए हैं आजादी के परवानों की शौर्य गाथाएं और भारतीय इतिहास के जाने पहचाने और अनजाने पहलू।
2: तारीख इतिहास में सभी कुछ होता तो है, पर कभी वो लोकमानस में अंकित हो पाता है और कभी नहीं। यानी कुछ लोग और घटनाएं अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं और कुछ गुमनामी में ही रह जाती हैं।
1: हाँ, पर इतिहास जो लोग और घटनाएं लोकप्रिय हो जाते हैं उनमें कुछ तो खास बात होती होगी ना, तभी उनके बारे में सभी जानते हैं।
2: बिल्कुल। अब जैसे इसी बात को ले लो कि ढांचे में बैठी बुराई से लड़ने के लिए ढांचे के ठेकेदारों से बैर मोल लेना और फिर कानून के आगे आत्मसमर्पण कर देना।
1: क्या? देखो इतिहास, मुझे तुम्हारा कहा हुआ एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कहे जा रहे हो, ढांचा, ठेकेदार, आत्मसमर्पण। अरे साफ साफ कहो ना किसकी बात कर रहे हो।
2: अच्छा बाबा, समझाता हूँ। तुमने अमर शहीद खुदीराम बोस का नाम सुना है?
1: हाँ, नाम तो सुना है, पर मुझे उनके विषय में बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, पर उनको फांसी की सजा हुई थी ये जानती हूँ।
2: ठीक, ये बता सकती हो कि उनको फांसी की सजा क्यों हुई थी?
1: अरे अब सब मैं ही बता दूंगी, तो तुम श्रोताओं को उनकी रोचक क्रांति कथा कैसे सुनाओगे?
2: हाँ, तो श्रोताओं के साथ साथ तुम भी सुनो। वे क्रांति भूमि बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले थे, पर जीवन का ज्यादातर समय कलकत्ता में ही गुजरा। कलकत्ता के मानिक तल्ला मोहल्ला के बागी बगीचे के इर्द गिर्द ही वे बड़े हुए।
1: एक मिनट, ये बागी बगीचा क्या बला है? बगीचों के नाम तो कानन कुंज, पुष्प वाटिका इस तरह के होते हैं, ये बागी बगीचा क्या नाम हुआ?
2: अरे इसके पीछे भी एक कहानी है।
1: फिर तो तुम्हें सुनानी ही होगी।
2: ये बाग डॉक्टर कृष्ण धन के घर के अहाते में था। यहाँ कई फलों के पेड़ भी थे। कृष्ण धन जी के छोटे बेटे बालेंद्र घोष ने बगीचे को बागी युवकों के नाम लिख दिया। यहाँ ये युवक आश्रम के तौर से रहते थे। बाद में तो यहाँ बम बनाने के कारखाने भी चालू हो गए।
1: अच्छा, तो सभी क्रांतिकारियों का अड्डा था ये।
2: बिल्कुल। और यहीं नवयुवक खुदीराम बोस की मुलाकात प्रफुल्ल चाकी से हुई।
3: आओ, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं।
4: जी
3: खुदी, ये प्रफुल्ल चाकी।
4: नमस्कार।
3: हमारे आश्रम के पुराने सदस्य।
4: अच्छा,
3: आश्रम की क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
4: अरे वाह।
3: और प्रफुल्ल, ये खुदीराम बोस हैं।
4: अच्छा, नमस्कार।
3: अपने हेमचंद दास कानूनगो के शहर मिदनापुर के हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, और यहाँ कलकत्ता में राजा नवकृष्ण स्ट्रीट में हेमचंद जी का मकान में रह रहे हैं।
5: अरे वाह।
3: आज से ये तुम्हारे साथ ही काम करेंगे।
4: नमस्कार। पर उस दिन तो अरविंद जी ने हमें अलग नामों से मिलाया था।
3: तुम्हारा परेशान होना स्वाभाविक है। क्या है कि हम क्रांतिकारियों को अपना असली नाम बताने की प्रथा नहीं है। अब तुम नए हमारे दल में सम्मिलित हुए हो, इसलिए अरविंद घोष जी ने तुम्हें हेरन सरकार और प्रफुल्ल चाकी को दिनेश चंद्र राय के नाम से मिलाया।
4: अच्छा।
3: पर अब जब तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है तो एक दूसरे का सही परिचय देना जरूरी हो गया था।
4: जी जी,
3: है ना। इसलिए खैर मैं चलता हूँ, शेष जो कुछ भी जानना समझना है आपस में जान समझ लेना। नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा असली नाम खुदीराम बोस है और तुम मिदनापुर के हो और यहाँ हेमचंद दास जी के मकान में रह रहे हो।
4: उस औपचारिक भेंट के बाद हम आपस में मिले भी तो नहीं ना?
5: हाँ, यहाँ आश्रम में सभी को निश्चित काम दे दिए गए हैं।
4: जी जी।
5: बिना काम कोई किसी से नहीं मिलता।
4: मेरा जन्म मिदनापुर के हबीपुर में हुआ।
5: अच्छा।
4: माता लक्ष्मी देवी जब मैं सिर्फ 1.5 वर्ष का था स्वर्ग सिधार गई, और इसके 1 वर्ष बाद सिर से पिता त्रिलोकीनाथ बोस का साया भी उठ गया।
5: फिर आपका पालन पोषण?
4: मेरा पालन पोषण और शिक्षा बड़ी बहन अपरूपा देवी के घर हुई। अनाथ बालक, फिर चंचल स्वभाव, केवल 2 दर्जे तक ही पढ़ पाया मैं।
5: क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
4: जब मैं तरुण अवस्था में प्रवेश किया उस समय बंगाल लॉर्ड कर्जन की बंग-भंग नीति और विभाजन की आग में झुलसने लगा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया हुआ था। इसके दमन के लिए गिरफ्तारियां, जेल यात्राएं, यातनाएं, सजाएं, जुर्माने और बंगालियों को अपमानित करने की घटनाओं ने सभी युवकों का मेरे मन की जंग दिया। मिस दमकल के विरुद्ध बदले की भावना जन्म लिया।
5: अच्छा, फिर बारिंद्र घोष जी संपन्न कैसे आए?
4: सन 1902 में मिदनापुर क्रांतिकारी बनाया गया। राजनारायण बोस के सुपुत्र सतेंद्र नाथ बोस के प्रयत्नों से यह दल बना। बारिंद्र जी के बड़े दल बना। बारिंद्र जी के बड़े भाई अरविंद जी ने इस क्रांतिकारी समिति की नींव डाली। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भागिनी निवेदिता भी वहां मौजूद थी। वो गांव-गांव घूमकर क्रांतिकारी समिति खुलवाने में मदद कर रही थी। हेमचंद दास कानूनगो के साथ मैं भी उस आयोजन में गया था। हेमचंद जी से मैं मिलता रहता था, वो मेरे क्रांतिकारी विचारों से परिचित थे। यही मेरी मुलाकात क्रांतिकारी सुरेंद्र नाथ बोस से हुई थी। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, मुझे यहाँ बारिंद्र जी की टोली में दीक्षित होने के लिए भेज दिया। तब से मैं यहीं पर हूँ। फिलहाल हेमचंद जी के मकान में ही रह रहा हूँ।
5: मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं है। जब से होश संभाला बारिंद्र जी के साथ हूँ।
4: अच्छा।
5: नुपुर रोड के इस मानिक टल्ला बागीचे में जब वारिन जी ने ये आश्रम शुरू किया, हम 5 छात्र थे।
4: अच्छा।
5: बहुत दौड़ धूप के बाद संख्या 15 तक पहुंची।
4: अरे वाह।
5: उस समय जीवन यापन के लिए हम लोगों ने यहाँ सब्जियां उगाना शुरू किया। फिर आम, केले, अमरूद, जामुन आदि के पेड़ तो थे ही, इन्हें बेचकर ही काम चलने लगा।
4: वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे आपके साथ रखा गया है तो ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा।
5: हाँ, आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि इस बागीचे में बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दरअसल हेमचंद्र दास जी अपनी जमीन जायदाद बेचकर फ्रांस चले गए बम बनाने का प्रशिक्षण लेने। वहाँ पेरिस में पंडित श्याम जी वर्मा और बैरिस्टर सरदार सिंह जी राणा के सहयोग से बम बनाना सीखा। वहाँ उनके साथी थे बम्बई के T.M. बापट और हैदराबाद के मिर्जा अब्बास। भारत लौटकर हेमचंद जी ने यहाँ इस बागीचे में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। एक बात बता दूं, मैं 3 बार बम विस्फोटों में शामिल रहा हूँ। 2 बार हम छोटे लाल फूलर को बम से उड़ाने गए और तीसरा विस्फोट मैंने खुद जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए अपनी मर्जी से किया था, पर हम सफल नहीं हो पाए।
4: अब मैं समझा, यानी अब मैं आपके साथ बम विस्फोट दल का सदस्य बन गया हूँ।
5: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। खुद हेमचंद्र जी का सुझाव था कि तुम्हें इस दल में शामिल कर लिया जाए। पहली बार जब फूलर पर हमला किया गया था तब मैं बारिंद्र घोष और हेमचंद जी का साथी था। अब से तुम मेरे साथी रहोगे।
4: अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, कि तुम जज किंग फोर्ड को क्यों मारना चाहते हो?
5: क्योंकि मुझे वारिंद्र जी ने बताया कि इसी ने मेरे पिता को क्रांतिकारी होने के शक में बिना सबूत फांसी की सजा दी थी।
4: अच्छा।
5: इस निजी कारण के अलावा इस जज ने क्रांतिकारियों के दमन की काली आंधी चला रखी है। बंगाल में राष्ट्रीयता जगाने वाले सभी पत्रों से संबंधित सभी लोगों को इसने जेलों में सड़ने को मजबूर कर दिया है। युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति आदि सभी पत्रों के संपादकों, मुद्रकों को सजा सुनाने वाला जज यही है। कृष्णचंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बाधव, भूपेंद्र नाथ दत्त सभी इसके शिकार रहे हैं। इसीलिए हमारी परिषद ने इसे खत्म करने का निर्णय लिया है।
4: हाँ, तो मतलब मेरा पहला निशाना किंग फोर्ड होगा।
5: हाँ, हम दोनों को यही काम सौंपा गया है।

0: खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पूरे कलकत्ता में किंग्सफोर्ड को ढूंढते रहे, पर उसका कोई पता नहीं चला। आखिर वारेंद्र घोष ने उन्हें सूचना दी।
1: खुदी और चाकी, तुम्हें मुजफ्फरपुर जाना है।
2: ठीक है।
3: यानी हमारा शिकार मुजफ्फरपुर पहुंच गया है।
1: हाँ खुदी, किंग्सफोर्ड पर हुए हमले से पहले ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई है। कलकत्ते में किंग्सफोर्ड के जीवन के लिए खतरा मानकर उसे जिला सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया
2: है। बारिन जी,
1: जी
2: मुजफ्फरपुर में हमें कहाँ रहना है और क्या करना है?
1: अब तुम्हें करना क्या है तो तुम जानते हो, और रहना कहाँ है ये मैं बता देता हूँ।
2: ठीक है।
1: मुजफ्फरपुर में तुम लोग मेहता बोर्ड स्टेट की धर्मशाला में ठहरोगे।
2: ठीक है।
1: ठीक है। और वहाँ चाकी तुम अपना नाम दिनेश चंद्र राय लिखवाओगे।
2: ठीक है।
1: और खुदी वहाँ तुम्हारा नाम दुर्गा दत्त सेन होगा।
3: ठीक है।
1: एक बात और, वहाँ सबसे पहला काम होगा किंग्सफोर्ड की दिनचर्या पर नजर।
2: ठीक है।
1: और फिर हमले के लिए सही समय का चुनाव करना। ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि वहाँ फोर्ट की सुरक्षा काफी कड़ी होगी, अतः तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी।
3: आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अपने उद्देश्य में कामयाब होकर लौटो।
3: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम।
5: फिर योजना सफल हुई?
0: योजना के अनुसार खुदीराम और चाकी दोनों मुजफ्फरपुर चले गए। वहां किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नजर जमा के बैठ गए। आखिर वो दिन भी आया जब उनके उद्देश्य पूरे होने लगे,
5: यानी सफलताएं मिलने लगी। उस अंग्रेज पर आक्रमण करने का मौका मिल गया क्या?
0: हाँ, 30 अप्रैल 1908 की अमावस की काली रात में, जब गुप्त अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, ऑफिसर क्लब के बाहर चाकी और खुदीराम हथियारों से लैस पेड़ के पीछे छिपके बैठे थे और किंग्सफोर्ड का इंतजार कर रहे थे।
5: अब इतने दिनों तक उसकी जासूसी करते रहने के बाद ये तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि उस समय किंग्सफोर्ड काली बग्घी में सवार क्लब के बाहर निकलेगा।
0: हाँ, और तभी एक काली बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम ने निशाना साधा और बम फेंका।
5: ओह, फिर?
0: एक जोरदार धमाका हुआ, बग्घी जल के राख हो गई, घोड़ों ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया, और खुदीराम और चाकी अपना संकल्प पूरा होते देख वहां से भाग निकले।
5: किंग्सफोर्ड तो मारा ही गया होगा, इतने घातक विस्फोट में कोई बच कैसे सकता है?
0: मारा तो तब जाता जब वो उस बग्घी में होता।
5: क्या मतलब?
0: मतलब ये, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी थी, दोनों उस विस्फोट में मारी गईं। कोचवान बुरी तरह घायल हो गया।
5: ओह, बड़ा बुरा हुआ। पर फिर तो पुलिस खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई होगी। क्या वे दोनों पकड़ में आए?
0: पुलिस ने पूरे मुजफ्फरपुर को घेर लिया, जगह जगह नाकाबंदी की और छापे पड़ने लगे। रेल की पटरियों के साथ साथ रात भर करीब 25 मील चलते रहने के बाद वे दोनों सुबह बैनी गांव पहुंच गए।
3: प्रफुल्लता, चारों ओर पुलिस चौकन्नी है, हम दोनों का साथ घूमना ठीक नहीं है। आप यहाँ आमों के बाग में बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ।
2: ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और पुलिस से बच के रहना।
3: अरे आप मेरी चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, मैं अभी आता हूँ।
2: ठीक है।
3: थोड़ा माहौल का जायजा भी लेता आऊंगा ताकि आगे की योजना बनाई जा सके।
2: संभल कर जाना।
3: जा।
0: खुदीराम जब मोदी की दुकान पर सामान लेने पहुंचे तो वहां दो सिपाही शिवप्रसाद और फतेह सिंह आपस में उन्हीं की रात वाली घटना की बातचीत कर रहे थे।
4: फतेह सिंह, तुमने सुना
2: क्या?
4: रात मुजफ्फरपुर में बागियों ने फिर वारदात की। यूरोपियन क्लब के बाहर बम विस्फोट हुआ है।
2: हाँ सुना, पर वारदात से पहले शाम को सुना है एसपी साहब द्वारा तैनात दो सिपाहियों ने दो अनजान लड़कों को यूरोपियन क्लब के बाहर घूमते हुए देखा था।
4: अच्छा,
2: और सिपाहियों ने उनका हुलिया भी बताया है, उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं।
4: यार हुलिया क्या?

0: क्रांतिकारी दिखता है।
1: हाँ,
0: थकी शक्ल सूरत, धूल दूषित बदन, वही कचकाठी, दबोच ले इसको, हिलने ना पाए।
1: खबरदार, छोड़ो, कोई चलाकी नहीं करना, नहीं तो रिवाल्वर की गोली भेजा फोड़ के बाहर निकल जाएगी। फतेह सिंह, तलाशी ले इसकी। फिकर मत कर, मैंने पकड़ लिया है इसको, दबोच के रखो।
0: मैं तलाशी लेता हूँ इसकी। अरे, ये तो रिवाल्वर निकले इसके पास से।
1: रिवाल्वर
0: एक लोडेड है।
1: लोडेड?
0: हाँ, और ये 30 कारतूस है। अच्छा हुआ तुमने इसे एकदम दबोच लिया।

0: चौरानर खुद ही राम बोस एक खतरनाक क्रांतिकारी होता। हौली शक्ल और छोटी उम्र का दिखने वाला ये लड़का एक ब्रूटल किलर है। 30 अप्रैल 1908 की रात को इसने अपने साथी के साथ मिलकर यूरोपियन क्लब से आ रही बेकसूर और इनोसेंट लेडी मिसेस कैनेडी और उनकी डॉटर मिस कैनेडी का बम एक्सप्लोड कर ब्रूटल मर्डर किया है।
1: तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस होता?
0: शौरानर, मौके बाद रात से तो कोई एविडेंस नहीं मिला। उस दिन शाम को दो पुलिसमैन तहसीलदार खान और फौजदीन ने दो लड़कों को यूरोपियन क्लब के बाहर घूमते देखा था। उनका हुलिया उनके बताए हुलिये से मैच करता। फिर वेनी विलेज में जब ये अरेस्ट किया गया, उसके पास से दो रिवॉल्वर और 30 लाइफ कारतूस बरामद किया गया है।
1: इसके साथी का क्या हुआ? कुर्दा पुलिस अरेस्ट है?
0: नो योर ऑनर, बट अभी अभी खबर मिला है कि ही कमिटेड सुसाइड। ये कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। नंदलाल बनर्जी नाम के दारोगा को उस पे शक हुआ। पूछताछ से बचने के लिए ये प्लेटफार्म पर उतरकर भागना चाह रहा था। दारोगा बनर्जी ने पहले ही पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आर्मस्ट्रांग के ऑर्डर से उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लेटफार्म पे पुलिस फोर्स ने उसे घेर लिया। उसने दारोगा पर फायर किया, पर दारोगा ने खुद को बचा लिया। जब इसके साथी ने देखा कि इसका पकड़ा जाना तय है, तो इसने खुद को गोली मार ली। एक फायर अपने फॉरहेड पे किया और दूसरा छाती पे।
1: क्या उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ?
0: शौरानर, उसका नाम प्रफुल चाकी आइडेंटिफाई हुआ है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका फोटो और कटा से लेके दारोगा अभी आता होता।
1: अपराधी को ऑर्डर दिया जाता है कि कटे सिर को देखकर बताए, क्या ये इसका साथी है?
2: जी योर ऑनर, ये मेरा साथी है, पर ये बेकसूर था।
1: क्या इसका नेम प्रफुल्ल चाकी है?
2: जी योर ऑनर।
1: मिस्टर एडवोकेट, तुमने 7 डेज में अपराधी से कोई 55 क्वेश्चन किया, पर तुम ये प्रूव नहीं कर पाया कि 13 अप्रैल 1908 की रात को जो बम ब्लास्ट हुआ वो इसने किया।
0: एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि इसका संबंध कलकत्ता के 32 नंबर मोरारी पुकर रोड पर मौजूद मानिक तल्ला मोहल्ले के उस बागीचे से है जहां बम बनाने का कारखाना है।
1: इसका क्या मतलब?
0: मतलब ये योर ऑनर, 30 अप्रैल को यूरोपियन क्लब के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसे टेस्ट करने पर पता चला ये बम उसी बगीचे में मौजूद बम बनाने के कारखाने में बनाया गया था। पुलिस ने छापा मारकर वहां से 9 रिवॉल्वर, कई बम, डायनामाइट, बम का शेल, लेची, पिन, कॉपर, प्रिफिक एसिड, बम शेल का मोल्डिंग मशीन, 3 राइफल, 2 देसी बंदूक और भट्टी जब्त की है। इसके साथ ही कुछ और भी अरेस्ट हुआ है, जिसमें बारिंद घोष, उल्लासकर भट्ट, विभूति भूषण सरकार, नालिनी खान खूबता, विजय कुमार नाग, शचिंद्र नाथ सेन, नरेंद्र बख्शी और हेमेंद्र नाथ घोष को शामिल होता।
1: अपराधी, तुम बताओ, क्या तुम्हारा एसोसिएशन इस बगीचे के बॉम्ब फैक्ट्री से है?
2: योर ऑनर, ना तो आपके वकील साहब ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा हाथ 30 अप्रैल के बम कांड में था, और ना ही ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा संबंध 32 नंबर मुरारी पुकुर रोड कलकत्ता के उस बगीचे से है जिसमें बम कारखाना है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि वो बम ब्लास्ट मैंने ही किया था, और मेरा संबंध कलकत्ता के बम कारखाने वाले बगीचे से रहा है।
1: अपराधी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। हम तुमसे पूछता, फांसी की सजा सुन के तुमको कोई दुख नहीं?
2: दो बातों का दुख है योर ऑनर। एक तो ये कि किंग्स फोर्ड बच गया, और व्यर्थ में ही दो महिलाओं की जान चली गई। दूसरी बात ये, योर ऑनर, जब मेरी बहन अपरूपा दीदी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं उनका एकमात्र भाई था। बस योर ऑनर, बस।
3: ग्यारह अगस्त 1908 सुबह 6 बजे इन्हें फांसी दे दी गई।
4: शहीद की शव यात्रा का नजारा बड़ा हृदय विदारक होता है। आंखों में जब आंसुओं के साथ फक्र चमकता है, तब जैसे समय भी रुककर देश पे मर मिटने वालों को नमन करता है।
3: खुदीराम की शव यात्रा में इतने फूल बरसे कि शैया एक फूलों का बिछौना बन गई। अमर शहीद को श्रद्धांजलि में मिली ढेरों दुआएं और जो जीते जी उन्हें कांटे मिले, वो मौत के बाद फूलों में बदल गए।
4: उनके कभी न हारने वाले जज्बे को तहे दिल से आदरांजलि।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। नाटक लिया गया था स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जननायक से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आज का आजाद हिंद कार्यक्रम क्रांतिकारी खुदीराम बोस को समर्पित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
2: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का कार्यक्रम संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे संदीप शर्मा और वर्षा सिंह।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा
2: और मैं हूं वर्षा सिंह।
1: श्रोताओं, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकार समय से आगे चलकर भी दिलों में ठहर जाता है, इसी तरह का कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। आज कला कल्लोलिनी में हम बात करेंगे उस संगीत साधक की जिसके हाथों में समय की धड़कन थिरकती थी, जिसके संतूर से पर्वत बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और आकाश राग में ढल जाता था। आज का विषय है संतूर सम्राट शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोक से उठाकर शास्त्रीय आकाश तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार।
2: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला को नहीं चुनते, कला उन्हें चुनती है। उनका जीवन किसी अभ्यास की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होता है। वे मंच पर नहीं चढ़ते, वे मंच बन जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ऐसे ही कलाकार थे जिनके लिए संगीत न पेशा था न प्रदर्शन, बल्कि एक आजीवन तपस्या।
1: भारत के मानचित्र में एक भूखंड ऐसा भी है जहां धरती केवल मिट्टी का विस्तार नहीं होती, वहां वो साधना का स्वरूप बन जाती है, जहां पर्वत मौन होकर भी उपदेश देते हैं और नदियां बहते बहते राग रचती हैं, जहां सुबह की हवा सिर्फ शीतल नहीं होती, वो अपने साथ स्वरों की स्मृति लाती है, और जहां संध्या की निस्तब्धता में ताल अदृश्य होकर भी स्पष्ट सुनाई देती है, वो धरती है जम्मू कश्मीर।
2: साथियों, 10 जनवरी 1938 जम्मू शहर, वो नगर जो केवल भौगोलिक बिंदु नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है, जहां मैदान पहाड़ों से संवाद करते हैं। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके लिए समय ने पहले ही अपनी भूमिका तय कर दी थी। एक बालक जो आगे चलकर स्वरों का यात्री बना और जिसकी साधना ने एक लोकवाद्य को शास्त्र का सिंहासन दिलाया। उस बालक का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: वो जन्म से ही किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थे। भले ही उनका जन्म जम्मू की धरती पर हुआ, पर उनकी चेतना कश्मीर की शांत घाटियों में अनविरत विचरण करती रही। उनके भीतर हिमालय का धैर्य था, झेलम की निरंतरता थी और घाटियों का वो मौन था जो बोलने से पहले अनुभव करता है। यही कारण था कि जब संतूर के 100 तार उनकी उंगलियों में स्पंदित हुए तो वह केवल संगीत नहीं था, कश्मीर की आत्मा थी जो स्वर बनकर विश्व से संवाद कर रही थी।
2: जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही कथा कहने लगे, तब समझिए संगीत बोल रहा है। ये कथा ना किसी राजा की है, ना किसी युद्ध की, ये कथा है एक साधक की जिसने 100 तारों में अपनी आत्मा बांध दी। ये कथा है उस वाद्य की जिसे कभी लोक सीमाओं में बांध दिया गया था और एक मनुष्य ने उसे शास्त्र का आकाश दे दिया। उस साधक का नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, उनके पिता थे पंडित उमा दत्त शर्मा। बनारस की पवित्र संगीत धारा में उन्होंने अपने गुरु पंडित रामदास जी से शिक्षा पाई थी। ध्रुपद और ख्याल उनकी साधना के 2 स्तंभ थे और तबला तथा पखावज उनके हाथों में केवल वाद्य नहीं बल्कि समय को नापने वाले साधन बन जाते थे। उनकी गायकी में बनारस घराने की गंभीरता थी, वो ठहराव, वो गहराई जो स्वर को सजावट नहीं अर्थ देती है। ऐसा कहा जाता है जब वे रियाज में बैठते तो स्वर पहले कमरे में उतरते और फिर धीरे धीरे मन में। उस घर का वातावरण साधारण नहीं था। वहां सुबह सूरज की पहली किरण से पहले रियाज शुरू हो जाता और रात तब समाप्त होती जब स्वर थक कर मौन में विश्राम करते। वो घर सोता नहीं था, वो सुनता था। दीवारें ताल पहचानती थीं और आंगन रागों का साक्षी था। उसी वातावरण में शिव कुमार शर्मा बड़े हुए जहां संगीत सिखाया नहीं जाता था, जिया जाता था।
2: जी हाँ, माता का हृदय भी संगीत से भरा हुआ था। कोमल, संवेदनशील और स्वप्नदर्शी। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं और उनके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ आकांक्षा पलती रहती थी। उनकी आंखों में एक सपना था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई एक दिन संतूर जैसे लोकवाद्य पर भी उसी गरिमा के साथ गूंजे। शायद वही सपना था जो आगे चलकर शिव कुमार शर्मा की साधना में बदल गया। पिता ने अनुशासन दिया, गुरु ने दिशा दी और माँ ने उस यात्रा को अर्थ, और यही तीनों मिलकर एक ऐसे संगीतज्ञ को गढ़ रहे थे जिसकी कथा आगे चलकर संतूर की तरंग में लिखी जानी थी।
1: शिव कुमार शर्मा ने बचपन में कभी संगीत को अलग विषय की तरह नहीं देखा, वो तो उनके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव कुमार सुरों से खेलते। जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनते, वे आलाप सुनते। उनके लिए संगीत सीखा नहीं जाता था, वो देखा, सुना और जिया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया। कोई दबाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उमादत्त शर्मा जानते थे कि संगीत को थोपने से नहीं, बोने से फल मिलता है।
2: स्कूल की पढ़ाई भी चली, किताबें भी आईं, लेकिन शिव कुमार का मन कक्षा के 4 दीवारों में नहीं टिक पाता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें समझ आते थे, पर हवा में तैरते हुए सुर उन्हें ज्यादा सच लगते थे। शिक्षक पढ़ाते और खिड़की से आती हवा किसी अनजाने राग का संकेत दे जाती। पढ़ाई जरूरी थी, पर आत्मा का रास्ता कहीं और था, और आत्मा का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं गुजरता।
1: जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र तक शिव कुमार जम्मू के स्थानीय रेडियो स्टेशन पर गायन और तबला प्रस्तुत करने लगे थे। रेडियो की तरंगों पर उनका स्वर जाना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा छोटी नहीं होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशोर अवस्था में पिता ने उन्हें संतूर से परिचित कराया। वही संतूर जो कश्मीर की सूफी परंपरा में गूंजता तो था, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर अभी तक अजनबी था। लगभग 100 तारों वाला ये वाद्य सुंदर तो था, लेकिन जिद्दी भी था। स्थिर स्वर होने के कारण लोग मानते थे कि ये रागों की बारीकियों के लिए उपयुक्त नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खुद पंडित शिव कुमार शर्मा का कहना है, असल में संतूर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसे संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 100 तार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया।
2: पिता की इच्छा और उनकी कामना शिव कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार ने संतूर को अपनी साधना का केंद्र बना लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उंगलियां दुखती थीं, तार उलझते थे और हर राग एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार निराशा हुई, लेकिन पिता का विश्वास, माँ का सपना और भीतर की पुकार, तीनों मिलकर उन्हें हर बार रियाज की चौकी पर वापस बैठा देते।
1: शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया और अपने चिंतन तथा प्रयोगों से इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की थी, जिससे शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णता सक्षम वाद्य बन गया। शिव कुमार शर्मा जी को ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि की शिक्षा भी मिली थी। श्रोताओं, बचपन की गलियों से निकलकर शिव कुमार अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। माता पिता अब केवल जीवन देने वाले नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे, जिनकी आंखों में आशीर्वाद था और जिनके मौन में प्रार्थना बसती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। स्वरों की उड़ान किसी और, बड़े आकाश की मांग करने लगी थी। भीतर कहीं एहसास गहराने लगा था कि अब केवल सीखा हुआ दोहराने का समय नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने का समय आ गया है। इसी परिवर्तन की पुकार में नई राह खोजने की आस लेकर शिव कुमार ने अपने संतूर को साक्षी बनाया और बंबई की ओर कदम बढ़ा दिए। ये केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, ये समय के साथ चलने का साहस था, जहां भविष्य इंतजार में नहीं, परीक्षा में मिला करता है, और जहां हर कलाकार को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है।
2: 1955 में जब शिव कुमार शर्मा पहली बार मुंबई पहुंचे, तो ये यात्रा उतनी उजली नहीं थी जितनी बाद में इतिहास में दिखाई देती है। उस समय बंबई केवल अवसरों का शहर नहीं था, वो नए कलाकारों के लिए एक कठोर कसौटी थी, जहां हर दिन कोई ना कोई सपना टूटता था और कोई जिद जन्म लेती थी। शिव कुमार अपने संतूर के साथ इस शहर में आए, लेकिन शहर ने उन्हें तुरंत अपनाया नहीं। कुछ मंच मिले, कुछ लोगों ने सुना, पर स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आशा लेकर वो आए थे। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन पहचान नहीं थी। धीरे धीरे निराशा ने भी दस्तक दी और कुछ समय बाद मन और हालात दोनों थक गए। वे लौट आए जम्मू, खाली हाथ नहीं, लेकिन भारी मन के साथ।
1: घर लौटने पर पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने बेटे के चेहरे पर वो चुप्पी देखी जो हार की नहीं उलझन की होती है। पिता ने व्यावहारिक स्वर में कहा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, रेडियो में नौकरी कर लो, संगीत भी रहेगा और जीवन भी संभल जाएगा। ये सलाह अनुभव से उपजी थी, डर से नहीं, लेकिन शिव कुमार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा, संगीत अगर करूंगा तो अपने दम पर, मैं फिर बंबई जाऊंगा और मेहनत करूंगा। उस क्षण पिता समझ गए कि यह जिद नहीं है, स्वभाव है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, केवल आशीर्वाद दिया जाता है।
2: दूसरी बार बंबई जाना पहले से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन भीतर कहीं अधिक स्पष्टता थी। अब वे कलाकार नहीं थे, साधक थे। इस दूसरी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से, भारतीय सिनेमा के उस स्तंभ से जिसकी दृष्टि संगीत को केवल सजावट नहीं आत्मा मानती थी। वी शांताराम ने शिव कुमार के संतूर में कुछ अलग सुना। उन्होंने उन्हें अपनी प्रसिद्ध झनक झनक बाजे पायलिया फिल्म से जुड़े संगीतकार वसंत देसाई के पास भेजा। वसंत देसाई ने उनसे कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक छोटा सा संगीत टुकड़ा बना कर दिखाइए।
1: और यही वो छोटा सा अवसर, वही क्षण शिव कुमार शर्मा के बंबई के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बन गया। संतूर जो अब तक शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह तलाश रहा था, पहली बार सिनेमा की दुनिया में धीरे से प्रवेश कर रहा था। ये शुरुआत थी, शोर से नहीं, सौम्यता से। यहीं से वो यात्रा चली जो आगे चलकर शिव हरी जैसी ऐतिहासिक जुगलबंदी तक पहुंची और सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के अमर संगीत में ढल गई।
2: संघर्ष की राग रात्रि बीत चुकी थी। साधना ने जब स्थिर सुर को थामा, तब जीवन के तानपुरे पर मंगल बेला की पहली तान फूटी। 1966 में शिव कुमार शर्मा के जीवन में स्थिरता का एक मधुर अध्याय जुड़ा। उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक कलाकार और उसकी साधना के बीच बनी गहरी समझ का संबंध था। कलाकार का पहला प्रेम उसका संगीत होता है, और मनोरमा जी ने इस सत्य को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाया जहां समय रियाज का होता है और प्रतीक्षा प्रेम की भाषा बोलती है। इस दाम्पत्य में शब्द कम थे, पर भरोसा गहरा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा, पुत्र राहुल और रोहित का आगमन हुआ। उनके पुत्रों रोहित और राहुल ने पिता की साधना को बहुत पास से देखा, पर मंच और संतूर की पुकार राहुल शर्मा के भीतर सबसे गहरी उतर गई। पिता ने बेटे पर संगीत थोपा नहीं, बस उसे सुरों के पास बैठने दिया, और वहीं बैठना, वहीं सुनना एक दिन संतूर बन गया। राहुल में शिव कुमार शर्मा ने उसे संगीत लौ की झलक देखी जो कभी उनके भीतर जली थी।
1: आगे चलकर शिव कुमार शर्मा ने अपने पुत्र राहुल शर्मा को अपना शिष्य बनाया और संतूर वादन में पारंगत किया, और संतूर की साधना पिता से पुत्र तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। जिस दिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने पहली बार राहुल के साथ मंच साझा किया, वो क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक लम्हा था। श्रोताओं को शायद एक जुगलबंदी सुनाई दी, पर पिता के हृदय में वो पल था जब गुरु और पिता दोनों एक साथ खड़े थे, पर आंखें नम थी।
2: जब समय आगे बढ़ चुका था, संतूर को पहचान मिल चुकी थी, तब जीवन ने पंडित शिव कुमार शर्मा को वो सुख दिया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, अपने ही सुरों को अगली पीढ़ी में जीवित देखना। पिता और पुत्र की ये जोड़ी वर्ष 1996 से साथ साथ संतूर वादन में जुगलबंदी करते आ रहे हैं। रोहित मंच पर नियमित रूप से संतूर वादन में नहीं आए, पर परिवार की नींव, सहारा और मौन शक्ति बनकर साथ रहे।
1: श्रोताओं, संगीत की दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर परिवार के लिए समय बहुत कम। यात्राएं, रियाज, मंच, इन सब के बीच परिवार के लिए कुछ पल चुराने पड़ते थे। फिर भी जब वे घर में होते तो पूरी तरह घर के होते। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बातें, पत्नी का मौन सहयोग, यही उनका विश्राम था। उनका परिवार उनके संगीत की वो तान था जो मंच पर नहीं बजती पर भीतर गूंजती रहती है।
2: दोस्तों, अब हम उनके बंबई यानी कि फिल्मी दुनिया के सफर पर वापस लौटते हैं। आइए चलते हैं वापस बंबई। वी शांताराम जी के साथ काम करने के बाद असल में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत सफर आगे बढ़ता है। शिव और हरि मिलते हैं, इतिहास रचते हैं। मुंबई में जीवन कभी सरल नहीं रहा। ये शहर सपनों को बुलाता भी है और उन्हें कठोरता से परखता भी है। इसी भीड़ में, इसी शोर के बीच एक दिन शिव कुमार शर्मा की भेंट हुई पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दो साधकों का मिलन था। शब्द कम थे, मौन अधिक। संतूर और बांसुरी जब पहली बार आमने सामने आए तो किसी ने मंच के किनारे फुसफुसा कर कहा, ये संगीत नहीं, संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं, सांसें बोलती हैं। यहीं से जन्म हुआ 1967 में उस ऐतिहासिक यात्रा का, जिसे दुनिया ने कॉल ऑफ द वैली के नाम से जाना।
1: शिव हरी की जोड़ी और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की संगत से एल्बम कॉल ऑफ वैली बनाया, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। कश्मीर की घाटियों की स्मृति, पहाड़ों की नीरवता और साधना की सुगंध सब एक ही एल्बम में उतर आए। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मील का पत्थर बन गया।
2: समय के साथ ये आत्मिक जुगलबंदी मंचों से निकलकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंची। जब यश चोपड़ा जैसे संवेदनशील निर्देशक ने शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया के संगीत पर भरोसा किया, तब फिल्म संगीत की भाषा ही बदलने लगी। सिलसिला में देखा एक ख्वाब, ये कहां आ गए हम, चांदनी में, चांदनी ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की, लम्हे में मोहे छेड़ो ना, यादें याद आती हैं। इन गीतों में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो स्वयं कथा बन गया। प्रेम, विरह, स्मृति और मौन, सब कुछ सुरों में बहने लगा। 1980 और 1990 का दशक आते आते शिवहरी केवल संगीतकारों की जोड़ी नहीं रहे, वे एक एहसास बन चुके थे जिसे सुना नहीं, जिया जाता था।
1: जी हाँ, कॉल ऑफ द वैली और इसके बाद फिल्मी सफर पर तो हमने खूब बातें की, लेकिन शिव कुमार शर्मा की संगीत यात्रा केवल मंचों और सम्मानों तक सीमित नहीं रही। उसका सबसे स्थायी रूप उनके एल्बम्स में दर्ज हुआ, जहां समय थमकर सुरों में खो जाता है। हर एल्बम उनके जीवन की किसी न किसी साधनात्मक अवस्था का दस्तावेज है, उस आत्मविश्वास का प्रमाण जिसमें संतूर अकेले मंच पर खड़ा हो सका।
2: आगे के वर्षों में उनके एल्बम और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। 1982 में जाकिर हुसैन के साथ वैन टाइम टू डिस्टिल जैसे प्रयोगों ने ताल और सुर के बीच गहरे संवाद को जन्म दिया। 1987 में राग मधुवंती और राग मिश्र तिलंग जाकिर हुसैन जी के साथ तथा 1988 में सम्मोहक सिंतूर तथा 1988 में सम्मोहक संतूर, इन कृतियों में संतूर केवल वाद्य नहीं, एक गायक सा प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के और म्यूजिक एल्बम को साझा कर रहे हैं।
1: When Time Stood Still, Live in Bombay, 1982, The Glory of Strings, संतूर, 1991, राग भोपाली, वॉल्यूम 1, 1993, राग केदार, वॉल्यूम 2, 1993, A Homage to the Rain Gods, 1993, 100 Strings of संतूर, 1994, हिप्नोटिक संतूर 1994, द पायोनियर ऑफ संतूर 1994, राग बिलास खानी तोड़ी 1994, वर्ल्ड नेटवर्क सीरीज वॉल्यूम 1, इंडिया, राग पूरिया कल्याण विद जाकिर हुसैन 1995, संतूर, राग बागेश्री 1998, संप्रदाय 1999, रसधारा विद हरिप्रसाद चौरसिया 1999, द वैली रिकॉर्ड्स वॉल्यूम 2, हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सन 2000, आनंद ब्लिस विद जाकिर हुसैन 2002, वाइब्रेंट म्यूजिक फॉर रेकी 2003, सिंपैटिको राग चारुकेशी 2004, द इनर पाथ कीरवानी 2004, एसेंशियल इवनिंग चैंट्स 2007, अ मॉर्निंग रागा गुजरी तोड़ी 2010, शिव कुमार शर्मा मैस्ट्रोस चॉइस सीरीज 2 2011 और संगीत सरताज 2011।
2: 1993 और 94 के एल्बम उनके संगीत के आध्यात्मिक और प्रकृति संवेदी पक्ष को उजागर करते हैं। उनका संगीत ऋतुओं, भावों और अनुभूतियों से गहराई से जुड़ा था। ध्वनि परिदृश्य, पहाड़ों का संगीत, संतूर की 100 लड़ियां, राग बिलास खानी तोड़ी और एक सुबह का राग गुजरी तोड़ी, इन रचनाओं में पहाड़, प्रातःकाल और मौन स्वयं बोलने लगते हैं।
1: 1996 में हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आया घाटी की यादें और द वैली रिकॉल्स उस जुगलबंदी की परिपक्व स्मृति थे जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। 1999 की मैस्ट्रो की पसंद श्रृंखला 2, संप्रदाय और रसधारा में उनकी साधना और अधिक संतुलित, अधिक गहन दिखाई देती है। 2001 में बॉम्बे में शनिवार की रात जैसे प्रयोगात्मक एल्बम में जॉन मैकगिलन और जाकिर हुसैन, तो 2002 में आनंद ब्लिस और समय का प्रवाह ने संगीत को ध्यान और उपचार से जोड़ दिया।
2: 2003 से 2007 तक के एल्बम रेकी के लिए जीवंत संगीत, सिंपैटिको आंतरिक पथ और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आवश्यक संध्या मंत्र इस बात के साक्ष्य हैं कि शिव कुमार शर्मा के लिए संगीत जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना ही बना रहा। उनके एल्बम किसी कालखंड की सूची नहीं बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर रचना सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वयं शिव कुमार शर्मा का संतूर।
1: श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा को देश विदेश में उनके अद्वितीय संगीत योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता मिलना इस बात का प्रमाण था कि उनका संतूर केवल भारत ही नहीं विश्व की आत्मा को भी छू रहा था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और फिर पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी साधना, नवाचार और परंपरा के प्रति समर्पण की औपचारिक स्वीकृति थे। फिल्म संगीत में भी उनकी जोड़ी शिवहरी ने इतिहास रचा। कॉल ऑफ द वैली और सिलसिला के संगीत को प्लैटिनम डिस्क, फासले को गोल्ड डिस्क, चांदनी को प्लैटिनम डिस्क मिली। लम्हे और डर के लिए उत्कृष्ट संगीत और रिकॉर्ड बिक्री हेतु उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। 1967 में आया मैस्ट्रोस चॉइस सीरीज 1 उनके शास्त्रीय वैभव का सशक्त प्रमाण बना, जहां संतूर, समय और साधना एक ही स्वर में गूंजते हैं।
2: शिव कुमार शर्मा ने संतूर को केवल तकनीकी रूप से नहीं भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नया आयाम दिया। 1960 के दशक से वे संतूर की ध्वनि को ध्यान और अंतर्मुखता से जोड़ने लगे थे। उनकी वादन शैली में एक स्थिरता, एक ठहराव था जिसमें सुनने वाला स्वयं को भूलकर स्वयं के भीतर उतर जाता था। यही कारण था कि उनके संतूर को लोग केवल सुनते नहीं थे, अनुभव करते थे। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि उनका संगीत मन को शांत करता। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उनके शिष्यों और श्रोताओं का विस्तार था। विश्व के विभिन्न देशों से युवा कलाकार उनके पास संतूर सीखने आते थे, केवल तकनीक के लिए नहीं बल्कि उस दृष्टि के लिए जिससे संगीत साधना बन जाता है। उनके लिए संतूर 100 तारों का वाद्य नहीं, 100 भावनाओं की साधना था।
1: श्रोताओं, कश्मीर की जिन वादियों में कभी संतूर की पहली झनकार गूंजी थी, वहीं से निकली वो आत्मा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे शाम की हवा खुद को अंधेरे में सौंप देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दुनिया कोविड के कठिन समय से गुजर रही थी, पंडित शिव कुमार शर्मा भी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण वे डायलिसिस पर थे, पर मन अब भी संगीत से बंधा हुआ था। शरीर थक रहा था पर साधना नहीं। 10 मई 2022 की सुबह एक हृदयाघात के साथ उनकी जीवनदान शांत हो गई। चौरासी वर्ष की आयु में मुंबई के उसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कभी सपनों की गठरी लेकर भी आए थे। अंतिम दिनों में पत्नी मनोरमा और पुत्र राहुल उनके साथ छाया की तरह रहे। संतूर अब भी परिवार की धड़कन था।
2: उनके जाने की खबर के साथ ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अमजद अली खान ने इसे एक युग का अंत कहा। कलाकारों, श्रोताओं और साधकों को लगा जैसे किसी ने भारतीय संगीत की आत्मा का एक कोना मौन कर दिया। पूर्ण राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, गरिमा, सादगी और कृतज्ञता के बीच।
1: शिव कुमार शर्मा के हाथों में संतूर केवल वाद्य नहीं रहा, वो स्मृति बना, साधना बना और समय की ध्वनि बन गया। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ मिलकर उसने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा का नया दर्पण दिया। वो केवल एक महान कलाकार नहीं थे, वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की वो तान थे जो धीमे धीमे बजती है लेकिन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। सच्चे अर्थों में वे भारत की संगीत आत्मा की एक अनमोल धरोहर थे।
2: पंडित शिव कुमार शर्मा का जीवन सपना संतूर को लोक की सीमाओं से उठाकर शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पूर्ण हुआ। उन्होंने कभी ऊंचाइयों की घोषणा नहीं की, केवल साधना की, और वही साधना आज भी जीवित है। संतूर की हर तार में, हर झनकार में उनका समय, उनका तप और उनका मौन बोलता है।
1: और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ऐसा लगता है कश्मीर की वादियां अब भी बहुत धीमे स्वर में कह रही हैं, ये राग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो अनंत में प्रवेश है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्ला कल्लोलिनी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा,
2: और मैं वर्षा सिंह।
1: मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन था दीपक नेमा का। अपने कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में फिर किसी ऐसे ही कला साधक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
1: सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए 90।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज की कड़ी संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को समर्पित थी। इस कार्यक्रम को स्वर दिया संदीप शर्मा और वर्षा सिंह ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कानन जी की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। आज हम उनके उन कथनों को याद करेंगे जिनमें उन्होंने हमें बताया था कि भारत की जनता को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसी हो जो हमें पूर्णतः शिक्षित बनाए। वो कहते थे,
1: अच्छी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है। भारत का भविष्य भी काफी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान पीढ़ी इस समस्या का हल किस प्रकार प्रस्तुत करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाश्चात्य भावपत्र और पूर्णतः राष्ट्र विरोधी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि से एकदम विसंगत है। ये तो हमें उन अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिली है जिन्होंने हम में कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को दृढ़ता व संरक्षता प्रदान कर सकें।
2: उन्हें समय के परिवर्तन का पूरा ज्ञान था। उन्होंने देश विदेशों में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझा था कि हम भारतीयों को लीक से हटकर कुछ और तरह की शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम प्रचलित परिपाटी से अलग कुछ आत्मसात कर सही मायने में मनुष्य बन सकें। उन्होंने कहा था,
1: समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरू और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे।
0: स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्जन करते हुए उन्होंने गहराई से इन बातों पर विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थी। अपनी मातृभूमि को अन्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा से मंडित देखना उनकी सर्वाधिक इच्छा थी। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर अध्यात्म से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
2: भारतीय परंपरा के अनुसार जब जब संस्कृति और सभ्यताएं अधिपतित हुई हैं, जब जब मानवीय मेधा भ्रमित हुई है, तब तब जीवन की नई दिशाओं की ओर संकेत करने तथा मानव हृदय में शक्ति और विश्वास की लहर भरने के लिए महान मनीषियों का अवतरण हुआ है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक मनीषी थे। उन्होंने स्पष्ट और कभी कभी लौकिक भाषा में पुरातन भारत से भी अधिक और महत्तर अपने भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अतः आज जब हमारा मन शिक्षा की समस्या से उद्वेलित है, ये उचित ही होगा कि हम स्वामी जी के शिक्षा विषयक विचारों से परिचित हों, क्योंकि हमारी पीढ़ी की इस ज्वलंत समस्या पर स्वामी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन हमारे बालकों की शिक्षा प्रणाली के नियोजन की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी से कभी पूछा गया था, आज की विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? उन्होंने उत्तर दिया था,
1: क्यों, वो तो आदि से अंत तक दोषों से भरी हुई है। ये बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है? यदि इतना ही होता तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां, देखो ना लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है, एक क्षेपक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोक गीतों से अधिक महत्व नहीं रखते।
2: एक अन्य अवसर पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की थी जिसे वो बताया गया था कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है, और उसने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लिए पीट पीट कर अधमरा कर डाला था।
0: यद्यपि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा बहुतों को मालूम है, फिर भी प्रस्तुत संदर्भ में उसकी पुनरावृत्ति उचित है। स्वामी जी ने कहा है,
1: शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विचार एक विशुद्ध वेदांतिक धारणा है। इसकी उपलब्धि मानव जीवन के स्तर और गौरव को अत्यधिक परिवर्धित कर देती है। इसकी स्वीकृति निष्ठा और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, और यह आत्मविश्वास पौरुष एवं चरित्र का सार है।
2: यद्यपि यह परिभाषा एक सर्वकालिक सत्य है और सभी लोगों के हित के लिए है, फिर भी आज के इस अलगाववादी युग में, संकीर्ण भावनाओं के युग में, ये परिभाषा विशेष महत्व रखती है। स्वामी जी पुनः कहते हैं,
1: शिक्षा है क्या? क्या वो किताबी ज्ञान है? नहीं। तो क्या वो बहुमुखी ज्ञान है? वो भी नहीं। शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति को और उसके प्रवेग को संतुलित एवं लाभप्रद बनाया जाता है।
0: स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सूक्ष्मताओं पर भी पूरी स्पष्टता से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। मोटे तौर पर वे पाश्चात्य विज्ञान को वेदांत के साथ समायोजित करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार दोनों के मिलन से ही विश्व में समृद्धि और शांति का युग आएगा। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जीवन के कठिन और अरुचिकर कार्यों को सहज बना दिया, पर यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने जिस अवकाश की उपलब्धि की है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वैदेशिक नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से ज्ञान की उन विविध शाखाओं का अध्ययन करें जो हमारी अपनी है। साथ ही हम अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। हमें तकनीकी शिक्षा तथा उन सब बातों की आवश्यकता है जिनसे हम उद्योगों का विकास कर सके, और नौकरी ढूंढने के बदले अपने पैरों पर खड़े रहकर इन उद्योगों के द्वारा जीविका के लिए यथेष्ट उपार्जन कर सके तथा दुर्दिनों के लिए कुछ बचा भी सके।
2: वर्तमान समय में भाषा की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। नई व्यवस्था में अंग्रेजी, अन्य प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत का क्या स्थान होगा? स्वामी जी के उपयुक्त उद्धरण से तथा उनके अन्य लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को महत्व प्रदान किया था।
0: शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार करते हुए निवेदिता ने अपने नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है,
3: यदि सभी मनुष्य एक ही भाषा में वार्तालाप करें, एक ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना और समान लक्ष्यों की अनुभूति करना सीखें, यदि सभी को समान शक्तियों के प्रति समान रूप से प्रतिक्रियाएं प्रकट करना सिखाया जाए और उन्हें इसके लिए सक्षम भी बनाया जाए, तभी तो हमारी एकता स्वयंभू बनकर प्रकट होगी और अटूट बनेगी।
0: प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत के विषय में स्वामी जी ने कई अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि वे प्रादेशिक भाषाओं के विकास पक्ष को महत्वपूर्ण समझते थे, फिर भी वे दृढ़ता पूर्वक संस्कृत की महत्ता को अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा अधिक मानते थे। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भाषा जीवन के अलग अलग कार्यों की पूर्ति करती हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा की देन बहुत अधिक है। स्वामी जी कहते थे,
1: संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।
2: रामानुज, कबीर और चैतन्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यद्यपि इन महापुरुषों ने निम्न वर्ग को ऊपर उठाया, किंतु उन्होंने संस्कृत विद्या का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा,
1: बुद्ध तक ने एक गलत कदम ये ले लिया कि उन्होंने जनता को संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित नहीं किया। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं तो वे केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, और केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें संस्कृति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज भले ही विकसित और उन्नत हो जाए, पर जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं किया जाता, तब तक समाज की विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता।
0: वे भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सर्वोपरि स्थान देते थे। उनका कहना था,
1: संस्कृत पुरातन विद्या का कोश है। वो मानव जाति के सबसे उदात्त विचारों का विग्रह है। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित नहीं है, वे इसकी सशक्तता और गंभीरता का तनिक भी परिचय नहीं पा सकते। ये हमें केवल हमारी प्राचीन महानता का ही ज्ञान नहीं करा सकती, अपितु हमें वो श्रद्धा और आत्मविश्वास भर सकती है जो आज विदेशी प्रशासन और अराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कारण जड़ से हिल गए हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे के पर्याय हैं।

0: विवेकानंद अनेक कलाओं से परिचित थे। गीत संगीत वादन तो वे जानते ही थे, साथ ही लाठी भांजना, कुश्ती और पाक कला में भी वे पारंगत थे। वे इस विषय पर भी हमें अपना सुझाव देना नहीं भूले।
1: एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशियावासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। कला हमारे धर्म का ही एक अंग है।
2: उन्होंने कलात्मक पात्रों, सुंदर साड़ियों तथा कलात्मक धोतियों की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दीन हीन कृषक की मिट्टी से बनी झोपड़ियों तथा अनाज रखने की कोठियों तक में कला का दर्शन कराया और बताया कि हमारी स्थापत्य कला किसी अनजान कारीगर के सपनों की प्रस्तरमयी विग्रह है। जैसे पश्चिम का आदर्श उपयोगिता है, वैसे ही भारत का आदर्श कला है। स्वामी जी का विचार था कि जापान में पश्चिमी उपयोगिता और भारतीय कला का सुंदर समन्वय घटित हुआ है, जबकि भारत मूर्खतापूर्वक पाश्चात्य उपयोगितावाद का अंधा अनुकरण कर रहा है। वे चाहते थे कि भारत में भी दोनों का सुंदर समन्वय हो।
0: स्वामी जी कहा करते थे कि व्यक्ति के समान राष्ट्र की भी अपनी एक विशिष्ट प्रतिमा होती है और उसके विकास का एक विशेष मार्ग होता है। हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति स्वामी जी के प्रेम का उल्लेख करती हुई भगिनी निवेदिता अपनी मास्टर एज आई सॉ हिम नामक ग्रंथ में लिखती हैं,
3: स्वामी जी के लिए प्रत्येक नवीन वस्तु प्राचीन निवेदन के भाव से शुद्ध की हुई थी। माँ सरस्वती का चित्र आंकना स्वामी जी के मतानुसार उसकी पूजा करना था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना मानो घुटने टेक कर रोग और मलिनता के पिशाचों के नाश के लिए प्रार्थना करना था। धार्मिक एकाग्रता की शक्ति के लिए मानवीय मेधा को उसकी चरम पूर्णता के स्तर पर पहुंचा देना उनके विचार से एक आवश्यक तत्व था। वे अध्ययन को तपस्या मानते थे और हिंदुओं की ध्यानोन्मुखता को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धियों में सहायक समझते थे। इस प्रकार शिक्षा स्वयं में की गई साधना और धर्म का एक अंग है।
2: स्वामी जी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर प्रकार के बल को जरूरी मानते थे, अतः वे शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देना भी नहीं भूले। अपने शिष्य के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था,
1: तुम्हें शरीर को खूब शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए और दूसरों को भी इसे सिखाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अब भी डंबल्स के साथ व्यायाम करता हूं? शरीर और मन दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। यदि लोगों को शारीरिक बल बढ़ाने की जरूरत समझा दी जाए तो वे स्वमेव उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे। इस आवश्यकता के बोध हेतु ही आज शिक्षा का प्रयोजन है।
0: स्वामी जी अपने देशवासियों को सशक्त और सबल स्त्री पुरुषों के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने अनेक प्रसंगों में अपनी ये आंतरिक इच्छा व्यक्त की है।
1: मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। मेरी तुमसे सही सलाह है, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे।
2: स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने का बल प्रदान करती है।
0: हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी हटाने के प्रयास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी कोशिशें, ये सभी स्वामी जी के विचारों के अनुकूल हैं। इन्हीं कारणों से स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि भारतवासी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, पर वे ये नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक लाभ के लिए अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता से वंचित हो जाएं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था,
1: तुम में एक सुई बनाने की क्षमता तक तो है नहीं, और तुम अंग्रेजी की आलोचना करने की धृष्टता करते हो। मूर्ख, जाकर उनके पैरों के पास बैठो और उनसे उन कलाओं, उद्योगों और व्यवहारिकता को सीखो जो जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक हैं।
2: एक अन्य प्रसंग के लिए आवश्यक है,
1: आज की उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। अधिक अच्छा तो होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में मन लगा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
2: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी आधुनिक जीवनधारा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के अति संरक्षणशील और कट्टर विचार पोषकों की भांति उसका अकारण विरोध नहीं करते। हाँ, पश्चिम के औद्योगिकरण के दोषों को वेदांत के आलोक द्वारा घटाया जा सकता है, पर समय के चक्र को लौटाना संभव नहीं है। और ना ये उचित है कि आज जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इतने वेग से प्रगति हो रही हो, हम बैलगाड़ी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के युग में वापस चले जाएं। स्वामी जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है,
1: जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सुप्त केसरी तुल्य साहस का विकास नहीं करती, वो भी क्या शिक्षा कहलाने योग्य है?
0: शिक्षा प्रणाली के विषय में स्वामी जी का ये दृढ़ मत था कि प्राचीन गुरु गृहवास की प्रथा को आधुनिक संदर्भ में संशोधित परिवर्तित करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए लागू करना चाहिए। उनका कथन था,
1: छात्र को बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति से संसर्ग में रहना चाहिए जिसका चरित्र ज्वलंत अग्नि के समान पवित्र हो।
0: उनका विचार था,
1: एकमात्र जीवन ही सबसे उत्तम शिक्षक है, क्योंकि पवित्र जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण ही मनुष्य में निहित प्रसुप्त दैवत्य का विकास करता है।
0: उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक प्रतिपादित किया कि
1: यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी और निष्प्रह व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता, तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा।
2: वे चाहते थे कि प्राचीन काल के समान ही सभी विद्यार्थी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मनसा, वाचा, कर्मणा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है और सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि प्रदान करता है। उसी से अन्य शक्तियां विकसित होती हैं। स्वामी जी श्रद्धा को मूलभूत धर्म मानते थे। श्रद्धा का निर्माण निष्ठा, विनम्रता, पूज्य भाव और संदेह में अडिग रहने वाला दृढ़ विश्वास, इन सब गुणों के एकत्र मेल से ही होता है।
0: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी आधुनिक दिखावटी एवं उबाऊ शिक्षा की कामना नहीं करते थे, अपितु उन्हें क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा की अपेक्षा थी। जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवीन प्राण शक्ति का संचार नहीं

0: पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित करता और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संग्रह कर लेता।
1: ये कहना अप्रासंगिक न होगा कि आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रणाली में शिशु के व्यक्तित्व के प्रति जो सम्मान का तथ्य पाया जाता है वो अभी आरंभ हुआ है, जबकि भारतीय वेदांत कल्पनातीत काल से इस तथ्य से परिचित था। उस समय शिक्षा यथासंभव व्यक्ति परक थी।
0: सारा ज्ञान मनुष्य में ही निहित है, यही क्यों एक बालक में भी समग्र ज्ञान प्रच्छत्र रूप से विद्यमान है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो उस प्रच्छत्र ज्ञान की अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर कर दे और अपने विद्यार्थियों को ये सिखा दे कि अपने हाथ पैर नेत्र और कानों का समुचित उपयोग करने के लिए वे किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम ले।
2: स्वामी जी ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते थे। वे कहते थे,
0: भारतीय समाज में बौद्धिक वर्ग को एक सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त है, पर प्रत्येक सुविधा के साथ उत्तरदायित्व का भाव भी भरा हुआ है। इस संक्रांति और उतार चढ़ाव की अवधि में ही भविष्य अपना रूप निर्मित करेगा, अतः इस देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह आत्मविश्वास के लिए ज्ञान का अर्जन करे और उसका दान उन लोगों को भी दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
1: कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हम ज्ञान से भी मूल्यवान और किस वस्तु का दान कर सकते हैं? क्रिया मूलक और सृजनशील ज्ञान के दान से दाता और पात्र दोनों का ही उत्थान होता है। इसी दान के माध्यम से भारतवर्ष उस गौरवमय युग को प्राप्त कर सकता है जिसके अवतरण की घोषणा स्वामी विवेकानंद कर गए हैं।
2: स्वामी जी समाज में एक सर्वमान्य नेता की जरूरत को महसूस करते थे जो अनपढ़ जनता को राह दिखाए, जिन्हें लोग बिना किसी संदेह और प्रश्न के मान लें। प्रजातांत्रिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देशवासी सुशिक्षित हों, विवेकवान हों और अच्छे बुरे का चयन खुद कर सकें। तब तक उन्हें नेतृत्व देने वाले किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। पिछड़ी हुई जनता के लिए स्वामी जी अधिनायक तंत्र के महत्व को पूरी तरह समझते थे। वे कहते हैं,
0: जब शिक्षा के प्रसार के साथ हमारी देश की जनता अधिक सहानुभूति और उदार बनेगी, जब वो अपने विचारों को संप्रदाय या पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालना सीखेगी, तब कहीं संघबद्ध प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसलिए अभी समाज के लिए एक अधिनायक का होना आवश्यक है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, कालांतर में हम साधारण मतदान के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे।
1: स्वामी जी भावी भारत के बारे में पूर्णतः आशान्वित थे। उनका मानना था कि भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा कई गुना महिमा मंडित होने वाला है। वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
0: भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई हैं। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसे।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। सबसे पहले सुनेंगे वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी सतीश चंद्र मुखर्जी को समर्पित होगा। शाम 6:30 पर आमने सामने कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे रंगकर्मी अभय सिन्हा से। इसके साथ ही नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश भी सुनवाएंगे। शाम 7 बजे वागर्थ कार्यक्रम में रश्मि शर्मा के कहानी पाठ का आनंद लें। शाम 7:30 पर पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन आप सुन सकते हैं। रात्रि के 8 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा और 8:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। आज की कड़ी क्रांतिकारी खुदीराम बोस के जीवन पर केंद्रित है। रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी में आज हम पंडित शिव कुमार शर्मा के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे और रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
4: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप आनंद लेते हैं संगीत का।

आज इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं गया प्रसाद प्रजापति और उनके साथी।

क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा और विघ्नों को हरण करने वाले भगवान गजानंद के साथ साथ माता

तीन सखियां बड़े प्रेम से पनघट पर आपस में बात कर रही हैं। बोली सखी बताओ आपके बे कैसे हैं? एक दूसरे को बता रही हैं कि मेरो ढोलक बजाए, दूसरी बोली

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं फूल सिंह मांडरे और उनके साथी।
3: बुंदेली संस्कार गीत तीज त्योहार पे गाए जाने वाले गीत पेश कर रहे हैं।

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे बुंदेली गायन का। कलाकार थे फूल सिंह मांडरे और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे प्रस्तुत करेंगे शिव पालक तिवारी और विपिन तिवारी। उसके बाद सुगम संगीत सुनिएगा, जिसके अंतर्गत श्री रंग संगीत के कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन शिव पालक तिवारी और विपिन तिवारी का।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
1: और मैं हूं वर्षा सिंह।
0: श्रोताओं, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकार समय से आगे चलकर भी दिलों में ठहर जाता है, इसी तरह का कार्यक्रम है कला कल्लोलिनी। आज कला कल्लोलिनी में हम बात करेंगे उस संगीत साधक की जिसके हाथों में समय की धड़कन थिरकती थी, जिसके संतूर से पर्वत बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और आकाश राग में ढल जाता था। आज का विषय है संतूर सम्राट शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोक से उठाकर शास्त्रीय आकाश तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार।
1: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला को नहीं चुनते, कला उन्हें चुनती है। उनका जीवन किसी अभ्यास की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होता है। वे मंच पर नहीं चढ़ते, वे मंच बन जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ऐसे ही कलाकार थे, जिनके लिए संगीत न पेशा था न प्रदर्शन, बल्कि एक आजीवन तपस्या।
0: भारत के मानचित्र में एक भूखंड ऐसा भी है जहां धरती केवल मिट्टी का विस्तार नहीं होती, वहां वो साधना का स्वरूप बन जाती है। जहां पर्वत मौन होकर भी उपदेश देते हैं और नदियां बहते बहते राग रचती हैं। जहां सुबह की हवा सिर्फ शीतल नहीं होती, वो अपने साथ स्वरों की स्मृति लाती है। और जहां संध्या की निस्तब्धता में ताल अदृश्य होकर भी स्पष्ट सुनाई देती है, वो धरती है जम्मू कश्मीर।
1: साथियों, 10 जनवरी 1938, जम्मू शहर, वो नगर जो केवल भौगोलिक बिंदु नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है, जहां मैदान पहाड़ों से संवाद करते हैं। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके लिए समय ने पहले ही अपनी भूमिका तय कर दी थी। एक बालक जो आगे चलकर स्वरों का यात्री बना और जिसकी साधना ने एक लोकवाद्य को शास्त्र का सिंहासन दिलाया। उस बालक का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा।
0: वो जन्म से ही किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थे। भले ही उनका जन्म जम्मू की धरती पर हुआ, पर उनकी चेतना कश्मीर की शांत घाटियों में अनविरत विचरण करती रही। उनके भीतर हिमालय का धैर्य था, झेलम की निरंतरता थी और घाटियों का वो मौन था जो बोलने से पहले अनुभव करता है। यही कारण था कि जब संतूर के 100 तार उनकी उंगलियों में स्पंदित हुए तो वह केवल संगीत नहीं था, कश्मीर की आत्मा थी जो स्वर बनकर विश्व से संवाद कर रही थी।
1: जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही कथा कहने लगे, तब समझिए संगीत बोल रहा है। ये कथा ना किसी राजा की है, ना किसी युद्ध की, ये कथा है एक साधक की जिसने 100 तारों में अपनी आत्मा बांध दी। ये कथा है उस वाद्य की जिसे कभी लोक सीमाओं में बांध दिया गया था और एक मनुष्य ने उसे शास्त्र का आकाश दे दिया। उस साधक का नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा।
0: श्रोताओं, उनके पिता थे पंडित उमा दत्त शर्मा। बनारस की पवित्र संगीत धारा में उन्होंने अपने गुरु पंडित रामदास जी से शिक्षा पाई थी। ध्रुपद और ख्याल उनकी साधना के 2 स्तंभ थे और तबला तथा पखावज उनके हाथों में केवल वाद्य नहीं बल्कि समय को नापने वाले साधन बन जाते थे। उनकी गायकी में बनारस घराने की गंभीरता थी, वो ठहराव, वो गहराई जो स्वर को सजावट नहीं अर्थ देती है। ऐसा कहा जाता है जब वे रियाज में बैठते तो स्वर पहले कमरे में उतरते और फिर धीरे धीरे मन में। उस घर का वातावरण साधारण नहीं था। वहां सुबह सूरज की पहली किरण से पहले रियाज शुरू हो जाता और रात तब समाप्त होती जब स्वर थक कर मौन में विश्राम करते। वो घर सोता नहीं था, वो सुनता था। दीवारें ताल पहचानती थीं और आंगन रागों का साक्षी था। उसी वातावरण में शिव कुमार शर्मा बड़े हुए जहां संगीत सिखाया नहीं जाता था, जिया जाता था।
1: जी हाँ, माता का हृदय भी संगीत से भरा हुआ था, कोमल, संवेदनशील और स्वप्नदर्शी। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं और उनके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ आकांक्षा पलती रहती थी। उनकी आंखों में एक सपना था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई एक दिन संतूर जैसे लोकवाद्य पर भी उसी गरिमा के साथ गूंजे। शायद वही सपना था जो आगे चलकर शिव कुमार शर्मा की साधना में बदल गया। पिता ने अनुशासन दिया, गुरु ने दिशा दी और माँ ने उस यात्रा को अर्थ, और यही तीनों मिलकर एक ऐसे संगीतज्ञ को गढ़ रहे थे जिसकी कथा आगे चलकर संतूर की तरंग में लिखी जानी थी।
0: शिव कुमार शर्मा ने बचपन में कभी संगीत को अलग विषय की तरह नहीं देखा, वो तो उनके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव कुमार सुरों से खेलते। जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनते, वे आलाप सुनते। उनके लिए संगीत सीखा नहीं जाता था, वो देखा, सुना और जिया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया। कोई दबाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उमादत्त शर्मा जानते थे कि संगीत को थोपने से नहीं, बोने से फल मिलता है।
1: स्कूल की पढ़ाई भी चली, किताबें भी आई, लेकिन शिव कुमार का मन कक्षा की 4 दीवारों में नहीं टिक पाता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें समझ आते थे, पर हवा में तैरते हुए सुर उन्हें ज्यादा सच लगते थे। शिक्षक पढ़ाते और खिड़की से आती हवा किसी अनजाने राग का संकेत दे जाती। पढ़ाई जरूरी थी, पर आत्मा का रास्ता कहीं और था, और आत्मा का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं गुजरता।
0: जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र तक शिव कुमार जम्मू के स्थानीय रेडियो स्टेशन पर गायन और तबला प्रस्तुत करने लगे थे। रेडियो की तरंगों पर उनका स्वर जाना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा छोटी नहीं होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशोर अवस्था में पिता ने उन्हें संतूर से परिचित कराया, वही संतूर जो कश्मीर की सूफी परंपरा में गूंजता तो था, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर अभी तक अजनबी था। लगभग 100 तारों वाला ये वाद्य सुंदर तो था, लेकिन जिद्दी भी था। स्थिर स्वर होने के कारण लोग मानते थे कि ये रागों की बारीकियों के लिए उपयुक्त नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खुद पंडित शिव कुमार शर्मा का कहना है, असल में संतूर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसे संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 100 तार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया।
1: पिता की इच्छा और उनकी कामना शिव कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार ने संतूर को अपनी साधना का केंद्र बना लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उंगलियां दुखती थीं, तार उलझते थे और हर राग एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार निराशा हुई, लेकिन पिता का विश्वास, माँ का सपना और भीतर की पुकार, तीनों मिलकर उन्हें हर बार रियाज की चौकी पर वापस बैठा देते।
0: शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया और अपने चिंतन तथा प्रयोगों से इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की थी, जिससे शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णता सक्षम वाद्य बन गया। शिव कुमार शर्मा जी को ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि की शिक्षा भी मिली थी। श्रोताओं, बचपन की गलियों से निकलकर शिव कुमार अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। माता पिता अब केवल जीवन देने वाले नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे, जिनकी आंखों में आशीर्वाद था और जिनके मौन में प्रार्थना बसती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। स्वरों की उड़ान किसी और, बड़े आकाश की मांग करने लगी थी। भीतर कहीं एहसास गहराने लगा था कि अब केवल सीखा हुआ दोहराने का समय नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने का समय आ गया है। इसी परिवर्तन की पुकार में नई राह खोजने की आस लेकर शिव कुमार ने अपने संतूर को साक्षी बनाया और बंबई की ओर कदम बढ़ा दिए। ये केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, ये समय के साथ चलने का साहस था, जहां भविष्य इंतजार में नहीं परीक्षा में मिला करता है और जहां हर कलाकार को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है।
1: 1955 में जब शिव कुमार शर्मा पहली बार मुंबई पहुंचे तो ये यात्रा उतनी उजली नहीं थी जितनी बाद में इतिहास में दिखाई देती है। उस समय बंबई केवल अवसरों का शहर नहीं था, वो नए कलाकारों के लिए एक कठोर कसौटी थी, जहां हर दिन कोई ना कोई सपना टूटता था और कोई जिद जन्म लेती थी। शिव कुमार अपने संतूर के साथ इस शहर में आए, लेकिन शहर ने उन्हें तुरंत अपनाया नहीं, कुछ मंच मिले, कुछ लोगों ने सुना, पर स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आशा लेकर वो आए थे। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन पहचान नहीं थी। धीरे धीरे निराशा ने भी दस्तक दी और कुछ समय बाद मन और हालात दोनों थक गए। वे लौट आए जम्मू, खाली हाथ नहीं, लेकिन भारी मन के साथ।
0: घर लौटने पर पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने बेटे के चेहरे पर वो चुप्पी देखी जो हार की नहीं उलझन की होती है। पिता ने व्यावहारिक स्वर में कहा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, रेडियो में नौकरी कर लो, संगीत भी रहेगा और जीवन भी संभल जाएगा। ये सलाह अनुभव से उपजी थी, डर से नहीं, लेकिन शिव कुमार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा। संगीत अगर करूंगा तो अपने दम पर। मैं फिर बंबई जाऊंगा और मेहनत करूंगा। उस क्षण पिता समझ गए कि यह जिद नहीं है, स्वभाव है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, केवल आशीर्वाद दिया जाता है।
1: दूसरी बार बंबई जाना पहले से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन भीतर कहीं अधिक स्पष्टता थी। अब वे कलाकार नहीं थे, साधक थे। इस दूसरी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से, भारतीय सिनेमा के उस स्तंभ से जिसकी दृष्टि संगीत को केवल सजावट नहीं आत्मा मानती थी। वी शांताराम ने शिव कुमार के संतूर में कुछ अलग सुना। उन्होंने उन्हें अपनी प्रसिद्ध झनक झनक बाजे पायलिया फिल्म से जुड़े संगीतकार वसंत देसाई के पास भेजा। वसंत देसाई ने उनसे कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक छोटा सा संगीत टुकड़ा बना कर दिखाइए।
0: और यही वो छोटा सा अवसर, वही क्षण शिव कुमार शर्मा के बंबई के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बन गया। संतूर, जो अब तक शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह तलाश रहा था, पहली बार सिनेमा की दुनिया में धीरे से प्रवेश कर रहा था। ये शुरुआत थी, शोर से नहीं, सौम्यता से। यहीं से वो यात्रा चली जो आगे चलकर शिवहरि जैसी ऐतिहासिक जुगलबंदी तक पहुंची और सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के अमर संगीत में ढल गई।
1: संघर्ष की राग रात्रि बीत चुकी थी। साधना ने जब स्थिर सुर को थामा, तब जीवन के तानपुरे पर मंगल बेला की पहली तान फूटी। 1966 में शिव कुमार शर्मा के जीवन में स्थिरता का एक मधुर अध्याय जुड़ा। उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक कलाकार और उसकी साधना के बीच बनी गहरी समझ का संबंध था। कलाकार का पहला प्रेम उसका संगीत होता है, और मनोरमा जी ने इस सत्य को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाया जहां समय रियाज का होता है और प्रतीक्षा प्रेम की भाषा बोलती है। इस दाम्पत्य में शब्द कम थे, पर भरोसा गहरा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। पुत्र राहुल और रोहित का आगमन हुआ। उनके पुत्रों रोहित और राहुल ने पिता की साधना को बहुत पास से देखा, पर मंच और संतूर की पुकार राहुल शर्मा के भीतर सबसे गहरी उतर गई। पिता ने बेटे पर संगीत थोपा नहीं, बस उसे सुरों के पास बैठने दिया, और वहीं बैठना, वही सुनना एक दिन संतूर बन गया। राहुल में शिव कुमार शर्मा ने उसी संगीत लौ की झलक देखी जो कभी उनके भीतर जली थी।
0: आगे चलकर शिव कुमार शर्मा ने अपने पुत्र राहुल शर्मा को अपना शिष्य बनाया और संतूर वादन में पारंगत किया, और संतूर की साधना पिता से पुत्र तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। जिस दिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने पहली बार राहुल के साथ मंच साझा किया, वो क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक लम्हा था। श्रोताओं को शायद एक जुगलबंदी सुनाई दी, पर पिता के हृदय में वो पल था जब गुरु और पिता दोनों एक साथ खड़े थे, पर आंखें नम थीं।
1: जब समय आगे बढ़ चुका था, संतूर को पहचान मिल चुकी थी, तब जीवन ने पंडित शिव कुमार शर्मा को वो सुख दिया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, अपने ही सुरों को अगली पीढ़ी में जीवित देखना। पिता और पुत्र की ये जोड़ी वर्ष 1996 से साथ साथ संतूर वादन में जुगलबंदी करते आ रहे हैं। रोहित मंच पर नियमित रूप से संतूर वादन में नहीं आए, पर परिवार की नींव सहारा और मौन शक्ति बनकर साथ रहे।
0: श्रोताओं, संगीत की दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर परिवार के लिए समय बहुत कम। यात्राएं, रियाज, मंच, इन सब के बीच परिवार के लिए कुछ पल चुराने पड़ते थे। फिर भी जब वे घर में होते तो पूरी तरह घर के होते। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बातें, पत्नी का मौन सहयोग, यही उनका विश्राम था। उनका परिवार उनके संगीत की वो तान था जो मंच पर नहीं बजती पर भीतर गूंजती रहती है।
1: दोस्तों, अब हम उनके बंबई यानी कि फिल्मी दुनिया के सफर पर वापस लौटते हैं। आइए चलते हैं वापस बंबई। वी शांताराम जी के साथ काम करने के बाद असल में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत सफर आगे बढ़ता है। शिव और हरि मिलते हैं, इतिहास रचते हैं। मुंबई में जीवन कभी सरल नहीं रहा। ये शहर सपनों को बुलाता भी है और उन्हें कठोरता से परखता भी है। इसी भीड़ में, इसी शोर के बीच एक दिन शिव कुमार शर्मा की भेंट हुई पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दो साधकों का मिलन था। शब्द कम थे, मौन अधिक। संतूर और बांसुरी जब पहली बार आमने सामने आए तो किसी ने मंच के किनारे फुसफुसा कर कहा, ये संगीत नहीं संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं सांसें बोलती हैं। यहीं से जन्म हुआ 1967 में उस ऐतिहासिक यात्रा का जिसे दुनिया ने कॉल ऑफ द वैली के नाम से जाना।
0: शिव हरि की जोड़ी और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की संगत से एल्बम कॉल ऑफ वैली बनाया जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। कश्मीर की घाटियों की स्मृति, पहाड़ों की नीरवता और साधना की सुगंध सब एक ही एल्बम में उतर आए। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मील का पत्थर बन गया।
1: समय के साथ ये आत्मिक जुगलबंदी मंचों से निकलकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंची। जब यश चोपड़ा जैसे संवेदनशील निर्देशक ने शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया के संगीत पर भरोसा किया, तब फिल्म संगीत की भाषा ही बदलने लगी। सिलसिला में देखा एक ख्वाब, ये कहां आ गए हम, चांदनी में चांदनी, ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की, लम्हे में मोहे छेड़ो ना, यादें याद आती हैं। इन गीतों में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो स्वयं कथा बन गया। प्रेम, विरह, स्मृति और मौन सब कुछ सुरों में बहने लगा। 1980 और 1990 का दशक आते आते शिव हरि केवल संगीतकारों की जोड़ी नहीं रहे, वे एक एहसास बन चुके थे जिसे सुना नहीं जिया जाता था।
0: जी हाँ, कॉल ऑफ द वैली और इसके बाद फिल्मी सफर पर तो हमने खूब बातें की, लेकिन शिव कुमार शर्मा की संगीत यात्रा केवल मंचों और सम्मानों तक सीमित नहीं रही। उसका सबसे स्थायी रूप उनके एल्बम्स में दर्ज हुआ, जहां समय थमकर सुरों में खो जाता है। हर एल्बम उनके जीवन की किसी न किसी साधनात्मक अवस्था का दस्तावेज है, उस आत्मविश्वास का प्रमाण जिसमें संतूर अकेले मंच पर खड़ा हो सका।
1: आगे के वर्षों में उनके एल्बम और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। 1982 में जाकिर हुसैन के साथ वैन टाइम टू डिस्टिल जैसे प्रयोगों ने ताल और सुर के बीच गहरे संवाद को जन्म दिया। 1987 में राग मधुवंती और राग मिश्र तिलंग जाकिर हुसैन जी के साथ तथा 1988 में सम्मोहक सिंतूर तथा 1988 में सम्मोहक संतूर, इन कृतियों में संतूर केवल वाद्य नहीं एक गायक सा प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के और म्यूजिक एल्बम को साझा कर रहे हैं।
0: When Time Stood Still, Live in Bombay, 1982, The Glory of Strings, संतूर, 1991, राग भोपाली वॉल्यूम 1, 1993, राग केदार वॉल्यूम 2, 1993, A Homage to the Rain Gods, 1993, 100 Strings of संतूर, 1994, हिप्नोटिक संतूर 1994, दी पायोनियर ऑफ संतूर 1994, राग बिलास खानी तोड़ी 1994, वोल नेटवर्क सीरीज वॉल्यूम 1, इंडिया, राग पूरिया कल्याण विद जाकिर हुसैन 1995, संतूर, राग बागेश्री 1998, संप्रदाय 1999, रसधारा विथ हरिप्रसाद चौरसिया 1999, दी वैली रिकॉर्ड्स वॉल्यूम 2, हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सन 2000, आनंद ब्लिस विद जाकिर हुसैन 2002, वाइब्रेंट म्यूजिक फॉर रेकी 2003, सिंपैटिको राग चारुकेशी 2004, दी इनर पाथ कीरवानी 2004, एसेंशियल इवनिंग चैंट्स 2007, अ मॉर्निंग रागा गुजरी तोड़ी 2010, शिव कुमार शर्मा मेस्ट्रोस चॉइस सीरीज 2 2011 और संगीत सरताज 2011।
1: 1993 और 94 के एल्बम उनके संगीत के आध्यात्मिक और प्रकृति संवेदी पक्ष को उजागर करते हैं। उनका संगीत ऋतुओं, भावों और अनुभूतियों से गहराई से जुड़ा था। ध्वनि परिदृश्य, पहाड़ों का संगीत, संतूर की 100 लड़ियां, राग बिलास खानी तोड़ी और एक सुबह का राग गुजरी तोड़ी, इन रचनाओं में पहाड़, प्रातःकाल और मौन स्वयं बोलने लगते हैं।
0: 1996 में हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आया घाटी की यादें और द वैली रिकॉल्स उस जुगलबंदी की परिपक्व स्मृति थे जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। 1999 की मैस्ट्रो की पसंद श्रृंखला 2, संप्रदाय और रसधारा में उनकी साधना और अधिक संतुलित, अधिक गहन दिखाई देती है। 2001 में बॉम्बे में शनिवार की रात जैसे प्रयोगात्मक एल्बम में जॉन मैकगिलन और जाकिर हुसैन, तो 2002 में आनंद ब्लिस और समय का प्रवाह ने संगीत को ध्यान और उपचार से जोड़ दिया।
1: 2003 से 2007 तक के एल्बम रेकी के लिए जीवंत संगीत, सिंपैटिको आंतरिक पथ और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आवश्यक संध्या मंत्र इस बात के साक्ष्य हैं कि शिव कुमार शर्मा के लिए संगीत जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना ही बना रहा। उनके एल्बम किसी कालखंड की सूची नहीं बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर रचना सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वयं शिव कुमार शर्मा का संतूर।
0: श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा को देश विदेश में उनके अद्वितीय संगीत योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता मिलना इस बात का प्रमाण था कि उनका संतूर केवल भारत ही नहीं विश्व की आत्मा को भी छू रहा था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और फिर पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी साधना, नवाचार और परंपरा के प्रति समर्पण की औपचारिक स्वीकृति थे। फिल्म संगीत में भी उनकी जोड़ी शिवहरी ने इतिहास रचा। कॉल ऑफ द वैली और सिलसिला के संगीत को प्लैटिनम डिस्क, फासले को गोल्ड डिस्क, चांदनी को प्लैटिनम डिस्क मिली। लम्हे और डर के लिए उत्कृष्ट संगीत और रिकॉर्ड बिक्री हेतु उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। 1967 में आया मेस्ट्रोस चॉइस सीरीज 1 उनके शास्त्रीय वैभव का सशक्त प्रमाण बना, जहां संतूर, समय और साधना एक ही स्वर में गूंजते हैं।
1: शिव कुमार शर्मा ने संतूर को केवल तकनीकी रूप से नहीं भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नया आयाम दिया। 1960 के दशक से वे संतूर की ध्वनि को ध्यान और अंतर्मुखता से जोड़ने लगे थे। उनकी वादन शैली में एक स्थिरता, एक ठहराव था जिसमें सुनने वाला स्वयं को भूलकर स्वयं के भीतर उतर जाता था। यही कारण था कि उनके संतूर को लोग केवल सुनते नहीं थे, अनुभव करते थे। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि उनका संगीत मन को शांत करता है, भीतर एक अजीब सी उजास भर देता है, जैसे कोई मौन ध्यान साकार हो उठा। उनकी प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुकी थी। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उनके शिष्यों और श्रोताओं का विस्तार था। विश्व के विभिन्न देशों से युवा कलाकार उनके पास संदूर सीखने आते थे, केवल तकनीक के लिए नहीं बल्कि उस दृष्टि के लिए जिससे संगीत साधना बन जाता है। उनके लिए संतूर 100 तारों का वाद्य नहीं, 100 भावनाओं की साधना था।
0: श्रोताओं, कश्मीर की जिन वादियों में कभी संतूर की पहली झनकार गूंजी थी, वहीं से निकली वो आत्मा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे शाम की हवा खुद को अंधेरे में सौंप देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दुनिया कोविड के कठिन समय से गुजर रही थी, पंडित शिव कुमार शर्मा भी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण वे डायलिसिस पर थे, पर मन अब भी संगीत से बंधा हुआ था। शरीर थक रहा था पर साधना नहीं। 10 मई 2022 की सुबह एक हृदयाघात के साथ उनकी जीवन तान शांत हो गई। चौरासी वर्ष की आयु में मुंबई के उसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कभी सपनों की गठरी लेकर भी आए थे। अंतिम दिनों में पत्नी मनोरमा और पुत्र राहुल उनके साथ छाया की तरह रहे। संतूर अब भी परिवार की धड़कन था।
1: उनके जाने की खबर के साथ ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अमजद अली खान ने इसे एक युग का अंत कहा। कलाकारों, श्रोताओं और साधकों को लगा जैसे किसी ने भारतीय संगीत की आत्मा का एक कोना मौन कर दिया। पूर्ण राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, गरिमा, सादगी और कृतज्ञता के बीच।
0: शिव कुमार शर्मा के हाथों में संतूर केवल वाद्य नहीं रहा, वो स्मृति बना, साधना बना और समय की ध्वनि बन गया। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ मिलकर उसने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा का नया दर्पण दिया। वो केवल एक महान कलाकार नहीं थे, वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की वो तान थे जो धीमे धीमे बजती है लेकिन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। सच्चे अर्थों में वे भारत की संगीत आत्मा की एक अनमोल धरोहर थे।
1: पंडित शिव कुमार शर्मा का जीवन सपना संतूर को लोक की सीमाओं से उठाकर शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पूर्ण हुआ। उन्होंने कभी ऊंचाइयों की घोषणा नहीं की, केवल साधना की, और वही साधना आज भी जीवित है। संतूर की हर तार में, हर झनकार में उनका समय, उनका तप और उनका मौन बोलता है।
0: और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ऐसा लगता है कश्मीर की वादियां अब भी बहुत धीमे स्वर में कह रही हैं, ये राग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो अनंत में प्रवेश है।

0: जिन्होंने हम में कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को दृढ़ता व संरक्षता प्रदान कर सकें।
1: उन्हें समय के परिवर्तन का पूरा ज्ञान था। उन्होंने देश विदेशों में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझा था कि हम भारतीयों को लीक से हटकर कुछ और तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हम प्रचलित परिपाटी से अलग कुछ आत्मसात कर सही मायने में मनुष्य बन सकें। उन्होंने कहा था,
0: समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरू और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे।
2: स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्जन करते हुए उन्होंने गहराई से इन बातों पर विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थी। अपनी मातृभूमि को अन्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा से मंडित देखना उनकी सर्वाधिक इच्छा थी। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर अध्यात्म से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
1: भारतीय परंपरा के अनुसार जब जब संस्कृति और सभ्यताएं अधिपतित हुई हैं, जब जब मानवीय मेधा भ्रमित हुई है, तब तब जीवन की नई दिशाओं की ओर संकेत करने तथा

0: लाभप्रद सिद्ध होगा।
1: स्वामी जी से कभी पूछा गया था, आज की विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? उन्होंने उत्तर दिया था,
2: क्यों, वो तो आधी से अंत तक दोषों से भरी हुई है। ये बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है? यदि इतना ही होता तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां, देखो ना लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है, एक क्षेपक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोग गीतों से अधिक महत्व नहीं रखते।
0: एक अन्य अवसर पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की थी जिसे वो बताया गया था कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है, और उसने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लिए पीट पीट कर अधमरा कर डाला था।
1: यद्यपि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा बहुतों को मालूम है, फिर भी प्रस्तुत संदर्भ में उसकी पुनरावृत्ति उचित है। स्वामी जी ने कहा है,
2: शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विचार एक विशुद्ध वेदांतिक धारणा है। इसकी उपलब्धि मानव जीवन के स्तर और गौरव को अत्यधिक परिवर्धित कर देती है। इसकी स्वीकृति निष्ठा और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, और ये आत्मविश्वास पौरुष एवं चरित्र का सार है।
0: यद्यपि ये परिभाषा एक सर्वकालिक सत्य है और सभी लोगों के हित के लिए है, फिर भी आज के इस अलगाववादी युग में, संकीर्ण भावनाओं के युग में, ये परिभाषा विशेष महत्व रखती है। स्वामी जी पुनः कहते हैं,
2: शिक्षा है क्या? क्या वो किताबी ज्ञान है? नहीं। तो क्या वो बहुमुखी ज्ञान है? वो भी नहीं। शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा संकल्प शक्ति के अभिव्यक्ति को और उसके प्रवेग को संतुलित एवं लाभप्रद बनाया जाता है।
1: स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सूक्ष्मताओं पर भी पूरी स्पष्टता से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। मोटे तौर पर वे पाश्चात्य विज्ञान को वेदांत के साथ समायोजित करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार दोनों के मिलन से ही विश्व में समृद्धि और शांति का युग आएगा। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जीवन के कठिन और अरुचिकर कार्यों को सहज बना दिया, पर यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने जिस अवकाश की उपलब्धि की है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने कहा है,
2: आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वैदेशिक नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से ज्ञान की उन विविध शाखाओं का अध्ययन करें जो हमारी अपनी है। साथ ही हम अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। हमें तकनीकी शिक्षा तथा उन सब बातों की आवश्यकता है जिनसे हम उद्योगों का विकास कर सके, और नौकरी ढूंढने के बदले अपने पैरों पर खड़े रहकर इन उद्योगों के द्वारा जीविका के लिए यथेष्ट उपार्जन कर सकें तथा दुर्दिनों के लिए कुछ बचा भी सकें।
0: वर्तमान समय में भाषा की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। नई व्यवस्था में अंग्रेजी, अन्य प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत का क्या स्थान होगा? स्वामी जी के उपयुक्त उद्धरण से तथा उनके अन्य लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को महत्व प्रदान किया था।
1: शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार करते हुए निवेदिता ने अपने नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है,
3: यदि सभी मनुष्य एक ही भाषा में वार्तालाप करें, एक ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना और समान लक्ष्यों की अनुभूति करना सीखें, यदि सभी को समान शक्तियों के प्रति समान रूप से प्रतिक्रियाएं प्रकट करना सिखाया जाए और उन्हें इसके लिए सक्षम भी बनाया जाए, तभी तो हमारी एकता स्वयंभू बनकर प्रकट होगी और अटूट बनेगी।
1: प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत के विषय में स्वामी जी ने कई अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि वे प्रादेशिक भाषाओं के विकास पक्ष को महत्वपूर्ण समझते थे, फिर भी वे दृढ़तापूर्वक संस्कृत की महत्ता को अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा अधिक मानते थे। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भाषा जीवन के अलग अलग कार्यों की पूर्ति करती हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा की देन बहुत अधिक है। स्वामी जी कहते थे,
2: संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।
0: रामानुज कबीर और चैतन्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यद्यपि इन महापुरुषों ने निम्न वर्ग को ऊपर उठाया, किंतु उन्होंने संस्कृत विद्या का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा,
2: बुद्ध तक ने एक गलत कदम ये ले लिया कि उन्होंने जनता को संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित नहीं किया। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं, तो वे केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, और केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें संस्कृति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज भले ही विकसित और उन्नत हो जाए, पर जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं किया जाता, तब तक समाज की विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता।
1: वे भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सर्वोपरि स्थान देते थे। उनका कहना था,
2: संस्कृत पुरातन विद्या का कोश है। वो मानव जाति के सबसे उदात्त विचारों का विग्रह है। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित नहीं है, वे इसकी सशक्तता और गंभीरता का तनिक भी परिचय नहीं पा सकते। ये हमें केवल हमारी प्राचीन महानता का ही ज्ञान नहीं करा सकती, अपितु हमें वो श्रद्धा और आत्मविश्वास भर सकती है जो आज विदेशी प्रशासन और अराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कारण जड़ से हिल गए। भारतीय संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे के पर्याय हैं।

0: विवेकानंद अनेक कलाओं से परिचित थे। गीत संगीत वादन तो वे जानते ही थे, साथ ही लाठी भांजना, कुश्ती और पाक कला में भी वे पारंगत थे। वे इस विषय पर भी हमें अपना सुझाव देना नहीं भूले।
1: एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशियावासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। कला हमारे धर्म का ही एक अंग है।
2: उन्होंने कलात्मक पात्रों, सुंदर साड़ियों तथा कलात्मक धोतियों की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दीन हीन कृषक की मिट्टी से बनी झोपड़ियों तथा अनाज रखने की कोठियों तक में कला का दर्शन कराया और बताया कि हमारी स्थापत्य कला किसी अनजान कारीगर के सपनों की प्रस्तरमयी विग्रह है। जैसे पश्चिम का आदर्श उपयोगिता है, वैसे ही भारत का आदर्श कला है। स्वामी जी का विचार था कि जापान में पश्चिमी उपयोगिता और भारतीय कला का सुंदर समन्वय घटित हुआ है, जबकि भारत मूर्खता पूर्वक पाश्चात्य उपयोगितावाद का अंधा अनुकरण कर रहा है। वे चाहते थे कि भारत में भी दोनों का सुंदर समन्वय हो।
0: स्वामी जी कहा करते थे कि व्यक्ति के समान राष्ट्र की भी अपनी एक विशिष्ट प्रतिमा होती है और उसके विकास का एक विशेष मार्ग होता है। हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति स्वामी जी के प्रेम का उल्लेख करती हुई भगिनी निवेदिता अपनी मास्टर एज आई सॉ हिम नामक ग्रंथ में लिखती हैं,
3: स्वामी जी के लिए प्रत्येक नवीन वस्तु प्राचीन निवेदन के भाव से शुद्ध की हुई थी। माँ सरस्वती का चित्र आंकना स्वामी जी के मतानुसार उसकी पूजा करना था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना मानो घुटने टेक कर रोग और मलिनता के पिशाचों के नाश के लिए प्रार्थना करना था। धार्मिक एकाग्रता की शक्ति के लिए मानवीय मेधा को उसकी चरम पूर्णता के स्तर पर पहुंचा देना उनके विचार से एक आवश्यक तत्व था। वे अध्ययन को तपस्या मानते थे और हिंदुओं की ध्यानोन्मुखता को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धियों में सहायक समझते थे। इस प्रकार शिक्षा स्वयं में की गई साधना और धर्म का एक अंग है।
2: स्वामी जी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर प्रकार के बल को जरूरी मानते थे, अतः वे शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देना भी नहीं भूले। अपने शिष्य के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था,
1: तुम्हें शरीर को खूब शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए और दूसरों को भी इसे सिखाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अब भी डंबल्स के साथ व्यायाम करता हूं? शरीर और मन दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। यदि लोगों को शारीरिक बल बढ़ाने की जरूरत समझा दी जाए तो वे स्वमेव उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे। इस आवश्यकता के बोध हेतु ही आज शिक्षा का प्रयोजन है।
0: स्वामी जी अपने देशवासियों को सशक्त और सबल स्त्री पुरुषों के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने अनेक प्रसंगों में अपनी ये आंतरिक इच्छा व्यक्त की है।
1: मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। मेरी तुमसे सही सलाह है, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे।
2: स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने का बल प्रदान करती है।
0: हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी हटाने के प्रयास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी कोशिशें, ये सभी स्वामी जी के विचारों के अनुकूल हैं। इन्हीं कारणों से स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि भारतवासी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, पर वे ये नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक लाभ के लिए अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता से वंचित हो जाएं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था,
1: तुम में एक सुई बनाने की क्षमता तक तो है नहीं, और तुम अंग्रेजी की आलोचना करने की धृष्टता करते हो। मूर्ख, जाकर उनके पैरों के पास बैठो और उनसे उन कलाओं, उद्योगों और व्यवहारिकता को सीखो जो जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक हैं।
2: एक अन्य प्रसंग के लिए आवश्यक है,
1: आज की उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। अधिक अच्छा तो होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में मन लगा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
2: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी आधुनिक जीवनधारा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के अति संरक्षणशील और कट्टर विचार पोषकों की भांति उसका अकारण विरोध नहीं करते। हाँ, पश्चिम के औद्योगिकरण के दोषों को वेदांत के आलोक द्वारा घटाया जा सकता है, पर समय के चक्र को लौटाना संभव नहीं है। और ना ये उचित है कि आज जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इतने वेग से प्रगति हो रही हो, हम बैलगाड़ी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के युग में वापस चले जाएं। स्वामी जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है,
1: जो शिक्षा प्रणाली जनसाधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सुप्त केसरी तुल्य साहस का विकास नहीं करती, वो भी क्या शिक्षा कहलाने योग्य है।
0: शिक्षा प्रणाली के विषय में स्वामी जी का ये दृढ़ मत था कि प्राचीन गुरु गृहवास की प्रथा को आधुनिक संदर्भ में संशोधित परिवर्तित करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए लागू करना चाहिए। उनका कथन था,
1: छात्र को बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति से संसर्ग में रहना चाहिए जिसका चरित्र ज्वलंत अग्नि के समान पवित्र हो।
0: उनका विचार था,
1: एकमात्र जीवन ही सबसे उत्तम शिक्षक है, क्योंकि पवित्र जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण ही मनुष्य में निहित प्रसुप्त दैवत्य का विकास करता है।
0: उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक प्रतिपादित किया कि
1: यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी और निष्प्रह व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता, तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा।
2: वे चाहते थे कि प्राचीन काल के समान ही सभी विद्यार्थी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है और सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि प्रदान करता है। उसी से अन्य शक्तियां विकसित होती हैं। स्वामी जी श्रद्धा को मूलभूत धर्म मानते थे। श्रद्धा का निर्माण निष्ठा, विनम्रता, पूज्य भाव और संदेह में अडिग रहने वाला दृढ़ विश्वास, इन सब गुणों के एकत्र मेल से ही होता है।
0: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी आधुनिक दिखावटी एवं उबाऊ शिक्षा की कामना नहीं करते थे, अपितु उन्हें क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा की अपेक्षा थी। जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवीन प्राण शक्ति का संचार नहीं किया जाता, तब तक भारत के नव निर्माण की दिशा में प्रयत्न करना व्यर्थ है। स्वामी जी कहते थे,
1: शिक्षा का भारतीय आदर्श मन का वो नियंत्रण है जिससे हम उसे जहां चाहें ठीक वहीं लगा सकें। एकाग्रता की प्राप्ति उत्तम तो है, पर जब तक उसके साथ हम में अनासक्ति की भी शक्ति नहीं आती, तब तक संभव है कि वो हमें कठिनाइयों के आवर्त में डाल दे। तथ्यों के संग्रह को नहीं, अपितु एकाग्रता को ही मैं शिक्षा का मूल समझता हूं। यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित करता और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संग्रह कर लेता।
2: ये कहना अप्रासंगिक न होगा कि आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रणाली में शिशु के व्यक्तित्व के प्रति जो सम्मान का तथ्य पाया जाता है वो अभी आरंभ हुआ है, जबकि भारतीय वेदांत कल्पनातीत काल से इस तथ्य से परिचित था। उस समय शिक्षा यथासंभव व्यक्ति परक थी।
1: सारा ज्ञान मनुष्य में ही निहित है। यही क्यों, एक बालक में भी समग्र ज्ञान प्रच्छत्र रूप से विद्यमान है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो उस प्रच्छत्र ज्ञान की अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर कर दे और अपने विद्यार्थियों को ये सिखा दे कि अपने हाथ, पैर, नेत्र और कानों का समुचित उपयोग करने के लिए वे किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम ले।
0: स्वामी जी ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते थे। वे कहते थे,
1: भारतीय समाज में बौद्धिक वर्ग को एक सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त है, पर प्रत्येक सुविधा के साथ उत्तरदायित्व का भाव भी भरा हुआ है। इस संक्रांति और उतार चढ़ाव की अवधि में ही भविष्य अपना रूप निर्मित करेगा। अतः इस देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह आत्मविश्वास के लिए ज्ञान का अर्जन करे और उसका दान उन लोगों को भी दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
2: कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हम ज्ञान से भी मूल्यवान और किस वस्तु का दान कर सकते हैं? क्रिया मूलक और सृजनशील ज्ञान के दान से दाता और पात्र दोनों का ही उत्थान होता है। इसी दान के माध्यम से भारतवर्ष उस गौरवमय युग को प्राप्त कर सकता है जिसके अवतरण की घोषणा स्वामी विवेकानंद कर गए हैं।
0: स्वामी जी समाज में एक सर्वमान्य नेता की जरूरत को महसूस करते थे जो अनपढ़ जनता को राह दिखाए, जिन्हें लोग बिना किसी संदेह और प्रश्न के मान लें। प्रजातांत्रिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देशवासी सुशिक्षित हों, विवेकवान हों और अच्छे बुरे का चयन खुद कर सकें। तब तक उन्हें नेतृत्व देने वाले किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। पिछड़ी हुई जनता के लिए स्वामी जी अधिनायक तंत्र के महत्व को पूरी तरह समझते थे। वे कहते हैं,
1: जब शिक्षा के प्रसार के साथ हमारी देश की जनता अधिक सहानुभूति और उदार बनेगी, जब वो अपने विचारों को संप्रदाय या पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालना सीखेगी, तब कहीं संघबद्ध प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसलिए अभी समाज के लिए एक अधिनायक का होना आवश्यक है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, कालांतर में हम साधारण मतदान के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे।
2: स्वामी जी भावी भारत के बारे में पूर्णतः आशान्वित थे। उनका मानना था कि भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा कई गुना महिमा मंडित होने वाला है। वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
1: भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई हैं। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
0: पर इसका उपाय क्या है? विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं, और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: पटल
1: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल
0: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल
2: रही घटा विकल तम खरा है भूपटल रही है आंधियां जोर शोर

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, अब हमारी दोपहरकालीन सभा यहीं पर आरंभ होती है और प्रारंभ होती है सांध्यकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। श्रोताओं, रेडियो आज़ाद हिंद के कार्यक्रमों को आप प्रातः 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। तो जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। शाम के ठीक 5 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं वायु और छंद है अत्यष्टि और अष्टि।
3: आत्वाजुवो रारहाणा अभिप्रयो वायो वहन्त्विहि पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ऊर्ध्वाते अनुसूनृता मनस्तिष्ठतु जानति नियुक्त्वत्वा रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने। हे वायुदेव, आपको शीघ्रगामी अश्व पहले के समान ही पुरोडाश हविष्यान्न के लिए इस सोमयाग में पहुंचाएं। हे वायो, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा अभिव्यक्त प्रिय वाणी आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारें। मदन्तु त्वा मंदिनो वायविन्दवोऽस्मत्क्राणासः सुकृता अभिद्यवो गोभिः क्राणा अभिद्यवः यद्धक्राणा इरद्ध्यै दक्षं सचन्त ऊतयः सद्रीचीना नियुतो दावने धिय उपब्रुवत ईं धियः। हे वायो, आप हमारे द्वारा भली प्रकार से निष्पन्न हुए उत्साहवर्धक तेजस्विता

0: युक्त तथा गोदुग्ध से मिश्रित सोमरस का आनंद पूर्वक पान करें। पुरुषार्थी मनुष्य संरक्षण की कामना से शक्ति संचय के लिए भ्रमरत रहते हैं। सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक सम्मत दान के लिए आपकी ही प्रार्थना करते हैं। वायुर्युङ्क्ते रोहिता वायुररुणा वायुरथे अजिरा धुरी वोढहवे वहिष्ठा धुरी वोढहवे प्रबोधया पुरिन्धिं जार आ ससतीमिव प्रचक्षय रोदसी वास योषसः श्रवसे वास योषसः। वायुदेव गमन करने के लिए भार वहन में सक्षम लाल तथा अरुण रंग के दो बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ में धुरे में जोतते हैं। हे वायुदेव, जैसे प्रेमी पुरुष सोई हुई स्त्री को उठाते हैं, वैसे ही आप मनुष्यों को जगाएं। द्यावा पृथ्वी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवी उषा को आलोकित करें। तुभ्य मुषासह शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः सबर दुघा विश्वा वसूनि दोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः। हे वायुदेव, पवित्र उषाएं आपके लिए दूर स्थित नवीन दर्शन योग्य रश्मियों से अद्भुत कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती हैं। अमृत रूपी दूध देने वाली गौएं आपके लिए समस्त धनों को प्रदान करती हैं। इन्हीं अजन्मा हवाओं से नदियों का जल ऊपर आकाश में जाता है, जाने के बाद बरसकर नदियों में पुनः आता है। अतएव जल वृष्टि के कारण में मूल रूप से हे वायुदेव आप ही हैं। तुभ्यं शुक्रासः शुचयस्तु रण्यवो मदे शुग्रा इषणन्त भूर्वण्य पामिषन्त भूर्वणि त्वां तत्सारि दसमानो भगमीट्टे तक्ववीये त्वं विश्वस्माद्वनात् पासि धर्मणा सूर्यात् पासि धर्मणा। हे वायुदेव, उज्ज्वल पवित्र अति गतिशील तीक्ष्णता युक्त यह सोमरस ऐश्वर्य प्रद यज्ञादि के अवसर पर आपके सहयोग का इच्छुक है। जलों की स्थापना तथा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका ही विशेष सहयोग रहता है। हे वायुदेव, निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारण हेतु आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही निरंतर प्राण वायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। त्वं नो वायवेशा मपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमर्हसि सुतानां पीतिमर्हसि उतो व्युहुतमतीनां विषां ववरजुषीणां विश्वायित्ते धेनवो दुर्ह्र आशिरं घृतं दुर्हृत आशिरं। हे अतिश्रेष्ठ वायुदेव, आप हमारे द्वारा अभिषुत सोमरस के सर्वप्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं। समस्त गौएं जिस प्रकार दूध और घी आपके निमित्त प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आप भी प्राण वायु प्रदान करें। आप निष्पाप तथा यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 134वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। शाम के 5:10 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जिस प्रकार हम मनुष्य होकर आपस में एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, वही रिश्ता हमें ईश्वर से बनाना चाहिए, तो प्रभु के निकट जाने में हमें सुगमता होगी।

जब जीवन में हम कभी असफल होते हैं तो इधर उधर भटकते हैं और संसार से सलाह लेते हैं, लेकिन यदि हम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें तो हमें सही रास्ता भी मिलेगा और हम कभी थकेंगे भी नहीं।

ईश्वर से कुछ लेने के लिए हमें उनका नाम नहीं लेना है, पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। हमें नाम तो सिर्फ इसीलिए लेना है कि ईश्वर हमें स्वीकार कर लें और हम केवल ईश्वर के रहें और ईश्वर को कभी भूलें नहीं।

जो प्रभु चरणों से विमुख रहते हैं, कुटिल हैं, माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिनके मन में मान अभिमान की भावना होती है और श्री राम जी के चरणों में जिनका चित्त नहीं लगता, वे मनुष्य अभागे हैं।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। शाम के ठीक 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सतीश चंद्र मुखर्जी पर।

0: इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान देशभक्त और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले अग्रणी नेता सतीश चंद्र मुखर्जी का।
1: ये वतन का
0: शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी देश का चरित्र निर्माण करती है। उसके नागरिकों के भीतर देश, समाज और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करती है, और नागरिकों का दृष्टिकोण ही वो बीज तत्व है जो किसी देश की दिशा तय करता है, उस देश का भाग्य बनाता या बिगाड़ देता है। अंग्रेजों ने भारत पर केवल शासन ही नहीं किया, बल्कि कई रणनीतियां बनाई, अनेक कुटिल चालें चली और भारत की जड़ों पर प्रहार किया। मैकाले की शिक्षा नीति भी उनकी ऐसी ही एक चाल थी। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित और महत्वहीन बताया और पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए उसे थोपने की कोशिश की। उसने भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना बोने का भरपूर प्रयास किया। उसने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी अर्थात अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया और कहा कि भारत में प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिसके अंतर्गत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के छोटे हिस्से को विशेष रूप से शिक्षित किया जाए, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता में ब्रिटिश हो। इन्हीं मंशाओं के साथ अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ, लेकिन तत्कालीन भारत का प्रबुद्ध वर्ग अंग्रेजों की इस साजिश को बखूबी समझता था और भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला को जीवित रखने में जुटा हुआ था। देश की व्यवस्था को यथासंभव भारतीय मूल्यों और आदर्शों के अनुसार संचालित करवाना इस वर्ग की चिंता का विषय था। पराधीन भारत में इस विचारधारा से प्रेरित प्रखर विद्वानों की एक अद्वितीय श्रृंखला थी। इन्हीं विभूतियों में से एक थे सतीश चंद्र मुखर्जी, एक विद्वान, चिंतक और समाजसेवी। राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद थे। सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म 5 जून 1865 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बानीपुर में हुआ था। उन्होंने दक्षिण उपनगरीय स्कूल भवानीपुर कोलकाता में अपनी शिक्षा शुरू की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1884 में बीए और 1886 में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्यापन का कार्य शुरू किया। सन 1887 में उन्होंने बहरामपुर कॉलेज में प्रवेश लिया और 1890 में बीएल की डिग्री प्राप्त की तथा कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। सन 1895-96 के आसपास उन्होंने भगवत चतुष्पति नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ये मुख्य रूप से भारतीय धर्म और दर्शन के अध्ययन और समग्र रूप से भारत के अध्ययन के लिए समर्पित एक संस्थान था।

सतीश चंद्र मुखर्जी आरंभ से ही विद्वत जनों के सानिध्य में रहे। सर आशुतोष मुखोपाध्याय उनके सहपाठी थे। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिवनाथ शास्त्री, ब्रजेंद्रनाथ शील, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्ता तथा स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों से अत्यंत प्रभावित थे। आरंभ से ही वो शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रयासरत थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने सन 1902 में कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। ये भारत के विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के विरोध में गठित एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन था। इसका उद्देश्य छात्रों को आदर्श शिक्षा देना, उनमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना, मानसिक मजबूती और चरित्र निर्माण करना था। इसके अलावा लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना का विकास करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। साथ ही स्वदेशी उद्योगों के समग्र विकास की दिशा में भी ये संस्था सक्रिय थी। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाने की दिशा में डॉन सोसाइटी का योगदान अतुलनीय है। इस तरह ये संस्था राष्ट्रीय पहचान की खोज के लिए समर्पित थी। 5 नवंबर सन 1905 को डॉन सोसाइटी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय शिक्षा के उद्घाटन के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय और हिरेन्द्रनाथ दत्ता ने बड़ी सभा को संबोधित किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने छात्रों से कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ने और वहां की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। वो डॉन पत्रिका के संपादक भी रहे। पत्रिका ने 1902 तक भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला पर कई लेख प्रकाशित किए। डॉन उस समय का मुख्य पत्र बन गया। छात्रों को डॉन पत्रिका में प्रकाशन के लिए लेख प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। सतीश चंद्र मुखर्जी समकालीन युवा पीढ़ी के एक अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। कुछ ही समय में विनय कुमार सरकार, राधा कुमुद मुखोपाध्याय, हरण चंद्र चकलादार, रवीन्द्र नारायण घोष, किशोरी मोहन गुप्ता और कई अन्य लोग उनके साथ जुड़ गए और वे डॉन सोसाइटी के मुख्य आधार बन गए। डॉन सोसाइटी मानव संसाधन विकास और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी। इसीलिए उनके पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी शुरू किया गया, जहां नील रतन सरकार, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी भी व्याख्यान दिया करते थे। यहां रमाकांत राय और कुंज बिहारी सेन टेक्नोलॉजी पर लेक्चर दिया करते थे। इसके प्रौद्योगिकी अनुभाग में कार्यशाला गतिविधियों की सहायता से आयोजित एक मुख्य पाठ्यक्रम शामिल था। इन कार्यशालाओं में साबुन और तेल बनाने की प्रणाली जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं सहित कई प्रकार के यांत्रिक कार्य सिखाए जाते थे। इसके अलावा बुनाई की आधुनिक तकनीक भी सिखाई जाती थी। छात्रों द्वारा निर्मित उत्पादों को बड़े बाजार स्वदेशी की दुकानों में बेचा जाता था। इस तरह युवा पीढ़ी स्वदेशी के मंत्र से परिचित हो रही थी।

समाज के मुख्य पत्र के रूप में डॉन पत्रिका ने राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया था। इसका उद्देश्य भारत की विरासत को संरक्षित करना और इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान सुझाना था। उन दिनों इंडियाना पत्रिका का एक विशेष खंड था जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना और राष्ट्रवाद का विकास करना था। इसके लिए भी सतीश चंद्र मुखर्जी और उनके कुछ साथियों ने भारत से संबंधित सभी विषयों पर अनेक लेख लिखे। इस तरह अपने समय में डॉन पत्रिका भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गई। जब भारतीय युवाओं ने बंगाल के विभाजन के समय पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना शुरू किया, तब बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव कार्लाइल ने 22 अक्टूबर 1905 को एक सर्कुलर घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई कॉलेज सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है और छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो उस संस्थान को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। इसे गुलामी की घोषणा करार दिया गया था। सतीश चंद्र मुखर्जी ने कार्लाइल के इस सर्कुलर का जमकर विरोध किया। अरविंद घोष से उनकी गहन आत्मीयता थी। वे दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम से भी जुड़े हुए थे। महर्षि अरविंद के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों में सतीश चंद्र मुखर्जी का अग्रणी स्थान है। इसी समय नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर हुई थी और इसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष थे और सतीश चंद्र मुखर्जी कार्यवाहक प्राचार्य बने। उन्होंने सन 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बंगाल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1907 में जब श्री अरविंदो ने नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल के प्राचार्य पद से इस्तीफा दिया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी को इसका प्राचार्य नियुक्त किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अगले वर्ष इस्तीफा दे दिया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और सफलता में सतीश चंद्र मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय है। डॉन सोसाइटी ने स्वदेशी औद्योगीकरण की जागृति के लिए विभिन्न तर्क दिए तथा सराहनीय कार्य किए। हालांकि सन 1906 में डॉन सोसाइटी का राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में विलय हो गया, लेकिन डॉन पत्रिका 1913 तक जारी रही। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था। जब इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो सतीश चंद्र मुखर्जी साबरमती गए और कुछ समय के लिए यंग इंडिया पत्रिका को प्रकाशित करने में मदद की। सन 1930 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बिहार विद्यापीठ का दौरा किया और कुछ समय के लिए वहां रहे। सतीश चंद्र मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त और धर्मपरायण संत थे, लेकिन वे धार्मिक कट्टरता, जाति व्यवस्था और प्रांतवाद के विरोधी थे। वो भारतीय राष्ट्रवाद और शिक्षा के विकास को समर्पित विभूति थे। आजीवन मातृभूमि की सेवा करते हुए 18 अप्रैल सन 1948 को वाराणसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम आमने सामने का। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा को।
1: उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ। हाँ, बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया।
0: वो जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में शिरकत करने भोपाल आए और जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मंचन हुआ नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह का।

0: इस मौके पर हमने अभय सिन्हा से बात की। कार्यक्रम के पहले हिस्से में आप सुनेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से बातचीत, और उसके बाद नाटक वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अब आपसे मुखातिब हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा।
1: मेरा नाम अभय सिन्हा है और मैं पटना से आया हूँ। हमारी संस्था है प्रांगण, राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में हमारा नाटक है बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के योद्धा थे, जो बिहार में सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के अलावा ये देश के लिए बहुत किया इन्होंने।
2: सर, थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे, आपका रंगकर्म की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और क्या थिएटर की दुनिया में आप खुद ब खुद चले आए या किस्मत आपको ले आई?
1: देखिए, बचपन से ही शौक था। हम तो जब क्लास 5th-6th में पढ़ते थे उस समय से, मतलब हमारा ये है कि 1974-5 से हम रंगमंच पे हैं। 1974-75 से हम रंगमंच पे हैं। काले बाल से वाइट बाल हो गया हमारा, और हम लगातार रंगमंच कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई नौकरी आज तक नहीं किया, और रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। और अचानक आना ही कहेंगे, और शौक तो था ही, अचानक आना हुआ कि हमारे गुरु थे, हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, वो हमारे परिचित के भी थे, मेरे बड़े भैया के मित्र थे, वो एक संस्था से जुड़े हुए थे, तो हम ऐनक के सामने कभी कभी ऐसे डायलॉग बोलते थे। और उसके पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें शिक्षक दिवस पे हम रंगमंच पे नाटक करते थे, छोटे छोटे नाटकों करते थे। तो उस समय मंच क्या, स्कूल के मंच पे होते थे, वो तो बहुत बड़ा मंच नहीं होता था, लेकिन वही जो भैया के मित्र थे, हमें जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने आकर कहा कि अभय नाटक करोगे? हम बोले हाँ एकदम करेंगे। तो बोले चलो करते हैं। तो एक संस्था थी उस समय पटना में अभियान करके, उससे हम जुड़ गए। तो एक हमें रोल तो मिला नहीं, प्रॉम्प्ट करते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे करेक्टर अचानक क्या हुआ कि वो आया नहीं, और वो क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ा सा आए, दो चार दिन आए नहीं आए, उसका प्रॉक्सी हम करने लगे। तो प्रॉक्सी करने लगे तो उसका संवाद याद आ गया, तो जो डायरेक्टर थे वो लगे भाई तुम करो अब इसको। हम किए तो बहुत बढ़िया कर गए, एक प्रॉम्प्टर भी थे, प्रॉक्सी भी करते थे। उसके बाद जब करने लगे तो करने लगे, और आज तक लगातार
2: दोनों ही चीज़ें हैं, किस्मत भी ले आई और आपको शौक भी था।
1: शौक भी था, और अब ये ऐसा हो गया कि अब रंगमंच पे अभिनय धीरे धीरे धीरे धीरे समाप्त हो गया, और रंग निर्देशक की ओर हम बड़े अग्रसर हो गए, और अब अभिनय बहुत ही कम करते हैं। अगर किसी और के निर्देशन में अगर काम होता है तब हम करते हैं, हम अपने निर्देशन में खुद अभिनय
2: नए लोगों को
1: प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
2: सर, एक चीज़, बचपन आपका कहाँ बीता ये ज़रूर पूछूंगा, और उन दिनों में कौन से वो रंगकर्मी थे जिनके आप लोग होते ना मुतासर होते हैं कि जैसे फिल्मी एक्टर्स, तो वो क्योंकि नाटक अब तो खैर बहुत होने लगे, पहले इतने होते तो होंगे लेकिन इतना आसान नहीं था, दूर दूर जाना आना आसान भी नहीं था, सफ़र करना भी, तो वो कौन से रंगकर्मी थे जिनको देखकर आप प्रभावित हुए और फिर आगे बढ़ते चले गए?
1: वो हमारे गुरु थे, हिंदुस्तान के बड़े ही चर्चित नामी रंग निर्देशक थे सतीश आनंद, जिसको जो भी रंगकर्म करते हैं वो हर लोग जानते हैं कि सतीश आनंद क्या चीज़ थे। तो हम उनके ही सानिध्य में थे, और वही हमारे गुरु हैं, और हमने छोटे छोटे जो नाटक किए उसके पहले एक अजय के सिन्हा हुआ करते थे, उनके निर्देशन में भी हमने एक दो नाटक किया था, लेकिन जो गुरु, जिनको गुरु माना जाता है, प्रथम हमारे तो अजय के सिन्हा ही थे, लेकिन ये जो गुरु थे हमारे, वो उनसे हमने बहुत कुछ गेन किया, और उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके ही सीखे हुए चीज़ों को अब हम कोशिश करते हैं कि मंच पर करें।
2: फिर एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा सुनने वालों के लिए कि नाटक लोग खेलते हैं, हर जगह होता है, भारत में भी होता है, बाहर भी होता है, जो जनता होती है वो किस तरह से समझे, क्योंकि कन्फ्यूज़ रहती है कि नाटक क्या है, फिल्में क्या हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और एक ये भी चीज़ हम सुनते हैं कि जो नाटक की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से जो एक्टर्स आते हैं उनको ये माना जाता है कि वो अच्छे एक्टर हैं।
1: देखिए, जब तक दर्शक जो होते हैं, जो फिल्म की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं रंगमंच को, अगर वो एक बार रंगमंच को देख लें, अगर अच्छे निर्देशक को देख लें, उनको रंगमंच के प्रति झुकाव होगा। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, और वही देश में नाम कमाएगा, और वही आगे बढ़ेगा, वही चलचित्र पे जाएगा, वही फिल्मों में काम करेगा, सीरियल में काम करेगा और आगे बढ़ेगा। दर्शक को, रंगकर्मियों को, रंगमंच को समझना चाहिए और समझना होगा, धीरे धीरे झुकाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि झुकाव नहीं है, पहले बहुत झुकाव था, बीच में अलग हुआ, फिर वापस हो रहे हैं दर्शक। अच्छे अच्छे राइटर का नाटक आ रहा है, अच्छे अच्छे नाटककारों का नाटक आ रहा है, तो ये है हमारा।
2: सर एक दो सवाल को, आपको समय की कमी है, जब आप रंगमंच करते थे शुरुआत की और अब क्या फर्क आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी में फर्क हुआ होगा, नए आर्टिस्ट आते हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? एक चीज़ उसमें और जोड़ देता हूँ कि कहा जाता है कोई भी काम करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अलावा और भी नाटक में तो सभी संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पढ़ना, क्योंकि पढ़कर जो आता है तो तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है। तो आप इतने साल हो गए आपको, 50 साल से ऊपर, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है?
1: देखिए जब हम नाटक की शुरुआत किए थे उस समय देश में टाइपराइटर था, टाइप लोग करते थे, अब टाइपराइटर कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ अब कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, अब कंप्यूटर पर लोग टाइप करने लगे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर भी गुम हो रहा है और मोबाइल आ गया, मोबाइल पे लोग बोल के हाँ टाइप कर ले रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उससे काम करते हैं। अंतर यह है कि पूरा टेक्निक चेंज हो गया, हाँ अब तो क्या LED आ गया, तो ये वो आ गया, लाइट वो लाइट आ गया, ये साउंड सिस्टम आ गया, वो साउंड सिस्टम आ गया, और पहले इतना नहीं था। पहले लोग अभी जैसे स्टार्टिंग हम लोग करते थे, पेट्रोमैक्स पे नाटक करते थे, लालटेन पे नाटक करते थे गांव गवई में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ, हाँ बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया। तो चेंज होता गया तो निश्चित तौर पर पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। तो ये है टेक्निकल, उस समय बहुत तो चेंजे तो आए, बहुत से चेंजे आए। पहले लोग क्या करते थे, मंच बनाते थे, और हमेशा नाटक नहीं होता था, पहले किसी पर्व त्यौहार रीति ये होता था, जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, दीपावली हो रहा है, उस समय होते थे। अभी क्या है, अब हॉल बन गया, बहुत सारे प्रेक्षागृह खुल गए नाटक के लिए, अब लोग उसमें लाइट है, साउंड है, सब है, अब जाते हैं लोग मंच पे करते हैं नाटक।
2: सर आखिरी सवाल, जो नए युवा रंगकर्मी आना चाहते हैं तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो किन बातों का ख्याल रखें, और दूसरा क्या, जैसे आपने कहा कि आपने पूरे जीवन नाटक ही किया, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई नौकरी करो, इससे क्या होगा, पहले तो ज़्यादा ही होता था अब शायद, कि तो क्या इसमें इनकम भी लोगों की हो जाती है, कोई बहुत से लोग चाहते हैं सिर्फ नाटक ही करें, तो किन बातों का युवा ख्याल रख कर आए?
1: देखिए क्या है, आज के युवा पीढ़ी भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार 10-10 सीढ़ी फान के 100वें तल्ले पे पहुंच जाए। नहीं, आप जब 100वें तल्ले तक आप पहुंचेगा तब तक टाएं टाएं फेस वहीं आप लुढ़क जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। आप एक एक सीढ़ी चढ़ें, और एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप निश्चित तौर पे आप 100 सीढ़ी पे आराम से पहुंच जाएंगे और नाम कमाएंगे। आज के युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं कि वो केवल भागने की कोशिश न करें, एक दो नाटक करें, निर्देशक बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप पढ़िए, किताब पढ़िए, कुछ समझिए, जितने भी चरित्र उसमें हैं उसके बारे में सोचिए, उसको पहले अपने आप में इम्प्रोवाइज कीजिए, आप खुद पहले उसको देखिए, आप खुद अपने ऊपर उसका इस्तेमाल करिए, तब आप उस करेक्टर को किसी को दीजिए और उनको उस तरह से कराइए। अच्छा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 घंटे में आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ के चल दिए नाटक को, नहीं, आप उसको पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर उसका बैकग्राउंड के बारे में सोचिए, उसके म्यूजिक के बारे में सोचिए, उसके लाइट के बारे में सोचिए, उसके ड्रेस के बारे में सोचिए, उस पर रिसर्च आपको करनी होगी।
2: सर भोपाल पहले आए क्या? पहली
1: बहुत बार भोपाल आए।
2: अच्छा,
1: ये हमारा भोपाल 4था या 5वां मंचन है हमारे नाटक का यहाँ पे, और यहाँ के जो भी सीनियर हैं रंगकर्मी हैं वो सबसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय है, व्यक्तिगत रिलेशन है सारे लोगों से, तो ये सारे लोग हैं, सब लोगों से मेरा बहुत अच्छा ये है।
2: बहुत धन्यवाद सर।
0: और यह है नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश।
3: भोजपुर में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली थी।

0: ये सोचने का समय नहीं है महाराज, आप में क्या है संभव है आप नहीं जानते, पर हम सब जानते हैं। तभी तो सारी बाधाओं को अपने पैरों से कुचलते हुए, भयंकर नदियों को पार करते हुए, जंगली पशुओं से युद्ध करते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं महाराज। आज गोरों के विरुद्ध हर तरफ लड़ाई चल रही है, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सभी जगह बगावत हो रही है महाराज। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह पर, कानपुर के नाना साहब, कालपी के राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और त्वार महाराज लोहे से बने महावीर तात्या टोपे इस जंग के नेता हैं। क्या हमारा बिहार इस आजादी की लड़ाई में पीछे रह जाएगा? क्या शेर कुंवर सिंह की गरी जगदीशपुर का नाम गुल हो जाएगा महाराज?
1: नहीं, जगदीश सिंह, बिहार भी इस आजादी की लड़ाई में आगे आएगा। और दादाजी, आपको यहाँ का सेनापति बनना पड़ेगा।
2: कदम हम जानते हैं, स्वतंत्रता देवी बलि चाहती है, मानव रक्त पीकर वो अवश्य प्रसन्न होगी।
1: हाँ दादा,
2: घोड़े अवश्य यहाँ से भागेंगे और हमारा देश अवश्य आजाद होगा। रंजीत
0: महाराज,
2: कहाँ है हमारा राजमुकुट? शीघ्र ले आइए।
0: जो आ गया महाराज।
2: महाराज, हमारी दाई है आजाद जगदीशपुर का राज मुकुट है। आज से हमारे बाद आप यहाँ के राजा हुए।
1: दादा, दादा,
2: हमारे आप तो जानते हैं कि हम पुत्र पौत्र ही हैं, लेकिन हमें उसका जरा भी अफसोस नहीं है। आप ही हो मेरे योग्य उत्तराधिकारी। आज के बाद आप दिलीपपुर के ही नहीं, जगदीशपुर के भी राजा हुए।
1: लेकिन आप दादाजी,
2: हमारी चिंता छोड़िए अमर, एक बात
1: दादा
2: और सुनो मेरे योग्य भाई।
1: हाँ दादा।
2: यही है ओ जननी जन्म भूमि, जिसे बचाने के लिए हमने अंग्रेजों से गहरी लड़ाई मोली, अपने शरीर के अंग को कुर्बान कर दिया। देख रहे हैं हमारा ये दायरा, इसे किसी दुश्मनों ने नहीं काटा है और ना ही किसी बीमारी ने इसे नष्ट किया है। इसे स्वयं हमने काटा है, मां गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है अमर।
1: हाँ दादा,
2: इसे बचा कर रखना होगा मेरे भाई।
1: हाँ,
2: रखना होगा आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए।
1: दादा, दादा, मेरे प्राण के साथ यह धरोहर रहेगा, प्राण दूंगा, पर आजादी नहीं।
2: बहुत नहीं, भगवान शंकर आज हमारा यज्ञ पूरा हुआ, हमें छुट्टी तो दे, हमें छुट्टी दो। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत
3: दादा।
4: जगदीशपुर के महल की एक एक ईंट, यहाँ के हरी भरी खेत, कल कल नादनी गंगा की प्रखर धारा और भारत का शीतल पवन युग युग तक इस देश की संतान को इस वृद्ध की वीरता के गीत सुनाया करेंगे। आइए हम और आप इस महान वीर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
5: मगर किया

अमर कुमार सिंह को सलाम। तो सुधी जन गुरजन ध्यान लगा के सुन ले कहानी जी।

यह था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें पहले आपने बातचीत सुनी वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से, और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपने सुने नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश, जिसका निर्देशन किया अभय सिन्हा ने जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजिता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम, हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है, मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए हैं, अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुवासी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएं ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें, बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई हैं वो, अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं गुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ। ठीक है बाबा आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई, बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ, अभी अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का, मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ, नए चेहरे जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे। पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे। एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी बौचक्की होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे। आज से पहले न कभी एक दूसरे को देखा और न ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी। कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसी उठपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई। लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती हैं। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतर आया है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं। अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नई नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूं, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फकते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया। सपना और माँ, मैं कहीं खोया हूँ। इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झिझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं।

कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया? मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर यह महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया, पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया, माँ अब भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ। सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगाकर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई है, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है, ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए, मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया है। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा, हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझकर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं, मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती है यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है। मेरा मन भी लगा रहता मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी भी देखभाल करते हैं माँ के साथ साथ। कितनी लकी है अनु, माँ के पास है, केवल मैं ही। इस बार दिल्ली से लौटने के बाद सपना के घर पहली बार गया अकेले, भावना को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आई मेरे साथ। मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, खूब प्यार से बातें की, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा। जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे, हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा कोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता। सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है और दो ना, कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है। आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना। तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा।
माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी। बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ उस समय अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ। दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है। लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैं चीहूँ उठा। वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ। माँ होती तो कहती, देख प्रेमू, रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजिता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई। देखा, बुआ जोर जोर से रो रही, पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक, रंजिता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई। समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई। मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है। मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की। अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजिता की माँ को बुला ला, उनके लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो माँ, मुझे नहीं जाना रंजिता के घर, कॉलेज को देर हो रही। नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम, भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज। बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है, जाओ प्रियम, माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ हैं, मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई। मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ। सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ घिर आई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई, स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं। मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तरकती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उष्मा से भर उठी। वजह से धन्यवाद।

वक्त बहुत कम है पास मेरे, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। वो जख्म जो अपनों ने दिए, उन्हें भरना अभी बाकी है। चीख चीख कर हमारी धरती और हमारा पर्यावरण हमसे यही कह रहा है। नमस्कार, सुन रहे हैं आप 90.8 रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं पूर्वी, और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर हम बात करेंगे पर्यावरण पर, गौर करेंगे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर और चिंतन करेंगे उनके कुछ संभवतः समाधानों पर। साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनको सुन के आप ना सिर्फ आश्चर्यचकित रह जाएंगे बल्कि एक गहरी सोच में भी पड़ जाएंगे। मनुष्य पर्यावरण की उपज होता है, अर्थात मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियां व्यापक रूप से प्रभावित करती रहती हैं। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एवं निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, किंतु जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से ज्यादा हो जाती है तो पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश हो जाता है, तो ये पर्यावरण प्राणियों के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। जब वातावरण प्रदूषित हो तभी कह सकते हैं कि हवा धूल धुएं से युक्त है। तो मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण में और भी किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी उससे पहले सुनिए ये गीत।

इस तरह हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकृति सदैव मनुष्य की सहचरी रही है, किंतु जब मनुष्य ने अपने हित के लिए प्रकृति का दोहन आरंभ किया तो कठिनाई उत्पन्न हो गई और अनेक दुष्परिणाम सामने आए। विश्व के देशों ने इस गंभीरता को समझा, अनेक सजग प्रयास आरंभ हुए और 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। समाज और वन एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इसका ध्यान रखें। विज्ञान की बढ़ती शक्ति के बल पर हम खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं और अपने ही विनाश का कारण बन रहे हैं। समस्त मानव जाति को बचाने के लिए आज आवश्यकता है प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझने की, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की। मनुष्यता को बचाया इसी तरह से जा सकता है। पर्यावरण की कहानी मैं आपको सुनाते रहूंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए ये गीत।

रेडियो आजाद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और हम बात कर रहे हैं पर्यावरण में आने वाली समस्याओं की। पहली समस्या थी प्रदूषण। दूसरी बड़ी समस्या है बढ़ती जनसंख्या, यानी कि ज्यादा लोग और कम पड़ते संसाधन। आजकल यही हो रहा है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और साधन सीमित हैं, जिससे कि कई लोगों को बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने परिवारों को सीमित रखें ताकि सबको सारे तरह के साधन उपलब्ध हो सकें। तीसरी समस्या है विनाशकारी विकास, एक ऐसा विकास जो अर्थ का अनर्थ कर रहा है। हम सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास हर प्राकृतिक चीज का कृत्रिम विकल्प है। आज हम महंगे से महंगे घरों में रहते हैं, आलीशान ऑफिसेज में बैठते हैं, एसी का आनंद लेते हैं, वगैरह वगैरह। पर इसकी कीमत क्या है? हमारे पेड़, हमारी भूमि, हमारी वायु, कुल मिलाकर हमारा पूरा पर्यावरण। चौथी समस्या जो सामने आई है वो है ओजोन लेयर को क्षति पहुंचना। ओजोन लेयर में बड़े बड़े पैचेस हो गए हैं, यानी कि होल हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट धरती पर पड़ने लगी हैं, और इसके कारण है हमारा एसी चलाना, एरिएटेड ड्रिंक्स पीना और एरोसॉल स्प्रेज यूज करना। यही एक वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो चुकी है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अब आ चुका है। इसकी वजह से गर्मी बढ़ती जाएगी, बर्फ पिघलती जाएगी और हर जगह का तापमान, जैसा कि आप भी नोटिस कर रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है। पांचवी समस्या है हथियार उत्पादन। बारूद, बंदूक, गोले और सारे ही परमाणु हथियार पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनकी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि बड़े बड़े युद्ध में इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर विश्व में शांति बनी रहे तो पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। एक और समस्या जो सामने आई है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। हम कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ही कठिन है और ये एक तरह से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। अगली समस्या है प्लास्टिक का उपयोग। हम हर चीज में, पॉलिथीन हो, कैप हो या कोई डब्बा ही हो, प्लास्टिक का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो इससे बनी कोई भी चीज ना तो आसानी से खत्म होती है और ना ही दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है। तो ये सारी थी कुछ मेजर समस्याएं। हम आपको बताएंगे कि इनके क्या नतीजे हैं और इनका क्या समाधान हो सकता है।

दोस्तों आपका स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद हिंद। अब तक हम बात कर रहे थे पर्यावरण की समस्याओं पर, और अब गौर करते हैं कि इन समस्याओं की वजह से हम पर क्या बुरे असर हो रहे हैं। सुनामी, हरिकेन, कैटरीना जैसे कई तूफान हैं जो कि इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आजकल आम तौर पर और बहुत सारी जगह आने लगा है। इसका भी यही कारण है कि हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो धरती की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कैंसर, टीबी, स्किन एलर्जीज, फूड पॉइजनिंग इत्यादि, ये सब इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा कीटाणु भर गए हैं, और इसकी भी यही वजह है कि पर्यावरण संतुलित नहीं है। तो ये थे कुछ समस्याएं और उनसे उत्पन्न होने वाले बुरे असर, और अब इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है इस पे थोड़ा चिंतन करते हैं। सबसे पहला समाधान ये है कि प्रदूषण को अपने स्तर पर कम करने की हम सबको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। खाने को बर्बाद न करें, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे फल, छाया, अच्छी हवा और अनगिनत उपहार हमें मिल सकेंगे। बिजली का अनावश्यक उपयोग न करें, बड़ी मुश्किल से इसका उत्पादन हो पाता है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ये कई तरह के प्रदूषण रोक सकता है। परमाणु उपकरण जरूरत के लिए उपयोग करें, युद्ध के लिए नहीं। ये धरती आपकी है, इसे अपना मानिए और इसकी जरूरतों को समझते हुए अपने कदम उठाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ना पीने के लिए पानी होगा, ना खाने के लिए खाना। जानवरों की फोटो किताब में होंगे और किताबें भी क्या बन पाएंगी, क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो कागज कैसे बनेगा। जरा सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहेंगे? एकमात्र उपाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां हम धरती के संसाधनों का इस प्रेम और इस ध्यान के साथ उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जिंदगी जी सकें। यह धरती हमें विरासत में नहीं मिली, यह पूरा पर्यावरण एक अमानत है जो हमें किसी ने सौंपा था गुजरे कल में, और हम आने वाले कल में सौंपेंगे किसी और को। और जाते जाते ये नारे याद रखिए, शायद कुछ ध्यान आपका कल को पर्यावरण का कुछ अंश बचा पाए। जल है तो कल है, पेड़ लगाओ चारों ओर, तुम करो हरियाली, क्योंकि यही लाएगी खुशहाली। मत आगे बढ़ो ऐसे कि भविष्य खत्म हो जाए, बढ़ो तो ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां भी दुआएं दे जाएं।

ये था आज का कार्यक्रम जहां हमने बात की पर्यावरण की, इसमें क्या समस्याएं चल रही हैं और इनके क्या समाधान हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर हम सब ये वचन लें कि धरती और पर्यावरण को बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश जरूर करेंगे। मैं हूँ पूर्वी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में रोज की तरह हम लेकर आए हैं आजादी के परवानों की शौर्य गाथाएं और भारतीय इतिहास के जाने पहचाने और अनजाने पहलू।
2: तारीख इतिहास में सभी कुछ होता तो है, पर कभी वो लोकमानस में अंकित हो पाता है और कभी नहीं। यानी कुछ लोग और घटनाएं अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं और कुछ गुमनामी में ही रह जाती हैं।
1: हाँ, पर इतिहास जो लोग और घटनाएं लोकप्रिय हो जाते हैं उनमें कुछ तो खास बात होती होगी ना, तभी उनके बारे में सभी जानते हैं।
2: बिल्कुल। अब जैसे इसी बात को ले लो कि ढांचे में बैठी बुराई से लड़ने के लिए ढांचे के ठेकेदारों से बैर मोल लेना और फिर कानून के आगे आत्मसमर्पण कर देना।
1: क्या? देखो इतिहास, मुझे तुम्हारा कहा हुआ एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कहे जा रहे हो, ढांचा, ठेकेदार, आत्मसमर्पण। अरे साफ साफ कहो ना किसकी बात कर रहे हो।
2: अच्छा बाबा समझाता हूँ। तुमने अमर शहीद खुदीराम बोस का नाम सुना है?
1: हाँ नाम तो सुना है, पर मुझे उनके विषय में बहुत जानकारी नहीं है। हाँ पर उनको फांसी की सजा हुई थी ये जानती हूँ।
2: ठीक, ये बता सकती हो कि उनको फांसी की सजा क्यों हुई थी?
1: अरे अब सब मैं ही बता दूंगी, तो तुम श्रोताओं को उनकी रोचक क्रांति कथा कैसे सुनाओगे?
2: हाँ तो श्रोताओं के साथ साथ तुम भी सुनो। वे क्रांति भूमि बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले थे, पर जीवन का ज्यादातर समय कलकत्ता में ही गुजरा। कलकत्ता के मानिक तल्ला मोहल्ला के बागी बगीचे के इर्द गिर्द ही वे बड़े हुए।
1: एक मिनट, ये बागी बगीचा क्या बला है? बगीचों के नाम तो कानन कुंज, पुष्प वाटिका इस तरह के होते हैं, ये बागी बगीचा क्या नाम हुआ?
2: अरे इसके पीछे भी एक कहानी है।
1: फिर तो तुम्हें सुनानी ही होगी।
2: ये बाग डॉक्टर कृष्ण धन के घर के अहाते में था। यहाँ कई फलों के पेड़ भी थे। कृष्ण धन जी के छोटे बेटे बालेंद्र घोष ने बगीचे को बागी युवकों के नाम लिख दिया। यहाँ ये युवक आश्रम के तौर से रहते थे। बाद में तो यहाँ बम बनाने के कारखाने भी चालू हो गए।
1: अच्छा तो सभी क्रांतिकारियों का अड्डा था ये।
2: बिल्कुल। और यहीं नवयुवक खुदीराम बोस की मुलाकात प्रफुल्ल चाकी से हुई।
3: आओ आओ तुम्हारा परिचय करा दूं।
4: जी
3: खुदी, ये प्रफुल्ल चाकी।
4: नमस्कार।
3: हमारे आश्रम के पुराने सदस्य, आश्रम की क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
4: अरे वाह।
3: और प्रफुल्ल, ये खुदीराम बोस हैं।
4: अच्छा, नमस्कार।
3: अपने हेमचंद दास कानूनगो के शहर मिदनापुर के हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, और यहाँ कलकत्ता में राजा नवकृष्ण स्ट्रीट में हेमचंद जी के मकान में रह रहे हैं।
5: अरे वाह।
3: आज से ये तुम्हारे साथ ही काम करेंगे।
4: नमस्कार। पर उस दिन तो अरविंद जी ने हमें अलग नामों से मिलाया था।
3: तुम्हारा परेशान होना स्वाभाविक है। क्या है कि हम क्रांतिकारियों को अपना असली नाम बताने की प्रथा नहीं है। अब तुम नए नए हमारे दल में सम्मिलित हुए हो, इसलिए अरविंद घोष जी ने तुम्हें हेरन सरकार और प्रफुल्ल चाकी को दिनेश चंद्र राय के नाम से मिलाया।
4: अच्छा, अच्छा।
3: पर अब जब तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है तो एक दूसरे का सही परिचय देना जरूरी हो गया था।
4: जी जी,
3: है ना। इसलिए खैर मैं चलता हूँ, शेष जो कुछ भी जानना समझना है आपस में जान समझ लेना। नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा असली नाम खुदीराम बोस है और तुम मिदनापुर के हो और यहाँ हेमचंद दास जी के मकान में रह रहे हो।
4: उस औपचारिक भेंट के बाद हम आपस में मिले भी तो नहीं ना?
5: हाँ, यहाँ आश्रम में सभी को निश्चित काम दे दिए गए हैं।
4: जी जी।
5: बिना काम कोई किसी से नहीं मिलता।
4: मेरा जन्म मिदनापुर के हबीपुर में हुआ।
5: अच्छा।
4: माता लक्ष्मी देवी जब मैं सिर्फ 1.5 वर्ष का था स्वर्ग सिधार गई और इसके 1 वर्ष बाद सिर से पिता त्रिलोकीनाथ बोस का साया भी उठ गया।
5: फिर आपका पालन पोषण?
4: मेरा पालन पोषण और शिक्षा बड़ी बहन अपरूपा देवी के घर हुई। अनाथ बालक, फिर चंचल स्वभाव, केवल 2 दर्जे तक ही पढ़ पाया मैं।
5: क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
4: जब मैं तरुण अवस्था में प्रवेश किया उस समय बंगाल लॉर्ड कर्जन की बंग भंग नीति और विभाजन की आग में झुलसने लगा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया हुआ था। इसके दमन के लिए गिरफ्तारियां, जेल यात्राएं, यातनाएं, सजाएं, जुर्माने और बंगालियों को अपमानित करने की घटनाओं ने सभी युवकों का मेरे मन भी झंक दिया। मिस दमकर के विरुद्ध बदले की भावना जन्म लिया।
5: अच्छा, फिर बारिंद्र घोष जी संपन्न कैसे आए?
4: सन 1902 में मिदनापुर क्रांतिकारी बनाया गया। राजनारायण बोस के सुपुत्र सतीन्द्रनाथ बोस के प्रयत्नों से ये दल बना। बारिंद्र जी के बड़े भाई अरविंद जी ने इस क्रांतिकारी समिति की नींव डाली। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा भागिनी निवेदिता भी वहाँ मौजूद थी। वो गांव-गांव घूमकर क्रांतिकारी समिति खुलवाने में मदद कर रही थी। हेमचंद दास कानूनगो के साथ मैं भी उस आयोजन में गया था। हेमचंद जी से मैं मिलता रहता था, वो मेरे क्रांतिकारी विचारों से परिचित थे। यही मेरी मुलाकात क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बोस से हुई थी। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, मुझे यहाँ बारिंद्र जी की टोली में दीक्षित होने के लिए भेज दिया। तब से मैं यहीं पर हूँ। फिलहाल हेमचंद जी के मकान में ही रह रहा हूँ।
5: मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं है। जब से होश संभाला बारिंद्र जी के साथ हूँ।
4: अच्छा।
5: नुपुर रोड के इस मानिक टल्ला बागीचे में जब बारिंद्र जी ने ये आश्रम शुरू किया हम 5 छात्र थे।
4: अच्छा।
5: बहुत दौड़ धूप के बाद संख्या 15 तक पहुंची।
4: अरे वाह।
5: उस समय जीवन यापन के लिए हम लोगों ने यहाँ सब्जियां उगाना शुरू किया। फिर आम, केले, अमरूद, जामुन आदि के पेड़ तो थे ही, इन्हें बेचकर ही काम चलने लगा।
4: वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे आपके साथ रखा गया है तो ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा।
5: हाँ, आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि इस बागीचे में बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दरअसल हेमचंद्र दास जी अपनी जमीन जायदाद बेचकर फ्रांस चले गए बम बनाने का प्रशिक्षण लेने। वहाँ पेरिस में पंडित श्याम जी वर्मा और बैरिस्टर सरदार सिंह जी राणा के सहयोग से बम बनाना सीखा। वहाँ उनके साथी थे बम्बई के T.M. बापट और हैदराबाद के मिर्जा अब्बास। भारत लौटकर हेमचंद जी ने यहाँ इस बागीचे में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। एक बात बता दूं, मैं 3 बार बम विस्फोटों में शामिल रहा हूँ। 2 बार हम छोटे लाल फूलर को बम से उड़ाने गए और तीसरा विस्फोट मैंने खुद जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए अपनी मर्जी से किया था, पर हम सफल नहीं हो पाए।
4: अब मैं समझा, यानी अब मैं आपके साथ बम विस्फोट दल का सदस्य बन गया हूँ।
5: तुमने बिल्कुल ठीक समझा। खुद हेमचंद्र जी का सुझाव था कि तुम्हें इस दल में शामिल कर लिया जाए। पहली बार जब फूलर पर हमला किया गया था तब मैं बारिंद्र घोष और हेमचंद जी का साथी था। अब से तुम मेरे साथी रहोगे।
4: अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, कि तुम जज किंग फोर्ड को क्यों मारना चाहते हो?
5: क्योंकि मुझे वारिंद्र जी ने बताया कि इसी ने मेरे पिता को क्रांतिकारी होने के शक में बिना सबूत फांसी की सजा दी थी।
4: अच्छा।
5: इस निजी कारण के अलावा इस जज ने क्रांतिकारियों के दमन की काली आंधी चला रखी है। बंगाल में राष्ट्रीयता जगाने वाले सभी पत्रों से संबंधित सभी लोगों को इसने जेलों में सड़ने को मजबूर कर दिया है। युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति आदि सभी पत्रों के संपादकों, मुद्रकों को सजा सुनाने वाला जज यही है। कृष्ण चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बाधव, भूपेंद्र नाथ दत्त सभी इसके शिकार रहे हैं। इसीलिए हमारी परिषद ने इसे खत्म करने का निर्णय लिया है।
4: हाँ, तो मतलब मेरा पहला निशाना किंग फोर्ड होगा।
5: हाँ, हम दोनों को यही काम सौंपा गया है।
4: ठीक है।
2: खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पूरे कलकत्ता में किंग्सफोर्ड को ढूंढते रहे, पर उसका कोई पता नहीं चला। आखिर वारेंद्र घोष ने उन्हें सूचना दी।
3: खुदी और चाकी, तुम्हें मुजफ्फरपुर जाना है।
5: ठीक है।
4: यानी हमारा शिकार मुजफ्फरपुर पहुंच गया है।
3: हाँ खुदी, किंग्सफोर्ड पर हुए हमले से पहले ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई है। कलकत्ते में किंग्सफोर्ड के जीवन के लिए खतरा मानकर उसे जिला सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया
5: है। बारिन जी,
3: जी
5: मुजफ्फरपुर में हमें कहाँ रहना है और क्या करना है?
3: अब तुम्हें करना क्या है तो तुम जानते हो, और रहना कहाँ है ये मैं बता देता हूँ।
5: ठीक है।
3: मुजफ्फरपुर में तुम लोग मेहता बोर्ड स्टेट की धर्मशाला में ठहरोगे।
5: ठीक है।
3: ठीक है। और वहाँ चाकी तुम अपना नाम दिनेश चंद्र राय लिखवाओगे।
5: ठीक है।
3: और खुदी वहाँ तुम्हारा नाम दुर्गा दत्त सेन होगा।
4: ठीक है।
3: एक बात और, वहाँ सबसे पहला काम होगा किंग्सफोर्ड की दिनचर्या पर नजर रखना।
5: ठीक है।
3: और फिर हमले के लिए सही समय का चुनाव करना। ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि वहाँ फोर्ट की सुरक्षा काफी कड़ी होगी, अतः तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी।
4: आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अपने उद्देश्य में कामयाब होकर लौटो।
4: वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम।
5: वंदे मातरम। वंदे मातरम।
1: फिर योजना सफल हुई?
2: योजना के अनुसार खुदीराम और चाकी दोनों मुजफ्फरपुर चले गए। वहां किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नजर जमा के बैठ गए। आखिर वो दिन भी आया जब उनके उद्देश्य पूरे होने लगे,
1: यानी सफलताएं मिलने लगी। उस अंग्रेज पर आक्रमण करने का मौका मिल गया क्या?
2: हाँ, 30 अप्रैल 1908 की अमावस की काली रात में, जब गुप्त अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, ऑफिसर क्लब के बाहर चाकी और खुदीराम हथियारों से लैस पेड़ के पीछे छिपके बैठे थे और किंग्सफोर्ड का इंतजार कर रहे थे।
1: अब इतने दिनों तक उसकी जासूसी करते रहने के बाद ये तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि उस समय किंग्सफोर्ड काली बग्घी में सवार क्लब के बाहर निकलेगा।
2: हाँ, और तभी एक काली बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम ने निशाना साधा और बम फेंका।
1: ओह, फिर?
2: एक जोरदार धमाका हुआ, बग्घी जल के राख हो गई, घोड़ों ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया, और खुदीराम और चाकी अपना संकल्प पूरा होते देख वहां से भाग निकले।
1: किंग्सफोर्ड तो मारा ही गया होगा, इतने घातक विस्फोट में कोई बच कैसे सकता है?
2: मारा तो तब जाता जब वो उस बग्घी में होता।
1: क्या मतलब?
2: मतलब ये, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी थी। दोनों उस विस्फोट में मारी गईं। कोचवान बुरी तरह घायल हो गया।
1: ओह, बड़ा बुरा हुआ। पर फिर तो पुलिस खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई होगी। क्या वे दोनों पकड़ में आए?
2: पुलिस ने पूरे मुजफ्फरपुर को घेर लिया, जगह जगह नाकाबंदी की और छापे पड़ने लगे। रेल की पटरियों के साथ साथ रात भर करीब 25 मील चलते रहने के बाद वे दोनों सुबह बैनी गांव पहुंच गए।
4: प्रफुल्लता, चारों ओर पुलिस चौकन्नी है, हम दोनों का साथ घूमना ठीक नहीं है। आप यहाँ आमों के बाग में बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ।
5: ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और पुलिस से बच के रहना।
4: अरे आप मेरी चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, मैं अभी आता हूँ।
5: ठीक है।
4: थोड़ा माहौल का जायजा भी लेता हूँ ताकि आगे की योजना बनाई जा सके।
5: संभल कर जाना।
4: जा।
2: खुदीराम जब मोदी की दुकान पर सामान लेने पहुंचे तो वहां दो सिपाही शिव प्रसाद और फतेह सिंह आपस में उन्हीं की रात वाली घटना की बातचीत कर रहे थे।
0: फतेह सिंह, तुमने सुना
4: क्या?
0: रात मुजफ्फरपुर में बागियों ने फिर वारदात की। यूरोपियन क्लब के बाहर बम विस्फोट हुआ है।
4: हाँ सुना, पर वारदात से पहले शाम को सुना है एसपी साहब द्वारा तैनात दो सिपाहियों ने दो अनजान लड़कों को यूरोपियन क्लब के बाहर घूमते हुए देखा था।
0: अच्छा,
4: और सिपाहियों ने उनका हुलिया भी बताया है, उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं।
0: यार हुलिया क्या बताया, यदि वो दोनों लड़के अपने हाथ लग जाए तो कसम से इंस्पेक्टर बनना तो पक्का है।
4: ठीक कहा तुमने, बताया है छरहरे बदन के दो लड़के हैं।
0: छरहरे बदन के?
4: हाँ, लंबाई होगी कोई 5.5 फीट।
0: 5.5 फीट?
4: वेशभूषा से बंगाली लगते हैं।
0: बंगाली?
4: कहते हैं उनका निशाना तो जज साहब किंग्सफोर्ड थे।
0: अच्छा,
4: पर गलती से मिसेस कैनेडी और उनकी लड़की मारी गई।
6: तो जालिम किंग्सफोर्ड नहीं मरा
4: है?
0: अबे क्या कहा तूने, कौन है तू?
4: साफ क्रांतिकारी दिखता है।
0: हाँ,
4: थकी शक्ल सूरत, दूर दूसरे बदन, वही कथकाठी, दबोच ले इसको, हिलने ना पाए।
0: खबरदार, छोड़ो, कोई चलाकी नहीं करना, नहीं तो रिवाल्वर की गोली भेजा फोड़ के बाहर निकल जाएगी। फतेह सिंह, तलाशी ले इसकी। फिकर मत कर, मैंने पकड़ लिया है इसको, दबोच के रखो।
4: मैं तलाशी लेता हूँ इसकी। अरे ये दो रिवाल्वर निकले इसके पास से।
0: रिवाल्वर?
4: एक लोडेड है।
0: लोडेड?
4: हाँ, और ये 30 कारतूस है। अच्छा हुआ तुमने इसे एकदम दबोच लिया, नहीं तो

0: चौरानर खुदीराम बोस एक खतरनाक क्रांतिकारी होता। भोली शक्ल और छोटी उम्र का दिखने वाला ये लड़का एक ब्रूटल किलर है। 30 अप्रैल 1908 की रात को इसने अपने साथी के साथ मिलकर यूरोपियन क्लब से आ रही बेकसूर और इनोसेंट लेडी मिसेस कैनेडी और उनकी डॉटर मिस कैनेडी का पम एक्सप्लोड कर ब्रूटल मर्डर किया है।
1: तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस होता?
0: शौरानर, मुख्य बारात से तो कोई एविडेंस नहीं मिला। उस दिन शाम को दो पुलिसमैन तहसीलदार खान और फौजदीन ने दो लड़कों को यूरोपियन क्लब के बाहर घूमते देखा था। उनका हुलिया उनके बताए हुलिये से मैच करता। फिर वेनी विलेज में जब ये अरेस्ट किया गया, उसके पास से दो रिवॉल्वर और 30 कारतूस बरामद किया गया है।
1: इसके साथी का क्या हुआ? कुर्दा पुलिस अरेस्ट है?
0: नो योर ऑनर, बट अभी अभी खबर मिला है कि ही कमिटेड सुसाइड। ये कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। नंदलाल बनर्जी नाम के दारोगा को उस पे शक हुआ। पूछताछ से बचने के लिए ये प्लेटफार्म पर उतरकर भागना चाह रहा था। दारोगा बनर्जी ने पहले ही पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आर्मस्ट्रांग के ऑर्डर से उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लेटफार्म पे पुलिस फोर्स ने उसे घेर लिया। उसने दारोगा पर फायर किया, पर दारोगा ने खुद को बचा लिया। जब इसके साथी ने देखा कि इसका पकड़ा जाना तय है, तो इसने खुद को गोली मार ली। एक फायर अपने फॉरहेड पे किया और दूसरा छाती पे।
1: क्या उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ?
0: शौरानर, उसका नाम प्रफुल चाकी आइडेंटिफाई हुआ है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका फोटो और कटा से लेके दारोगा अभी आता होता। ही इज हियर योर ऑनर।
1: अपराधी को ऑर्डर दिया जाता है कि कटे शेर को देखकर बताए, क्या ये इसका साथी है?
2: जी योर ऑनर, ये मेरा साथी है, पर ये बेकसूर था।
1: क्या इसका नेम प्रफुल्ल चाकी है?
2: जी योर ऑनर।
1: मिस्टर एडवोकेट, तुमने 7 डेज में अपराधी से कोई 55 क्वेश्चन किया, पर तुम ये प्रूव नहीं कर पाया कि 13 अप्रैल 1908 की रात को जो बम ब्लास्ट हुआ वो इसने किया।
0: एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि इसका संबंध कलकत्ता के 32 नंबर मोरारी पुकार रोड पर मौजूद मानिक तल्ला मोहल्ले के उस बागीचे से है जहां बम बनाने का कारखाना है।
1: इसका क्या मतलब?
0: मतलब ये योर ऑनर, 30 अप्रैल को यूरोपियन क्लब के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसे टेस्ट करने पर पता चला ये बम उसी बगीचे में मौजूद बम बनाने के कारखाने में बनाया गया था। पुलिस ने छापा मारकर वहां से 9 रिवॉल्वर, कई बम, डायनामाइट, बम का शेल, लेची, पिन, कॉपर, प्रिफिक एसिड, बम शेल का मोल्डिंग मशीन, 3 राइफल, 2 देसी बंदूक और भट्टी जब्त की है। इसके साथ ही कुछ और भी अरेस्ट हुआ है, जिसमें बारिंद घोष, उल्लासकर भट्ट, विभूति भूषण सरकार, नालिनी खान खूबटा, विजय कुमार नाग, शचिंद्र नाथ सेन, नरेंद्र बख्शी और हेमेंद्र नाथ घोष को शामिल होता।
1: अपराधी, तुम बताओ, क्या तुम्हारा एसोसिएशन इस बगीचे के बम फैक्ट्री से है?
2: योर ऑनर, ना तो आपके वकील साहब ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा हाथ 30 अप्रैल के बम कांड में था, और ना ही ये सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा संबंध 32 नंबर मुरारी पुकुर रोड कलकत्ता के उस बगीचे से है जिसमें बम कारखाना है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि वो बम ब्लास्ट मैंने ही किया था और मेरा संबंध कलकत्ता के बम कारखाने वाले बगीचे से रहा है।
1: अपराधी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। ही शुड बी हैंग टिल डेथ। हम तुमसे पूछता, फांसी की सजा सुन के तुमको कोई दुख नहीं?
2: दो बातों का दुख है योर ऑनर। एक तो ये कि किंग्स फोर्ड बच गया, और व्यर्थ में ही दो महिलाओं की जान चली गई। दूसरी बात ये, योर ऑनर, जब मेरी बहन अपरूपा दीदी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं उनका एकमात्र भाई था। बस योर ऑनर, बस।
3: अगस्त 1908 सुबह 6 बजे इन्हें फांसी दे दी गई।
4: शहीद की शव यात्रा का नजारा बड़ा हृदय विदारक होता है। आंखों में जब आंसुओं के साथ फक्र चमकता है, तब जैसे समय भी रुककर देश पे मर मिटने वालों को नमन करता है।
3: खुदीराम की शव यात्रा में इतने फूल बरसे कि शैया एक फूलों का बिछौना बन गई। अमर शहीद को श्रद्धांजलि में मिली ढेरों दुआएं और जो जीते जी उन्हें कांटे मिले, वो मौत के बाद फूलों में बदल गए।
4: उनके कभी न हारने वाले जज्बे को तहे दिल से आदरांजलि। अनुपम।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। नाटक लिया गया था स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जननायक से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद सुनिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: स्वाधीनता संग्राम और देशभक्ति को पूर्णता समर्पित देश का पहला रेडियो चैनल।
2: स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रणबांकुरों की वीर गाथा,
1: देशभक्ति के गीत सुनाता
2: रेडियो आजाद हिंद,
1: देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद सुनते रहिए।
3: फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से

0: जिसके संतूर से पर्वत बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और आकाश राग में ढल जाता था। आज का विषय है संतूर सम्राट शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोक से उठाकर शास्त्रीय आकाश तक पहुंचाने वाले महान संगीतकार।
1: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कला को नहीं चुनते, कला उन्हें चुनती है। उनका जीवन किसी अभ्यास की तरह नहीं, किसी साधना की तरह होता है। वे मंच पर नहीं चढ़ते, वे मंच बन जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ऐसे ही कलाकार थे, जिनके लिए संगीत न पेशा था न प्रदर्शन, बल्कि एक आजीवन तपस्या।
0: भारत के मानचित्र में एक भूखंड ऐसा भी है जहां धरती केवल मिट्टी का विस्तार नहीं होती, वहां वो साधना का स्वरूप बन जाती है। जहां पर्वत मौन होकर भी उपदेश देते हैं और नदियां बहते बहते राग रचती हैं। जहां सुबह की हवा सिर्फ शीतल नहीं होती, वो अपने साथ स्वरों की स्मृति लाती है। और जहां संध्या की निस्तब्धता में ताल अदृश्य होकर भी स्पष्ट सुनाई देती है, वो धरती है जम्मू कश्मीर।
1: साथियों, 10 जनवरी 1938, जम्मू शहर, वो नगर जो केवल भौगोलिक बिंदु नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है, जहां मैदान पहाड़ों से संवाद करते हैं। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके लिए समय ने पहले ही अपनी भूमिका तय कर दी थी। एक बालक जो आगे चलकर स्वरों का यात्री बना और जिसकी साधना ने एक लोकवाद्य को शास्त्र का सिंहासन दिलाया। उस बालक का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा।
0: वो जन्म से ही किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थे। भले ही उनका जन्म जम्मू की धरती पर हुआ, पर उनकी चेतना कश्मीर की शांत घाटियों में अनविरत विचरण करती रही। उनके भीतर हिमालय का धैर्य था, झेलम की निरंतरता थी और घाटियों का वो मौन था जो बोलने से पहले अनुभव करता है। यही कारण था कि जब संतूर के 100 तार उनकी उंगलियों में स्पंदित हुए तो वह केवल संगीत नहीं था, कश्मीर की आत्मा थी जो स्वर बनकर विश्व से संवाद कर रही थी।
1: जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही कथा कहने लगे, तब समझिए संगीत बोल रहा है। ये कथा ना किसी राजा की है, ना किसी युद्ध की, ये कथा है एक साधक की जिसने 100 तारों में अपनी आत्मा बांध दी। ये कथा है उस वाद्य की जिसे कभी लोक सीमाओं में बांध दिया गया था और एक मनुष्य ने उसे शास्त्र का आकाश दे दिया। उस साधक का नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा।
0: श्रोताओं, उनके पिता थे पंडित उमा दत्त शर्मा। बनारस की पवित्र संगीत धारा में उन्होंने अपने गुरु पंडित रामदास जी से शिक्षा पाई थी। ध्रुपद और ख्याल उनकी साधना के 2 स्तंभ थे और तबला तथा पखावज उनके हाथों में केवल वाद्य नहीं बल्कि समय को नापने वाले साधन बन जाते थे। उनकी गायकी में बनारस घराने की गंभीरता थी, वो ठहराव, वो गहराई जो स्वर को सजावट नहीं अर्थ देती है। ऐसा कहा जाता है जब वे रियाज में बैठते तो स्वर पहले कमरे में उतरते और फिर धीरे धीरे मन में। उस घर का वातावरण साधारण नहीं था। वहां सुबह सूरज की पहली किरण से पहले रियाज शुरू हो जाता और रात तब समाप्त होती जब स्वर थक कर मौन में विश्राम करते। वो घर सोता नहीं था, वो सुनता था। दीवारें ताल पहचानती थीं और आंगन रागों का साक्षी था। उसी वातावरण में शिव कुमार शर्मा बड़े हुए जहां संगीत सिखाया नहीं जाता था, जिया जाता था।
1: जी हाँ, माता का हृदय भी संगीत से भरा हुआ था, कोमल, संवेदनशील और स्वप्नदर्शी। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं और उनके भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ आकांक्षा पलती रहती थी। उनकी आंखों में एक सपना था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई एक दिन संतूर जैसे लोकवाद्य पर भी उसी गरिमा के साथ गूंजे। शायद वही सपना था जो आगे चलकर शिव कुमार शर्मा की साधना में बदल गया। पिता ने अनुशासन दिया, गुरु ने दिशा दी और माँ ने उस यात्रा को अर्थ, और यही तीनों मिलकर एक ऐसे संगीतज्ञ को गढ़ रहे थे जिसकी कथा आगे चलकर संतूर की तरंग में लिखी जानी थी।
0: शिव कुमार शर्मा ने बचपन में कभी संगीत को अलग विषय की तरह नहीं देखा, वो तो उनके जीवन का स्वाभाविक प्रवाह था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव कुमार सुरों से खेलते। जब दूसरे बच्चे कहानियां सुनते, वे आलाप सुनते। उनके लिए संगीत सीखा नहीं जाता था, वो देखा, सुना और जिया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया। कोई दबाव नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उमादत्त शर्मा जानते थे कि संगीत को थोपने से नहीं, बोने से फल मिलता है।
1: स्कूल की पढ़ाई भी चली, किताबें भी आई, लेकिन शिव कुमार का मन कक्षा की 4 दीवारों में नहीं टिक पाता था। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उन्हें समझ आते थे, पर हवा में तैरते हुए सुर उन्हें ज्यादा सच लगते थे। शिक्षक पढ़ाते और खिड़की से आती हवा किसी अनजाने राग का संकेत दे जाती। पढ़ाई जरूरी थी, पर आत्मा का रास्ता कहीं और था, और आत्मा का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं गुजरता।
0: जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र तक शिव कुमार जम्मू के स्थानीय रेडियो स्टेशन पर गायन और तबला प्रस्तुत करने लगे थे। रेडियो की तरंगों पर उनका स्वर जाना इस बात का संकेत था कि ये यात्रा छोटी नहीं होगी, लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशोर अवस्था में पिता ने उन्हें संतूर से परिचित कराया। वही संतूर जो कश्मीर की सूफी परंपरा में गूंजता तो था, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर अभी तक अजनबी था। लगभग 100 तारों वाला ये वाद्य सुंदर तो था, लेकिन जिद्दी भी था। स्थिर स्वर होने के कारण लोग मानते थे कि ये रागों की बारीकियों के लिए उपयुक्त नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खुद पंडित शिव कुमार शर्मा का कहना है, असल में संतूर भारत का सबसे प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसे संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 100 तार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया।
1: पिता की इच्छा और उनकी कामना शिव कुमार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार ने संतूर को अपनी साधना का केंद्र बना लिया। ये निर्णय आसान नहीं था। उंगलियां दुखती थीं, तार उलझते थे और हर राग एक नई चुनौती लेकर आता था। कई बार निराशा हुई, लेकिन पिता का विश्वास, माँ का सपना और भीतर की पुकार, तीनों मिलकर उन्हें हर बार रियाज की चौकी पर वापस बैठा देते।
0: शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया और अपने चिंतन तथा प्रयोगों से इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की थी, जिससे शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णता सक्षम वाद्य बन गया। शिव कुमार शर्मा जी को ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी आदि की शिक्षा भी मिली थी। श्रोताओं, बचपन की गलियों से निकलकर शिव कुमार अब जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। माता पिता अब केवल जीवन देने वाले नहीं थे, वे गुरु बन चुके थे, जिनकी आंखों में आशीर्वाद था और जिनके मौन में प्रार्थना बसती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। स्वरों की उड़ान किसी और, बड़े आकाश की मांग करने लगी थी। भीतर कहीं एहसास गहराने लगा था कि अब केवल सीखा हुआ दोहराने का समय नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने का समय आ गया है। इसी परिवर्तन की पुकार में नई राह खोजने की आस लेकर शिव कुमार ने अपने संतूर को साक्षी बनाया और बंबई की ओर कदम बढ़ा दिए। ये केवल एक शहर की यात्रा नहीं थी, ये समय के साथ चलने का साहस था, जहां भविष्य इंतजार में नहीं परीक्षा में मिला करता है और जहां हर कलाकार को स्वयं को बार बार सिद्ध करना पड़ता है।
1: 1955 में जब शिव कुमार शर्मा पहली बार मुंबई पहुंचे, तो ये यात्रा उतनी उजली नहीं थी जितनी बाद में इतिहास में दिखाई देती है। उस समय बम्बई केवल अवसरों का शहर नहीं था, वो नए कलाकारों के लिए एक कठोर कसौटी थी, जहां हर दिन कोई ना कोई सपना टूटता था और कोई जिद जन्म लेती थी। शिव कुमार अपने संतूर के साथ इस शहर में आए, लेकिन शहर ने उन्हें तुरंत अपनाया नहीं। कुछ मंच मिले, कुछ लोगों ने सुना, पर स्वीकृति नहीं मिली जिसकी आशा लेकर वो आए थे। भीड़ थी, संगीत था, लेकिन पहचान नहीं थी। धीरे धीरे निराशा ने भी दस्तक दी और कुछ समय बाद मन और हालात दोनों थक गए। वे लौट आए जम्मू, खाली हाथ नहीं, लेकिन भारी मन के साथ।
0: घर लौटने पर पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने बेटे के चेहरे पर वो चुप्पी देखी जो हार की नहीं उलझन की होती है। पिता ने व्यावहारिक स्वर में कहा, ऐसे गुजारा नहीं होगा, रेडियो में नौकरी कर लो, संगीत भी रहेगा और जीवन भी संभल जाएगा। ये सलाह अनुभव से उपजी थी, डर से नहीं, लेकिन शिव कुमार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी मैं किसी की गुलामी नहीं कर पाऊंगा। संगीत अगर करूंगा तो अपने दम पर। मैं फिर बंबई जाऊंगा और मेहनत करूंगा। उस क्षण पिता समझ गए कि यह जिद नहीं है, स्वभाव है, और स्वभाव को बदला नहीं जाता, केवल आशीर्वाद दिया जाता है।
1: दूसरी बार बंबई जाना पहले से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन भीतर कहीं अधिक स्पष्टता थी। अब वे कलाकार नहीं थे, साधक थे। इस दूसरी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से, भारतीय सिनेमा के उस स्तंभ से, जिसकी दृष्टि संगीत को केवल सजावट नहीं आत्मा मानती थी। वी शांताराम ने शिव कुमार के संतूर में कुछ अलग सुना। उन्होंने उन्हें अपनी प्रसिद्ध झनक झनक बाजे पायलिया फिल्म से जुड़े संगीतकार वसंत देसाई के पास भेजा। वसंत देसाई ने उनसे कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि एक छोटा सा संगीत टुकड़ा बना कर दिखाइए।
0: और यही वो छोटा सा अवसर, वही क्षण शिव कुमार शर्मा के बंबई के फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बन गया। संतूर, जो अब तक शास्त्रीय मंचों पर अपनी जगह तलाश रहा था, पहली बार सिनेमा की दुनिया में धीरे से प्रवेश कर रहा था। ये शुरुआत थी शोर से नहीं, सौम्यता से। यहीं से वो यात्रा चली जो आगे चलकर शिव हरि जैसी ऐतिहासिक जुगलबंदी तक पहुंची और सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर जैसी फिल्मों के अमर संगीत में ढल गई।
1: संघर्ष की राग रात्रि बीत चुकी थी। साधना ने जब स्थिर सुर को थामा, तब जीवन के तानपुरे पर मंगल बेला की पहली तान फूटी। 1966 में शिव कुमार शर्मा के जीवन में स्थिरता का एक मधुर अध्याय जुड़ा। उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि एक कलाकार और उसकी साधना के बीच बनी गहरी समझ का संबंध था। कलाकार का पहला प्रेम उसका संगीत होता है, और मनोरमा जी ने इस सत्य को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाया जहां समय रियाज का होता है और प्रतीक्षा प्रेम की भाषा बोलती है। इस दाम्पत्य में शब्द कम थे पर भरोसा गहरा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। पुत्र राहुल और रोहित का आगमन हुआ। उनके पुत्रों रोहित और राहुल ने पिता की साधना को बहुत पास से देखा, पर मंच और संतूर की पुकार राहुल शर्मा के भीतर सबसे गहरी उतर गई। पिता ने बेटे पर संगीत थोपा नहीं, बस उसे सुरों के पास बैठने दिया, और वहीं बैठना, वही सुनना एक दिन संतूर बन गया। राहुल में शिव कुमार शर्मा ने उसे संगीत लौ की झलक देखी जो कभी उनके भीतर जली थी।
0: आगे चलकर शिव कुमार शर्मा ने अपने पुत्र राहुल शर्मा को अपना शिष्य बनाया और संतूर वादन में पारंगत किया, और संतूर की साधना पिता से पुत्र तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। जिस दिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने पहली बार राहुल के साथ मंच साझा किया, वो क्षण उनके जीवन का सबसे भावुक लम्हा था। श्रोताओं को शायद एक जुगलबंदी सुनाई दी, पर पिता के हृदय में वो पल था जब गुरु और पिता दोनों एक साथ खड़े थे, पर आंखें नम थीं।
1: जब समय आगे बढ़ चुका था, संतूर को पहचान मिल चुकी थी, तब जीवन ने पंडित शिव कुमार शर्मा को वो सुख दिया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है, अपने ही सुरों को अगली पीढ़ी में जीवित देखना। पिता और पुत्र की ये जोड़ी वर्ष 1996 से साथ साथ संतूर वादन में जुगलबंदी करते आ रहे हैं। रोहित मंच पर नियमित रूप से संतूर वादन में नहीं आए, पर परिवार की नींव, सहारा और मौन शक्ति बनकर साथ रहे।
0: श्रोताओं, संगीत की दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर परिवार के लिए समय बहुत कम। यात्राएं, रियाज, मंच, इन सब के बीच परिवार के लिए कुछ पल चुराने पड़ते थे। फिर भी जब वे घर में होते तो पूरी तरह घर के होते। बच्चों की पढ़ाई, उनकी बातें, पत्नी का मौन सहयोग, यही उनका विश्राम था। उनका परिवार, उनके संगीत की वो तान था जो मंच पर नहीं बजती पर भीतर गूंजती रहती है।
1: दोस्तों, अब हम उनके बंबई यानी कि फिल्मी दुनिया के सफर पर वापस लौटते हैं। आइए चलते हैं वापस बंबई। वी शांताराम जी के साथ काम करने के बाद असल में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संगीत सफर आगे बढ़ता है। शिव और हरि मिलते हैं, इतिहास रचते हैं। मुंबई में जीवन कभी सरल नहीं रहा, ये शहर सपनों को बुलाता भी है और उन्हें कठोरता से परखता भी है। इसी भीड़ में, इसी शोर के बीच एक दिन शिव कुमार शर्मा की भेंट हुई पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये दो साधकों का मिलन था। शब्द कम थे, मौन अधिक। संतूर और बांसुरी जब पहली बार आमने सामने आए तो किसी ने मंच के किनारे फुसफुसा कर कहा, ये संगीत नहीं संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं सांसें बोलती हैं। यहीं से जन्म हुआ 1967 में उस ऐतिहासिक यात्रा का, जिसे दुनिया ने कॉल ऑफ द वैली के नाम से जाना।
0: शिव हरि की जोड़ी और पंडित ब्रिजभूषण काबरा की संगत से एल्बम कॉल ऑफ वैली बनाया, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। कश्मीर की घाटियों की स्मृति, पहाड़ों की नीरवता और साधना की सुगंध सब एक ही एल्बम में उतर आए। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मील का पत्थर बन गया।
1: समय के साथ ये आत्मिक जुगलबंदी मंचों से निकलकर सिनेमा की दुनिया तक पहुंची। जब यश चोपड़ा जैसे संवेदनशील निर्देशक ने शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया के संगीत पर भरोसा किया, तब फिल्म संगीत की भाषा ही बदलने लगी। सिलसिला में देखा एक ख्वाब, ये कहां आ गए हम, चांदनी में चांदनी ओ मेरी चांदनी, लगी आज सावन की लम्हे में मोहे छेड़ो ना, यादें याद आती हैं। इन गीतों में संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं था, वो स्वयं कथा बन गया। प्रेम, विरह, स्मृति और मौन सब कुछ सुरों में बहने लगा। 1980 और 1990 का दशक आते आते शिव हरि केवल संगीतकारों की जोड़ी नहीं रहे, वे एक एहसास बन चुके थे जिसे सुना नहीं जिया जाता था।
0: जी हाँ, कॉल ऑफ द वैली और इसके बाद फिल्मी सफर पर तो हमने खूब बातें की, लेकिन शिव कुमार शर्मा की संगीत यात्रा केवल मंचों और सम्मानों तक सीमित नहीं रही। उसका सबसे स्थायी रूप उनके एल्बम्स में दर्ज हुआ, जहां समय थमकर सुरों में खो जाता है। हर एल्बम उनके जीवन की किसी न किसी साधनात्मक अवस्था का दस्तावेज है, उस आत्मविश्वास का प्रमाण जिसमें संतूर अकेले मंच पर खड़ा हो सका।
1: आगे के वर्षों में उनके एल्बम और अधिक अंतर्मुखी होते चले गए। 1982 में जाकिर हुसैन के साथ वैन टाइम स्टूड स्टिल जैसे प्रयोगों ने ताल और सुर के बीच गहरे संवाद को जन्म दिया। 1987 में राग मधुवंती और राग मिश्र तिलंग जाकिर हुसैन जी के साथ तथा 1988 में सम्मोहक सिंतूर तथा 1988 में सम्मोहक संतूर, इन कृतियों में संतूर केवल वाद्य नहीं एक गायक सा प्रतीत होने लगा। दोस्तों, यहाँ हम आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के और म्यूजिक एल्बम को साझा कर रहे हैं।
0: When Time Stood Still, Live in Bombay, 1982, The Glory of Strings, संतूर, 1991, राग भोपाली वॉल्यूम 1, 1993, राग केदार वॉल्यूम 2, 1993, A Homage to the Rain Gods, 1993, 100 Strings of संतूर, 1994, हिप्नोटिक संतूर 1994, दी पायोनियर ऑफ संतूर 1994, राग बिलास खानी तोड़ी 1994, वर्ल्ड नेटवर्क सीरीज वॉल्यूम 1, इंडिया, राग पूरिया कल्याण विद जाकिर हुसैन 1995, संतूर, राग बागेश्री 1998, संप्रदाय 1999, रसधारा विद हरि प्रसाद चौरसिया 1999, The Valley Recalls, Volume 2, Hari Prasad Chaurasia Ji ke saath, Sun 2000, Anand Bliss with Zakir Hussain, 2002, Vibrant Music for Reiki, 2003, Sympatico, Raag Charukeshi, 2004, The Inner Path, Kirvani, 2004, Essential Evening Chants, 2007, A Morning Raga, Gujri Todi, 2010, Shiv Kumar Sharma, Maestro's Choice Series 2 2011 और संगीत सरताज 2011।
1: 1993 और 94 के एल्बम उनके संगीत के आध्यात्मिक और प्रकृति संवेदी पक्ष को उजागर करते हैं। उनका संगीत ऋतुओं, भावों और अनुभूतियों से गहराई से जुड़ा था। ध्वनि परिदृश्य, पहाड़ों का संगीत, संतूर की 100 लड़ियां, राग बिलास खानी तोड़ी और एक सुबह का राग गुजरी तोड़ी, इन रचनाओं में पहाड़, प्रातःकाल और मौन स्वयं बोलने लगते हैं।
0: 1996 में हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आया घाटी की यादें और द वैली रिकॉल्स उस जुगलबंदी की परिपक्व स्मृति थी जो शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। 1999 की मैस्ट्रो की पसंद श्रृंखला 2 संप्रदाय और रसधारा में उनकी साधना और अधिक संतुलित, अधिक गहन दिखाई देती है। 2001 में बॉम्बे में शनिवार की रात जैसे प्रयोगात्मक एल्बम में जॉन मैकगिलन और जाकिर हुसैन, तो 2002 में आनंद ब्लिस और समय का प्रवाह ने संगीत को ध्यान और उपचार से जोड़ दिया।
1: 2003 से 2007 तक के एल्बम रेकी के लिए जीवंत संगीत, सिंपैटिको आंतरिक पथ और हरिप्रसाद चौरसिया के साथ आवश्यक संध्या मंत्र इस बात के साक्ष्य है कि शिव कुमार शर्मा के लिए संगीत जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना ही बना रहा। उनके एल्बम किसी कालखंड की सूची नहीं, बल्कि एक ऐसी निरंतर यात्रा है जहां हर रचना सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाती है, ठीक उसी तरह जैसे स्वयं शिव कुमार शर्मा का संतूर।
0: श्रोताओं, पंडित शिव कुमार शर्मा को देश विदेश में उनके अद्वितीय संगीत योगदान के लिए अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता मिलना इस बात का प्रमाण था कि उनका संतूर केवल भारत ही नहीं विश्व की आत्मा को भी छू रहा था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और फिर पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी साधना, नवाचार और परंपरा के प्रति समर्पण की औपचारिक स्वीकृति थे। फिल्म संगीत में भी उनकी जोड़ी शिवहरी ने इतिहास रचा। कॉल ऑफ द वैली और सिलसिला के संगीत को प्लैटिनम डिस्क, फासले को गोल्ड डिस्क, चांदनी को प्लैटिनम डिस्क मिली। लम्हे और डर के लिए उत्कृष्ट संगीत और रिकॉर्ड बिक्री हेतु उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए। 1967 में आया मेस्ट्रोस चॉइस सीरीज 1 उनके शास्त्रीय वैभव का सशक्त प्रमाण बना, जहां संतूर, समय और साधना एक ही स्वर में गूंजते हैं।
1: शिव कुमार शर्मा ने संतूर को केवल तकनीकी रूप से नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नया आयाम दिया। 1960 के दशक से वे संतूर की ध्वनि को ध्यान और अंतर्मुखता से जोड़ने लगे थे। उनकी वादन शैली में एक स्थिरता, एक ठहराव था जिसमें सुनने वाला स्वयं को भूलकर स्वयं के भीतर उतर जाता था। यही कारण था कि उनके संतूर को लोग केवल सुनते नहीं थे, अनुभव करते थे। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि उनका संगीत मन को शांत करता है, भीतर एक अजीब सी उजास भर देता है, जैसे कोई मौन ध्यान साकार हो उठा। उनकी प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुकी थी। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उनके शिष्यों और श्रोताओं का विस्तार था। विश्व के विभिन्न देशों से युवा कलाकार उनके पास संतूर सीखने आते थे, केवल तकनीक के लिए नहीं बल्कि उस दृष्टि के लिए जिससे संगीत साधना बन जाता है। उनके लिए संतूर 100 तारों का वाद्य नहीं, 100 भावनाओं की साधना था।
0: श्रोताओं, कश्मीर की जिन वादियों में कभी संतूर की पहली झनकार गूंजी थी, वहीं से निकली वो आत्मा अब धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, जैसे शाम की हवा खुद को अंधेरे में सौंप देती है। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दुनिया कोविड के कठिन समय से गुजर रही थी, पंडित शिव कुमार शर्मा भी एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण वे डायलिसिस पर थे, पर मन अब भी संगीत से बंधा हुआ था। शरीर थक रहा था पर साधना नहीं। 10 मई 2022 की सुबह एक हृदयाघात के साथ उनकी जीवन तान शांत हो गई। चौरासी वर्ष की आयु में मुंबई के उसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां कभी सपनों की गठरी लेकर भी आए थे। अंतिम दिनों में पत्नी मनोरमा और पुत्र राहुल उनके साथ छाया की तरह रहे। संतूर अब भी परिवार की धड़कन था।
1: उनके जाने की खबर के साथ ही संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अमजद अली खान ने इसे एक युग का अंत कहा। कलाकारों, श्रोताओं और साधकों को लगा जैसे किसी ने भारतीय संगीत की आत्मा का एक कोना मौन कर दिया। पूर्ण राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ, गरिमा, सादगी और कृतज्ञता के बीच।
0: शिव कुमार शर्मा के हाथों में संतूर केवल वाद्य नहीं रहा, वो स्मृति बना, साधना बना और समय की ध्वनि बन गया। हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ मिलकर उसने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा का नया दर्पण दिया। वो केवल एक महान कलाकार नहीं थे, वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना की वो तान थे जो धीमे धीमे बजती है लेकिन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। सच्चे अर्थों में वे भारत की संगीत आत्मा की एक अनमोल धरोहर थे।
1: पंडित शिव कुमार शर्मा का जीवन सपना संतूर को लोक की सीमाओं से उठाकर शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पूर्ण हुआ। उन्होंने कभी ऊंचाइयों की घोषणा नहीं की, केवल साधना की, और वही साधना आज भी जीवित है। संतूर की हर तार में, हर झनकार में उनका समय, उनका तप और उनका मौन बोलता है।
0: और जब सब कुछ शांत हो जाता है तब ऐसा लगता है कश्मीर की वादियां अब भी बहुत धीमे स्वर में कह रही हैं, ये राग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो अनंत में प्रवेश है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्ला कल्लोलिनी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने, यानी संदीप शर्मा,
1: और मैं वर्षा सिंह।
0: मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और लेखन था दीपक नेमा का। अपने कार्यक्रम कला कलोलिनी में फिर किसी ऐसे ही कला साधक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नजी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद जी की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। आज हम उनके उन कथनों को याद करेंगे जिनमें उन्होंने हमें बताया था कि भारत की जनता को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा ऐसी हो जो हमें पूर्णतः शिक्षित बनाए। वो कहते थे,
1: अच्छी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है। भारत का भविष्य भी काफी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान पीढ़ी इस समस्या का हल किस प्रकार प्रस्तुत करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाश्चात्य भावपत्र और पूर्णतः राष्ट्र विरोधी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि से एकदम विसंगत है। ये तो हमें उन अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिली है जिन्होंने हम में कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को दृढ़ता व संरक्षता प्रदान कर सकें।
2: उन्हें समय के परिवर्तन का पूरा ज्ञान था। उन्होंने देश विदेशों में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझा था कि हम भारतीयों को लीक से हटकर कुछ और तरह की शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हम प्रचलित परिपाटी से अलग कुछ आत्मसात कर सही मायने में मनुष्य बन सकें। उन्होंने कहा था,
1: समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरु और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे।
0: स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्जन करते हुए उन्होंने गहराई से इन बातों पर विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थी। अपनी मातृभूमि को अन्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा से मंडित देखना उनकी सर्वाधिक इच्छा थी। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर अध्यात्म से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
2: भारतीय परंपरा के अनुसार जब जब संस्कृति और सभ्यताएं अधिपतित हुई हैं, जब जब मानवीय मेधा भ्रमित हुई है, तब तब जीवन की नई दिशाओं की ओर संकेत करने तथा मानव हृदय में शक्ति और विश्वास की लहर भरने के लिए महान मनीषियों का अवतरण हुआ है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक मनीषी थे। उन्होंने स्पष्ट और कभी कभी लौकिक भाषा में पुरातन भारत से भी अधिक और महत्तर अपने भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अतः आज जब हमारा मन शिक्षा की समस्या से उद्वेलित है, ये उचित ही होगा कि हम स्वामी जी के शिक्षा विषयक विचारों से परिचित हों, क्योंकि हमारी पीढ़ी की इस ज्वलंत समस्या पर स्वामी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन हमारे बालकों की शिक्षा प्रणाली के नियोजन की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी से कभी पूछा गया था, आज की विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? उन्होंने उत्तर दिया था,
1: क्यों, वो तो आधी से अंत तक दोषों से भरी हुई है। ये बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है? यदि इतना ही होता तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहां, देखो ना लोग किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है, एक क्षेपक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोक गीतों से अधिक महत्व नहीं रखते।
2: एक अन्य अवसर पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की थी जिसे वो बताया गया था कि गधे को पीटने से वो घोड़ा बन जाता है, और उसने अपने गधे को घोड़ा बनाने के लिए पीट पीट कर अधमरा कर डाला था।
0: यद्यपि स्वामी जी की शिक्षा की परिभाषा बहुतों को मालूम है, फिर भी प्रस्तुत संदर्भ में उसकी पुनरावृत्ति उचित है। स्वामी जी ने कहा है,
1: शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विचार एक विशुद्ध वेदांतिक धारणा है। इसकी उपलब्धि मानव जीवन के स्तर और गौरव को अत्यधिक परिवर्धित कर देती है। इसकी स्वीकृति निष्ठा और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, और ये आत्मविश्वास पौरुष एवं चरित्र का सार है।
2: यद्यपि ये परिभाषा एक सर्वकालिक सत्य है और सभी लोगों के हित के लिए है, फिर भी आज के इस अलगाववादी युग में, संकीर्ण भावनाओं के युग में, ये परिभाषा विशेष महत्व रखती है। स्वामी जी पुनः कहते हैं,
1: शिक्षा है क्या? क्या वो किताबी ज्ञान है? नहीं। तो क्या वो बहुमुखी ज्ञान है? वो भी नहीं। शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति को और उसके प्रवेग को संतुलित एवं लाभप्रद बनाया जाता है।
0: स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सूक्ष्मताओं पर भी पूरी स्पष्टता से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। मोटे तौर पर वे पाश्चात्य विज्ञान को वेदांत के साथ समायोजित करना चाहते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार दोनों के मिलन से ही विश्व में समृद्धि और शांति का युग आएगा। विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों ने जीवन के कठिन और अरुचिकर कार्यों को सहज बना दिया, पर यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने जिस अवकाश की उपलब्धि की है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वैदेशिक नियंत्रण से परे स्वतंत्र रूप से ज्ञान की उन विविध शाखाओं का अध्ययन करें जो हमारी अपनी है, साथ ही हम अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करें। हमें तकनीकी शिक्षा तथा उन सब बातों की आवश्यकता है जिनसे हम उद्योगों का विकास कर सके और नौकरी ढूंढने के बदले अपने पैरों पर खड़े रहकर इन उद्योगों के द्वारा जीविका के लिए यथेष्ट उपार्जन कर सकें तथा दुर्दिनों के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: वर्तमान समय में भाषा की समस्या हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है। नई व्यवस्था में अंग्रेजी, अन्य प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत का क्या स्थान होगा? स्वामी जी के उपयुक्त उद्धरण से तथा उनके अन्य लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को महत्व प्रदान किया था।
0: शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता कैसे लाई जा सकती है, इस पर विचार करते हुए निवेदिता ने अपने नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है,
3: यदि सभी मनुष्य एक ही भाषा में वार्तालाप करें, एक ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना और समान लक्ष्यों की अनुभूति करना सीखें, यदि सभी को समान शक्तियों के प्रति समान रूप से प्रतिक्रियाएं प्रकट करना सिखाया जाए और उन्हें इसके लिए सक्षम भी बनाया जाए, तभी तो हमारी एकता स्वयंभू बनकर प्रकट होगी और अटूट बनेगी।
0: प्रादेशिक भाषाओं और संस्कृत के विषय में स्वामी जी ने कई अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि वे प्रादेशिक भाषाओं के विकास पक्ष को महत्वपूर्ण समझते थे, फिर भी वे दृढ़तापूर्वक संस्कृत की महत्ता को अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा अधिक मानते थे। प्रादेशिक भाषाएं और संस्कृत भाषा जीवन के अलग अलग कार्यों की पूर्ति करती हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा की देन बहुत अधिक है। स्वामी जी कहते थे,
1: संस्कृत की ध्वनि मात्र ही जाति को शक्ति, क्षमता और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।
2: रामानुज, कबीर और चैतन्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यद्यपि इन महापुरुषों ने निम्न वर्ग को ऊपर उठाया, किंतु उन्होंने संस्कृत विद्या का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा,
1: बुद्ध तक ने एक गलत कदम ये ले लिया कि उन्होंने जनता को संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित नहीं किया। यदि आप प्रादेशिक भाषा में जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तथा विचारों से अवगत कराते हैं तो वे केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, और केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें संस्कृति भी प्रदान करने की आवश्यकता है। समाज भले ही विकसित और उन्नत हो जाए, पर जब तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं किया जाता, तब तक समाज की विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता।
0: वे भारतीय भाषाओं में संस्कृत को सर्वोपरि स्थान देते थे। उनका कहना था,
1: संस्कृत पुरातन विद्या का कोश है। वो मानव जाति के सबसे उदात्त विचारों का विग्रह है। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित नहीं है, वे इसकी सशक्तता और गंभीरता का तनिक भी परिचय नहीं पा सकते। ये हमें केवल हमारी प्राचीन महानता का ही ज्ञान नहीं करा सकती, अपितु हम में वो श्रद्धा और आत्मविश्वास भर सकती है जो आज विदेशी प्रशासन और अराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के कारण जड़ से हिल गए। भारतीय संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे के पर्याय हैं।

0: विवेकानंद अनेक कलाओं से परिचित थे। गीत संगीत वादन तो वे जानते ही थे, साथ ही लाठी भांजना, कुश्ती और पाक कला में भी वे पारंगत थे। वे इस विषय पर भी हमें अपना सुझाव देना नहीं भूले।
1: एशिया वासियों की आत्मा ही कलामय है। एशियावासी किसी भी कला रहित वस्तु का उपयोग नहीं करते। कला हमारे धर्म का ही एक अंग है।
2: उन्होंने कलात्मक पात्रों, सुंदर साड़ियों तथा कलात्मक धोतियों की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दीन हीन कृषक की मिट्टी से बनी झोपड़ियों तथा अनाज रखने की कोठियों तक में कला का दर्शन कराया और बताया कि हमारी स्थापत्य कला किसी अनजान कारीगर के सपनों की प्रस्तरमयी विग्रह है। जैसे पश्चिम का आदर्श उपयोगिता है, वैसे ही भारत का आदर्श कला है। स्वामी जी का विचार था कि जापान में पश्चिमी उपयोगिता और भारतीय कला का सुंदर समन्वय घटित हुआ है, जबकि भारत मूर्खता पूर्वक पाश्चात्य उपयोगितावाद का अंधा अनुकरण कर रहा है। वे चाहते थे कि भारत में भी दोनों का सुंदर समन्वय हो।
0: स्वामी जी कहा करते थे कि व्यक्ति के समान राष्ट्र की भी अपनी एक विशिष्ट प्रतिमा होती है और उसके विकास का एक विशेष मार्ग होता है। हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति स्वामी जी के प्रेम का उल्लेख करती हुई भगिनी निवेदिता अपनी मास्टर एज आई सॉ हिम नामक ग्रंथ में लिखती हैं,
3: स्वामी जी के लिए प्रत्येक नवीन वस्तु प्राचीन निवेदन के भाव से शुद्ध की हुई थी। माँ सरस्वती का चित्र आंकना स्वामी जी के मतानुसार उसकी पूजा करना था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना मानो घुटने टेक कर रोग और मलिनता के पिशाचों के नाश के लिए प्रार्थना करना था। धार्मिक एकाग्रता की शक्ति के लिए मानवीय मेधा को उसकी चरम पूर्णता के स्तर पर पहुंचा देना उनके विचार से एक आवश्यक तत्व था। वे अध्ययन को तपस्या मानते थे और हिंदुओं की ध्यानोन्मुखता को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की उपलब्धियों में सहायक समझते थे। इस प्रकार शिक्षा स्वयं में की गई साधना और धर्म का एक अंग है।
2: स्वामी जी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक हर प्रकार के बल को जरूरी मानते थे, अतः वे शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पर जोर देना भी नहीं भूले। अपने शिष्य के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था,
1: तुम्हें शरीर को खूब शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए और दूसरों को भी इसे सिखाना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अब भी डंबल्स के साथ व्यायाम करता हूं? शरीर और मन दोनों को समान रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। यदि लोगों को शारीरिक बल बढ़ाने की जरूरत समझा दी जाए तो वे स्वमेव उसके लिए प्रयत्न करने लगेंगे। इस आवश्यकता के बोध हेतु ही आज शिक्षा का प्रयोजन है।
0: स्वामी जी अपने देशवासियों को सशक्त और सबल स्त्री पुरुषों के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने अनेक प्रसंगों में अपनी ये आंतरिक इच्छा व्यक्त की है।
1: मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो। मेरी तुमसे सही सलाह है, तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे।
2: स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने का बल प्रदान करती है।
0: हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी हटाने के प्रयास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी कोशिशें, ये सभी स्वामी जी के विचारों के अनुकूल हैं। इन्हीं कारणों से स्वामी जी इस बात के लिए व्यग्र थे कि भारतवासी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, पर वे ये नहीं चाहते थे कि हम इस भौतिक लाभ के लिए अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता से वंचित हो जाएं। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था,
1: तुम में एक सुई बनाने की क्षमता तक तो है नहीं, और तुम अंग्रेजी की आलोचना करने की धृष्टता करते हो। मूर्ख, जाकर उनके पैरों के पास बैठो और उनसे उन कलाओं, उद्योगों और व्यवहारिकता को सीखो जो जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक है।
2: एक अन्य प्रसंग के लिए आवश्यक है,
1: आज की उच्च शिक्षा रहे या बंद हो जाए, इससे क्या बनता बिगड़ता है। अधिक अच्छा तो होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल सके, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के बदले किसी काम में मन लगा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
2: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी आधुनिक जीवनधारा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे भारत के अति संरक्षणशील और कट्टर विचार पोषकों की भांति उसका अकारण विरोध नहीं करते। हाँ, पश्चिम के औद्योगिकरण के दोषों को वेदांत के आलोक द्वारा घटाया जा सकता है, पर समय के चक्र को लौटाना संभव नहीं है। और ना ये उचित है कि आज जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इतने वेग से प्रगति हो रही हो, हम बैलगाड़ी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के युग में वापस चले जाएं। स्वामी जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है,
1: जो शिक्षा प्रणाली जन साधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा वृत्ति का, उसमें सुप्त केसरी तुल्य साहस का विकास नहीं करती, वो भी क्या शिक्षा कहलाने योग्य है।
0: शिक्षा प्रणाली के विषय में स्वामी जी का ये दृढ़ मत था कि प्राचीन गुरु गृहवास की प्रथा को आधुनिक संदर्भ में संशोधित परिवर्तित करके लड़के और लड़कियां दोनों के लिए लागू करना चाहिए। उनका कथन था,
1: छात्र को बाल्यावस्था से ही ऐसे व्यक्ति से संसर्ग में रहना चाहिए जिसका चरित्र ज्वलंत अग्नि के समान पवित्र हो।
0: उनका विचार था,
1: एकमात्र जीवन ही सबसे उत्तम शिक्षक है, क्योंकि पवित्र जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण ही मनुष्य में निहित प्रसुप्त दैवत्य का विकास करता है।
0: उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक प्रतिपादित किया कि
1: यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी और निष्प्रह व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता, तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा।
2: वे चाहते थे कि प्राचीन काल के समान ही सभी विद्यार्थी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति को जन्म देता है और सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि प्रदान करता है। उसी से अन्य शक्तियां विकसित होती हैं। स्वामी जी श्रद्धा को मूलभूत धर्म मानते थे। श्रद्धा का निर्माण निष्ठा, विनम्रता, पूज्य भाव और संदेह में अडिग रहने वाला दृढ़ विश्वास, इन सब गुणों के एकत्र मेल से ही होता है।
0: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी आधुनिक दिखावटी एवं उबाऊ शिक्षा की कामना नहीं करते थे, अपितु उन्हें क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा की अपेक्षा थी। जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवीन प्राण शक्ति का संचार नहीं किया जाता, तब तक भारत के नव निर्माण की दिशा में प्रयत्न करना व्यर्थ है। स्वामी जी कहते थे,
1: शिक्षा का भारतीय आदर्श मन का वो नियंत्रण है जिससे हम उसे जहां चाहें ठीक वहीं लगा सके। एकाग्रता की प्राप्ति उत्तम तो है, पर जब तक उसके साथ हम में अनासक्ति की भी शक्ति नहीं आती, तब तक संभव है कि वो हमें कठिनाइयों के आवर्त में डाल दे। तथ्यों के संग्रह को नहीं, अपितु एकाग्रता को ही मैं शिक्षा का मूल समझता हूं। यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को विकसित करता और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संग्रह कर लेता।
2: ये कहना अप्रासंगिक न होगा कि आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रणाली में शिशु के व्यक्तित्व के प्रति जो सम्मान का तथ्य पाया जाता है वो अभी आरंभ हुआ है, जबकि भारतीय वेदांत कल्पनातीत काल से इस तथ्य से परिचित था। उस समय शिक्षा यथासंभव व्यक्ति परक थी।
1: सारा ज्ञान मनुष्य में ही निहित है, यही क्यों एक बालक में भी समग्र ज्ञान प्रच्छत्र रूप से विद्यमान है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो उस प्रच्छत्र ज्ञान की अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर कर दे और अपने विद्यार्थियों को ये सिखा दे कि अपने हाथ पैर नेत्र और कानों का समुचित उपयोग करने के लिए वे किस प्रकार अपनी बुद्धि से काम लें।
0: स्वामी जी ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते थे। वे कहते थे,
1: भारतीय समाज में बौद्धिक वर्ग को एक सुविधापूर्ण स्थान प्राप्त है, पर प्रत्येक सुविधा के साथ उत्तरदायित्व का भाव भी भरा हुआ है। इस संक्रांति और उतार चढ़ाव की अवधि में ही भविष्य अपना रूप निर्मित करेगा, अतः इस देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह आत्मविश्वास के लिए ज्ञान का अर्जन करे और उसका दान उन लोगों को भी दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
2: कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हम ज्ञान से भी मूल्यवान और किस वस्तु का दान कर सकते हैं? क्रिया मूलक और सृजनशील ज्ञान के दान से दाता और पात्र दोनों का ही उत्थान होता है। इसी दान के माध्यम से भारतवर्ष उस गौरवमय युग को प्राप्त कर सकता है जिसके अवतरण की घोषणा स्वामी विवेकानंद कर गए हैं।
0: स्वामी जी समाज में एक सर्वमान्य नेता की जरूरत को महसूस करते थे जो अनपढ़ जनता को राह दिखाए, जिन्हें लोग बिना किसी संदेह और प्रश्न के मान लें। प्रजातांत्रिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देशवासी सुशिक्षित हों, विवेकवान हों और अच्छे बुरे का चयन खुद कर सकें। तब तक उन्हें नेतृत्व देने वाले किसी महान व्यक्ति की जरूरत है। पिछड़ी हुई जनता के लिए स्वामी जी अधिनायक तंत्र के महत्व को पूरी तरह समझते थे। वे कहते हैं,
1: जब शिक्षा के प्रसार के साथ हमारी देश की जनता अधिक सहानुभूति और उदार बनेगी, जब वो अपने विचारों को संप्रदाय या पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालना सीखेगी, तब कहीं संघबद्ध प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करना संभव होगा। इसलिए अभी समाज के लिए एक अधिनायक का होना आवश्यक है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, कालांतर में हम साधारण मतदान के सिद्धांत पर कार्य कर सकेंगे।
2: स्वामी जी भावी भारत के बारे में पूर्णतः आशान्वित थे। उनका मानना था कि भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा कई गुना महिमा मंडित होने वाला है। वे भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
1: भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई हैं। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
0: पर इसका उपाय क्या है? विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं, और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

7:10 पर होगा कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे प्रथम मंडल से सूक्त 135 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रतिदिन 8 बजे। श्रोताओं, कल ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा बाबा खड़ग सिंह की पुण्यतिथि पर। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आप सुनेंगे कल रानी दुर्गावती के गौड़ राज्य का इतिहास। योग संवाद कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा। प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे। 9:30 पर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें कल ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा डॉक्टर बशीर बद्र पर। शीर्षक होगा आपकी यादों की रोशनी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आप सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा में, इसे सुनेंगे आप 10 बजे। सुबह 10:30 का समय होगा कार्यक्रम याद करो कुर्बानी का। ये कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की जयंती पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसागर में भक्ति गायन अनुषा शर्मा का। 11:30 पर होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, इसका एपिसोड 65 कल सुना जा सकेगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें